जीवन का हर पल अनमोल है, इसे अच्छे कार्यों और मधुर व्यवहार से सार्थक बनाना चाहिए। और इसी विचार के साथ मैं आपसे ले रही हूँ अनुमति, जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। छोड़ के जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ, तो मैं लेती हूँ आपसे अनुमति। नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 27वीं तिथि, तदनुसार 18 जुलाई 2026 सुबह के 5:53 और 30 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। 98.8 मीटर और एफ एम 103.5 MHz पर। समय आज शनिचरवार है। शख्स मत 1948 के आशुदा महीने की 27 तारीख, मुताबिक 18 जुलाई 2026 ईस्वी। सुबह के 6:30 हुए हैं। आज की नशरियात लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूँ सैयद नवाज शरीफ।

0: पीवी सिंधुः अद्य प्रातः टोकियो नगरे जापान ओपन क्रीडायाः महिला एकलस्य उपान्त्यचक्रीयस्पर्धायां चीनदेशस्य चेन युफेई सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1,570 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अम्बाला रेल सेवा और अमृतसर छेहरटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार नागरिक देवो भव के मंत्र के साथ कार्य कर रही है।
2: हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ये कार्यशाला सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय से पेंशन संबंधी मुकदमों के प्रबंधन में सुधार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे और हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से भी मिलेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार एजेंसी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौत की त्वरित, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। श्री तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और हिंसा की घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करने का आग्रह किया है। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज सुबह पीवी सिंधु का सामना विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई से होगा। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के हटने के बाद सेमीफाइनल में पहुंची हैं। और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी।

0: will face world number 4 Chen Yufei of China in the semi-final of the women's singles in Tokyo this morning. Sindhu advanced to the last 4 after former world champion Nozomi Okuhara of Japan withdrew from her quarter-final match yesterday. And that is the end of this news bulletin.
1: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीटरव्यू 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। सामिन सुबह के 7:10 हुआ चाहते हैं। पेशे प्रोग्राम पयाम है सुबह एक वक्फे के बाद।
2: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
3: अरे राकेश, चिप्स खाएगा?
4: एक मिनट यार, ये कुछ अजीब टेस्ट कर रहे हैं।
3: अच्छा, जरा पैकेट दिखा। ओए, ये तो एक्सपायर्ड है।
4: क्या
5: ऐसा आपके साथ भी हो सकता है? इसलिए ध्यान रखें, खाने पीने की कोई भी चीज खरीदने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट चेक करें। अगर कोई एक्सपायर्ड फूड आइटम्स बेच रहा है तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं 1-800-112-100 पर।
6: याद रखें, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार।
7: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
8: बदलो बदलो आदत बदलो।
9: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
8: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
10: चिनार की छांव तले किताबों का एक खूबसूरत जहां आपका इंतजार कर रहा है। आइए तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल में, जहां मिलेंगी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के 200 से अधिक बुक स्टॉल्स, साथ ही क्रिएटिव वर्कशॉप्स, बच्चों के लिए लिटरेरी सेशंस, डिजिटल रीडिंग कॉर्नर और कल्चरल परफॉर्मेंसेस का लुत्फ उठाइए। 18-26 जुलाई SKICC श्रीनगर। चिनार बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद NCPUL एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर। टुगेदर वी रीड, टुगेदर वी lead.

0: गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। नई सुबह का नया पैगाम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपका मेजबान रशीद निजामी और आज एक बार फिर मेरे साथ हैं सैयद नवाज शरीफ।
1: सुनने वालों की खिदमत में मेरा भी प्यार भरा सलाम।
0: नवाज, सुबह नौ की दिल के साथ हैं, अपने दामन में ताजगी, उम्मीद और नई उमंग के लिए हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं
1: जी।
0: दुआ है कि आज का ये दिन हमारे तमाम सुनने वालों के लिए सेहत, सुकून, आसानियों, रिज्क हलाल और खैर बरकत का जरिया बने।
1: आमीन।
0: आपके घरों में मोहब्बतें कायम रहें और हर आने वाला लम्हा खुशियों से भरा हो।
1: जी आमीन। अगर दिन का आगाज मजबूत सोच, मुस्कुराते चेहरे और अल्लाह के जिक्र से हो तो पूरा दिन नस्बतन पुरसकून, हल्का और खुशगवार महसूस होता है। और यही हमारी दिली ख्वाहिश है कि आज का सूरज हर समय के लिए नई उम्मीदों की किरण बनकर तलू हो।
0: ये जब ही मुमकिन है नवाज, जब हम पाक जहन से, शुद्ध मन से उस ईश्वर, उस अल्लाह के सामने सर्वसुजूद हों जिसने हमें पैदा किया और बेशुमार नेमतों से नवाजा है।
1: जी, लाख लाख शुक्र उस अल्लाह का जिसने हमें एक और तलुए आफ्ताब देखने का मौका फराहम किया, जिसने हमें और मोहलत दी कि हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हो।
0: खूब फरमाया आपने नवाज। असल में हर सुबह की पहली किरण हमारे लिए यही पैगाम लाती है

0: अभी भी संभलने का मौका है
1: जी,
0: इबादत करने का वक्त है ताकि हमारी जिंदगी सही डगर पर गामजन हो।

0: आकाशवाणी श्रीनगर आप तक पहुंच रहा है एक नए रंग, नए आहंग और नई लय के साथ।
1: बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा।
2: जिंदगी से जुड़े हर एक शोबे की मुफीद जानकारी।
3: सब्र रोशिद सुलुम।
2: सुनते रहिए हमारी नशरियात
0: दुनिया के किसी भी कोने में, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और वेव्स OTT के जरिए।
4: पहले सुबह आप समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.1 मीटर यानी 1116 किलोहर्ट्ज और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपका मेजबान, आपका होस्ट, आपका दोस्त रशीद निजामी और मेरे साथ हैं सईद नवाज।
5: निजामी साहब, अब बच्चों की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। मैं समझता हूं कि बच्चों

0: नहीं, इन छुट्टियों में खूब मस्ती की होगी
1: जी जी जी जी।
0: नानी के घर भी रहे होंगे, सैर सपाटी पर भी आ गए होंगे, अब फिर से अपनी जो डेली रूटीन है वो शुरू होने वाली है।
1: बिल्कुल सही फरमाया आपने। और मुझे एक बात याद आ गई, अभी कुछ दिन है छुट्टी के और यहाँ से नवाज आज से नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया की जानिब से चिनार बुक फेस्टिवल का आगाज हो रहा है
0: जी।
1: ये 18 से 26 जुलाई तक होगा SKICC श्रीनगर में। मेरी तमाम बच्चों से गुजारिश है, बड़ों से गुजारिश है कि आप भी जाइए। किताबें एक तो वहां पर आप खरीद सकते हैं, आप कोई भी किताब मुख्तलिफ जबानों में किताबें खरीद सकते हैं, उन पर रियायत है और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स वहां पर हैं, कॉम्पिटिशन्स हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, डिबेट्स हैं, आप उनमें हिस्सा लें, एंट्री फ्री है, जरूर जाइएगा। ये बुक फेयर, ये चिनार बुक फेस्टिवल 18 से 26 जुलाई तक है। और आपने बच्चों की बात की ना
0: जी,
1: मुझे एक खास बात याद आ रही है, वो ये है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक बनती है कि बच्चों को अच्छी तालीम दें, अच्छे अखलाक, वक्त की पाबंदी, सफाई, सच बोलने की आदत और दूसरों के एहतराम का शुऊर भी दिया जाए।
0: बिल्कुल,
1: देखिए बच्चे वही सीखते हैं जो वो अपने बड़ों को करते हुए देखते हैं
0: जी,
1: इसलिए हमारी अपनी अमली मिसाल उनकी बेहतरीन तरबियत बन सकती है
0: जी। और साथ ही मुझे भी एक खास बात याद आ रही है कि बच्चों की सेहत, अपनी सेहत यानी हर फर्द की सेहत का ख्याल रखना भी इंतहाई जरूरी है
1: जी जी जी,
0: क्योंकि अच्छी सेहत किसी भी इंसान की सबसे कीमती दौलत है। रोजाना मुनासिब चहलकदमी, साफ पानी का इस्तेमाल, मुतवाजन ग़िज़ा, वक्त पर आराम जैसी सादा आदतें कई बीमारियों से हिफाजत का जरिया बनती है
1: जी जी जी।
0: अगर हम अपनी सेहत का ख्याल रखें तो न सिर्फ खुद खुश रहते हैं बल्कि अपने घर वालों के लिए भी ज्यादा मुफीद साबित होते हैं।
1: बिल्कुल बजा फरमाया आपने। आज चूंकि नवाज हमारा थीम रहता है इश्यूज रिलेटेड टू पब्लिक
0: जी,
1: जितनी भी बातें अभी तक इस शो में हुई उनका बराह रास्त ताल्लुक आम आदमी से ही है
0: जी।
1: नवाज आज 18 जुलाई है
0: जी,
1: इस दिन की एक खास अहमियत है।
0: जी हाँ सही है, आज दुनिया भर में नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे मनाया जा रहा है।
1: नेल्सन मंडेला की जिंदगी पर जब हम नजर दौड़ाते हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी से और जिंदगी गुजारने के तौर तरीकों से आम इंसान को यह सबक दिया कि बर्दाश्त, इंसाफ, मसावात और इंसानियत की खिदमत ही हकीकी कामयाबी का रास्ता है। इख्तलाफ के बावजूद एहतराम बरकरार रखना और नफरत के बजाय मोहब्बत को फरोग देना ही एक महज़ब माशरे की पहचान है
0: जी। और आज के दिन का पैगाम सिर्फ किसी एक शख्सियत को याद करना नहीं बल्कि ये अहद करना भी है कि हम अपनी जिंदगी में दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें, किसी जरूरतमंद की मदद करें, अच्छे अल्फाज बोलें और अपने माशरे को मोहब्बत, अखुवत और बाहमी एहतराम का गहवारा बनाने में अपना किरदार अदा करें।
1: बहुत खूब, इसी पैगाम के साथ एक और खूबसूरत नगमा, तो आइए मौसीकी की खुशबू से इस सुबह को और भी खुशगवार बनाते हैं
0: जी।

0: विभागों के लोग, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, सुरक्षा बलों के लोग सबने मिलकर के मैं ये पांचवी यात्रा देख रहा हूँ। इस बार काफी बेहतर प्रबंध किया और जो फीडबैक यात्रियों से मिला है वो भी उत्साहवर्धक है और मुझे लगता है कि बाबा अमरनाथ की कृपा से सफल यात्रा अच्छे ढंग से चल रही है। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को भी इस यात्रा से बड़ा लाभ होगा। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस यात्रा को एक यादगार यात्रा और ऐतिहासिक यात्रा के रूप में याद किया जाएगा।
1: यपर रात शाम तम जद साढ़ त्रे लक्ष श्रद्धालुओं गुफाई पे हजरी दिख शिवलिंग मुख दर्शन कर्मत दौरान सपुद जम के भगवती नगर यात्रा बेस कैंप पे आज यात्रियों हंद सदहिम ग्रुप वादी कुन रवाना यम खबर तु आकाशवाणी पे बोजान पेश बाकी खबर सेहत तो खानदनी बजाई हिंद वजीर ममलिकत प्रताप राव जादवन वोनमुत आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दश द्रुस मुल्क अंदर जयदस कुनवुह खरब रोपियन हंद कैशलेस इलाज फराहम कर आमुत तो यथ पे स्कीम पूर दुनिया अंदर सेहत शोब सारे खुद बड़ स्कीम गंजरन अमि कथि हिंस बाबत कर तमो नवी दिल्ली में बुलाने आम दोन दोन हिंजे अकिस मीटिंग के दौरान यथ मि स्कीम हिंज अमल आवरी तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन साम हन आई वजीर दुत सारे रियासतन तो यूटियन आयुष्मान भारत स्कीम मं मजीद वसत अन हिदायत इम्तहान मुतलिक कौमी एजेंसी एन टी ए एन नीट अंडर ग्रेजुएट जतवुह कें नतीजन हंद ऐलान कर्मुत अत इम्तहान मं शामिल अलपल वह लक्षव तलब इलमो मं गई कह लक्ष अकव सास तलब इलम कामयाब यम मेडिकल डेंटल आयुष तो दोमन प्रोग्राम मं दाखिल नियन अत इम्तहान मं अख अरतह तलब इलमो सतहत वह मं शत नमत खुत ज्यादा नंबर हासिल करमित यमन मं जम्मू कश्मीर सलुक थवन वल जलब इलम हादिया निसार तो जैदान वानी तामिल जम्मू कश्मीर वजीरे आला उमर अब्दुल्हन यू टी एस सालुक थवन वाल नीट अंडर ग्रेजुएट इम्तहान मं कामयाबी प्रावन वाल तलब इलमन तो खास पाठ हादिया निसारस तो जैदान वानी मुबारक कर्मुत अकिस पैगाम मं वजीर आलन वोनमुत जलब इलमन हिंज कामयाबी तिज मेहनत लगन वस्तादन तो गरबाचन हंद अथ रटिच अक्कासी कर वजीर आलन इम्तहान क्वालिफाई न कर वाल तलब इलमन हौसला अफजाई कर वोनमुत तम ग मजीद मेहनत करित दोमि लटि यह इम्तहान पास कर जम्मू कश्मीर किस श्रीनगर शहरस मं डल बठिस पे वाक एस के आई सी सी यस मजक पे चिनार बुक फेस्टिवल शुरू नवन दोहन हंद यह किताबी मल रोज शतवहिमस जुलैस तम जारी अथ मलस मं रोजन अंग्रेज उर्दू हिंदी कशर तो बाकी कैंसन जबान मं जखीम किताब दस्तियाब तकनीकी तलीम हंद कुल हिंद कौंसल ए आई सी टी ई एन जम्मू कश्मीर कलब इलम हंद तलीमी सेशन जतवु सतवु बापत खसूसी स्कॉलरशिप स्कीम तहत रजिस्ट्रेशन तो कौंसलिंग हिंज अमल शुरू कर्म यह मकसद प्रावने बापत जम्मू कश्मीर आला तलीमी हंद महकमन ए आई सी टी ई तकाज पूर कर बापत खत्स मन तलब इलम हंद कागजन हिंज परखाई बापत सहूलियती मरकज कायम कर हिदायत दिमित चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमारन वोनमुत मुल्कस अंदर चुनाव आयीनस तहत इंतखाबी कानून तो चुनाव कमीशन कें रहनुमा खतूतन आयन मुताबिक करनावने नवी दिल्ली मं ऑल इंडिया मीडिया कॉन्फ्रेंस खिताब करान वोन ज्ञानेश कुमारन मुल्कस मं 95 करोड़ शहरियन हुन चुनाव फहरिस्त सो अख दस्तावेज उस वक्त अपडेट गसान कॉन्फ्रेंस हुन मौजू कनेक्टिंग स्टेक होल्डर्स स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी रोल ऑफ मीडिया इन इलेक्शन अत कॉन्फ्रेंस मं रियासतन तो यूटियन सलुक थवन वाल अलपल त्रेहत शीतव सहफियो शिरकत अत मं न्यू जम्मू कश्मीर कें सहफियन पे मुश्तमिल एक ग्रुपन तो हिस्से यथ आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर किस खबर हंद शोबस मं एडिटर कौशिकी कश्यप तामिल इतला तो नशरियात वजारत कें बहलिपाई अफसर हंद एक वफदन को रात वजारत मं सेक्रेटरी चंचल कुमार सिंदिस कयातस मं महाराष्ट्र किस वजीर आला देवेंद्र फडणवीस मुलाकात तो हतुक वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट जतवुक याजि वेवस के दोम शुमार खतर कर तैयारी जायज महाराष्ट्र वजीर आला अत भार मं पेशगी तैयारी शुरू कर हिदायत दुत अत खबर यह बुलेटिन अंत खुदा हाफिज।
2: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम में 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर।

मधुर की आवाज प्रोग्राम आप समाप्त करेंगे शाम 8 बजे। कुपवाड़ा जिले का खबरनामा आप समाप्त करेंगे रात 8:30 पर। फिल्म म्यूजिक सुनिएगा रात के 9 बजे। रात 9:30 पर आप प्रोग्राम समाप्त करेंगे पेशरफ्त। मौजू है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। मेहमान है प्रोफेसर परवेज अहमद, डीन स्कूल ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस कश्मीर यूनिवर्सिटी। प्रोग्राम के मेजबान है सलीम कल्लू और प्रोग्राम के प्रोड्यूसर है वसीम फारूक। आपके खतूत और मेल्स पर हम अपनी प्रोग्राम तुंज फरमाइश आप सुनेंगे शब 10 बजे। पेश करेंगे रशीद निजामी। आयुष का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम सेहत बदन आप समाप्त करेंगे सुबह 8:45 पर। मकामी अखबारात की सुर्खियां सुनिएगा सुबह 9 बजे। न्यूज रेल आप समाप्त करेंगे सुबह 9:30 पर। तहरीरो आवाज शबीर अहमद राठौर। प्रोग्राम सूफी सरा पेश होगा सुबह 10 बजे। आज का प्राम हजरत बाबा दाऊद खाकी रहमतुल्लाह के बारे में होगा। तहरीर अब्दुल सलाम सोहरवर्दी, आवाज गुलशन बदरनी और शाहिदा अलवी। लाइव मॉर्निंग इंटरेक्टिव शो आप सुनेंगे सुबह 10:30 पर रशीद निजामी के साथ। छकरतरो आप सुनेंगे सुबह 11:30 पर, जिसमें अली मोहम्मद शेख और साथी पेश करेंगे कलामी अहमद बटवर। फिल्मी नगमे आप समाप्त करेंगे दिन के 12:10 पर। बजमिनिस्वा रास्ता होती है दोपहर 12:40 पर। फौज भाइयों के लिए पहले निशस्त का प्रोग्राम समाप्त करें 1:10 पर। छकर तो पेश होगा दिन के 2:30 पर। अली मोहम्मद शेख और साथी पेश करेंगे कलामी आजरगर। फौज भाइयों के लिए दूसरे निशस्त का प्रोग्राम आप सुनेंगे दिन के 3 बजे। चार बजे पहाड़ी प्रोग्राम पेश होगा। शीना प्रोग्राम से पहर 4:30 पर और गोजरी प्रोग्राम 5 बजे पेश होगा। गर्मी बाइन हिंद खतर ये प्रोग्राम आप समाप्त करेंगे से पहर 6:05 पर। हालाती हाजरा का प्रोग्राम शरबीन आप सुनेंगे शाम 7 बजे। ये थी तफसील आज आपके बाद हमारे यहां से नशर होने वाले प्रोग्रामों की। ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियो वे 268.8 मीटर और FM 103.5 MHz पर 8 बजने वाले हैं। अब आप आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रभात सुनेंगे।

0: एक बूंद को हमें बचाना है तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, दो नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की भी शुरुआत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात मियामी में तीसरे स्थान के लिए फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1575 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है।
3: अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अंबाला रेल सेवा और अमृतसर छेहरटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नागरिक देवो भवः के मंत्र के साथ कार्य कर रही है।
3: हम नागरिक देवो भवः इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को रवाना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर दूसरी राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। सभी मंत्रालयों और विभागों के नोडल अधिकारी और सलाहकार कार्यशाला में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

0: वे राज्य में तीन नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म मृत्यु पंजीकरण से जुड़े मामलों की भी समीक्षा करेंगे। शाम को वे कोलकाता रवाना होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में तीन प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। इन तीन परियोजनाओं में खराड़ी जंक्शन और शिरूर बाईपास के बीच 53 किलोमीटर से अधिक लंबी 6 लेन की सड़क शामिल है, जो 246 किलोमीटर लंबे पुणे संभाजीनगर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का पहला चरण है। इसके अलावा हटपसर और यवत के बीच करीब 32 किलोमीटर की सड़क और तालेगांव चाकन शिकरापुर के बीच करीब 54 किलोमीटर की सड़क का भी शिलान्यास किया जाएगा। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। श्री तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और हिंसा की घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच शांति बनाए रखने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पिछले महीने से चुनावों से पहले जारी प्रदर्शनों के दौरान कई लोगों की मौत हुई है। उच्चायुक्त ने सभी मौतों की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजनाओं को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सोशल मीडिया पर की गई कुछ टिप्पणियां व्यक्तिगत राय पर आधारित हैं और तथ्यों से मेल नहीं खाती। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। चाबहार बंदरगाह के संबंध में विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीका की ओर से दी गई छूट कुछ समय पहले समाप्त हो गई थी और इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित पक्षों के साथ बातचीत जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है।
2: मैं यह कहना चाहूंगा और हम लोगों ने हमेशा से ये कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज जो पूरा क्षेत्र है, ये भारत का अंग है, भारत का अंग था, भारत का अंग रहेगा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गत स्काहकना से राजधानी टालिन में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता के सफल समापन के बाद नए अवसरों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। भारत एस्टोनेशिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि क्षमता और बड़े विनिर्माण आधार को विश्व स्तरीय उत्पादन के साथ जोड़कर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जा रहा है।
3: Working to strengthen each other's
4: हम एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और यूरोपीय संघ के सभी लोगों और भारतीयों के लिए साझा समृद्धि और बेहतर भविष्य की दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं। हमने एफ्टा के साथ समझौते किए हैं जो पिछले साल 1 अक्टूबर से लागू हुए। ब्रिटेन के साथ समझौता 15 जुलाई को लागू हुआ और 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के साथ समझौता 2027 की पहली तिमाही में लागू होगा। इन समझौतों के साथ हम पूरे यूरोप के साथ कई क्षेत्रों में दोतरफा व्यापार के लिए तैयार होंगे।
3: In a variety of

0: Yes, with all of Europe.
1: पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडवार्डो मार्टिनेज आचावास्केज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मिलेंगे। भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए जांजीबार के राष्ट्रपति डॉ हुसैन अली मिवनई आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। कल उन्होंने चेन्नई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 63वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। हमारी श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आगामी कड़ी में हम रामवीर तंवर से बातचीत करेंगे। श्री तंवर ने जल संरक्षण और जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक कार्य किया है। उन्हें आमतौर पर पॉन्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है।
2: मेरा भतीजा आया था कि अंकल आपका नाम टीवी में आ रहा है, और मैं भगा भगा नीचे गया। जब तक नीचे गया तो मन की बात प्रोग्राम तो चल रहा था, बट मेरा वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया था। तो मैं वापस गया अपने कमरे में, जब लेकिन वहां जाके देखा तो मेरा मोबाइल बज रहा था। मैंने उठा के देखा तो बहुत सारे ढेरों सारे मैसेज थे। पक्षी तालाब किनारे पे तो बैठ नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं, तालाब के बीच में एक आईलैंड बनाते हैं मिट्टी का, उस पर बैठने की व्यवस्था करते हैं। अभी तक 100 से ज्यादा आईलैंड बनाया।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी है। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी नोकुहारा के हटने के बाद अंतिम 4 में पहुंची हैं। और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं मृगनयनी पांडे।
4: हॉकी इंडिया आज से देशभर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ. दिलीप तिर्की ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अब अगर बात करें फीफा विश्व कप की, तो फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: मौसम विभाग ने उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कल तक तेज वर्षा हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
5: धन्यवाद जागृति। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, न धुआं न प्रदूषण, रेलवे में हरित परिवहन की शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया की सबसे लंबी और ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, हाइड्रोजन की ताकत, स्वदेशी तकनीक, पटरी पर दौड़ी देश की ऐसी पहली ट्रेन। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर नागरिकता का प्रश्न उठाते हुए लिखा है, समस्या यह है कि अपने देश में नागरिकता सिद्ध करने वाला कोई सुनिश्चित प्रमाण पत्र नहीं है। हिंदुस्तान ने SIR से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, SIR में नाम कटने से नागरिकता नहीं जाती। 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट अगले साल आ सकते हैं, लिखता है दैनिक भास्कर। पॉलीमर शीट कंपनियों से निविदाएं मंगाई, 18 अगस्त को टेंडर। जनसत्ता ने RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा का बयान दिया है, कमजोर मानसून आर्थिक वृद्धि के लिए जोखिम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, 2 नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की शुरुआत भी करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: सुबह के 8:15 हो चुके हैं। आकाशवाणी श्रीनगर,
7: मीडियम वेव 268 आशा

0: या 8 मीटर यानी 1116 किलो हर्ट्स और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रोग्राम है पायाम सुबह, मैं हूं आपका मेज़बान, आपका होस्ट, आपका दोस्त रशीद निज़ामी, और मेरे साथ हैं नवाज शरीफ। जब हमने कश्मीरी में खबरें सुनी उससे पहले नवाज और मैं जब बात कर रहे थे तो आखिर पर न्यूज़ से पहले नवाज साहब ने कुछ कहना चाहा लेकिन मैंने उनको रोका क्योंकि खबरों का वक्त हो रहा था। तो नवाज वो बात आप दोहराएं, क्या कह रहे हैं?
1: जी जी बिल्कुल, आपके जहन में ये बात रही है और मैंने जो बात छेड़ी थी और जो मेरी बात जहन में आई थी कि ये अश्केर एकात पिकनिक स्पॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली तो तिमन जायन कहीं अफराद या कहीं ग्रुप साफ सफाई करान और जो वहाँ पे जो गंदगी वगैरह वो सारा कुछ जो हम ही ने वो सब कुछ किया होता है तो उसको ठीक करते हैं। तो मुझे लगता है सिर्फ यहाँ पर नहीं बल्कि हर मैदान में जो है ऐसे वॉलंटियर्स की ज़रूरत है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम किसी इदारे के साथ वाबस्ता हो, ये ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए हमें तनख्वाह मिले, बल्कि समाज की बहबूदी के लिए, बेहतरी के लिए हमें चाहिए कि वॉलंटियरली जहां पर भी हमसे कुछ हो सकता है अपने समाज के तहत जो हम कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, तो वो हम करें,
0: करना चाहिए। आप देखिए जिनका हम नाम लेते हैं ना, जिनको हम याद करते हैं, कई सारी शख्सियात ऐसी हैं जिन्होंने अपने आप को भूल कर
1: जी,
0: अपने घर को भूल कर, अपने बच्चों को भुला कर लोगों की भलाई के लिए काम किया। आज उन्हीं में से एक शख्सियत का दिन है। आज जिस तरह से हमने पहले ही कहा कि जनूबी अफ्रीका के अजीम रहनुमा, आज़ादी के आलमबरदार और नस्ली इम्तियाज़ के खिलाफ जद्दोजहद की अलामत समझे जाने वाले नेल्सन मंडेला का दिन है
1: जी।
0: उनकी पैदाइश 18 जुलाई 1918 को हुई थी और उनकी जिंदगी की तरफ जब हम देखते हैं तो उन्होंने मिसाल कायम की लोगों की भलाई के लिए।
1: और अगर हम देखें तो आज के दौर में भी जो नेल्सन मंडेला है उनके जैसे किरदार की अहमियत बहुत ज्यादा है।
0: सही बात है।
1: और क्योंकि दुनिया अब भी अदम मसावात, नफरत, तशद्दुद और समाजी तकसीम जैसे मसाइल का सामना कर रही है।
0: बिल्कुल।
1: और उनकी अहमियत को चंद नुकात में समझा जा सकता है। और अगर हम शुरू करें तो अमन और मफामत, मंडेला ने बरसों कैद में रहने के बावजूद इंतकाम के बजाय मुसालहत का रास्ता इख्तियार किया। ये तर्ज फिक्र आज भी तनाजात के हल के लिए एक अहम मिसाल है।
0: उन्होंने नस्ली इम्तियाज के खिलाफ जद्दोजहद की और इस बात पर जोर दिया कि हर इंसान को बराबर के हुकूक मिलने चाहिए
1: जी।
0: देखिए ये उसूल आज भी दुनिया के बहुत से माशरों से मुतालिक है ना।
1: बिल्कुल।
0: आप देखिए मुश्किल हालात में साबित कदम रहना और अपने उसूलों पर कायम रहना उनकी शख्सियत का नुमाया पहलू था
1: जी,
0: जो नौजवानों और रहनुमाओं दोनों के लिए काबिल तकलीद है
1: जी। और उन्होंने इक्तदार को जाती मफाद के बजाय अवामी खिदमत का जरिया समझा। ऐसी क़यादत आज भी मौसर हुक्मरानी के लिए अहम समझी जाती है।
0: अब देखिए अभी हम यही बात कर रहे थे ना
1: जी,
0: कि उन्होंने अपने जाती मफाद के लिए काम नहीं किया, लोगों की भलाई के लिए काम
1: जी
0: किया
1: जी।
0: और अगर हम भी अपने आप का मुहासबा करें और 2 मिनट के लिए सोचें, खामोशी में
1: जी,
0: मुराकबे में सोचें कि हम क्या कर सकते हैं दूसरों के लिए, तो बहुत सारे मसाइल माशरे के हल हो सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: बातें और भी हैं और हमने कोशिश करनी है कि महकमे मौसमियात के डायरेक्टर से बात हो ताकि हम देखें कि गर्मी में कोई राहत मिलने का इम्कान है या नहीं। लेकिन आप सबके लिए ये प्यारा सा नगमा।

0: में भी शिरकत करेंगे। कोलकाता से संदीप उदास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
1: कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने कल टेलिन में एस्टोनिया के खारजी उमूर के वजीर मार्गस सखना से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, सरमायाकारी, डिजिटल तब्दीली, साइबर सलामती और उभरती हुई टेक्नोलॉजियों के शोबों में भारत एस्टोनिया इश्तराक को मजीद मुस्तहकम करने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने भारत यूरोपीय यूनियन आज़ादाना तिजारती माहदे से मुतालिक बातचीत के कामयाब अख्ताम के बाद नए मौके पैदा करने के इम्कान पर भी तबादला ख्याल किया। जनाब सखना की मौजूदगी में भारत एस्टोनिया कारोबारी फोरम से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि भारत की डिजिटल सलाहियतों और आलमी दर्जे की मैन्युफैक्चरिंग के इम्तिजाज को भारत यूरोपीय यूनियन आज़ादाना तिजारती माहदा फ्रेमवर्क की मदद मिलने से दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फ़रोग मिल सकता है और भारत यूरोपीय यूनियन साझेदारी मजबूत हो सकती है। जनाब गोयल ने एस्टोनिया के कारोबारियों को भारत में सरमायाकारी करने की दावत दी और इस बात को नुमाया किया कि भारत की इस्लाहात शफाफ, मुस्तहकम

0: मिलने से दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग मिल सकता है और भारत यूरोपीय यूनियन साझेदारी मजबूत हो सकती है। जनाब गोयल ने इस्टोनिया के कारोबारियों को भारत में सरमायाकारी करने की दावत दी और इस बात को नुमाया किया कि भारत की इस्लाहात, शफाफ, मुस्तहकम और मसाबकत पर मबनी कारोबारी माहौल तश्कील देने पर मरकूज हैं। स्काई रूट एरोस्पेस आज सुबह विक्रम 1 को पहली बार इसके मदार में पहुंचाएगा। प्राइवेट कंपनी के जरिए तैयार किया गया ये भारत का पहला रॉकेट है जो सैयारचों को खला में ले जाएगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मिशन को भारत के खलाई सफ़र में एक तारीखी नया बाब करार दिया। उन्होंने कहा कि 4 सतहों वाले इस रॉकेट को तेज़ रफ्तार से और मांग किए जाने पर सैयारों को खला में ले जाने की खिदमात फराहम करने के मकसद से तैयार किया गया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस मिशन से मुल्क के नौजवानों की सलाहियत, अज़्म और कारोबारी जज्बे की अक्कासी होती है। साथ ही साथ इससे भारत के खलाई शोबे की असलाहत नुमायाँ होती हैं जिनसे इख्तरा और कारोबारी जज्बे के लिए नए मौक़े पैदा हो रहे हैं। अक़वामे मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ से मुतालिक एजेंसी ने पाकिस्तान के ज़ेरे कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली बेचैनी पर तशवीश का इजहार किया है। एजेंसी ने मुजाहिरीन और हिफाजती दस्तों के अहलकारों की हलाकतों की तहकीक़ात के लिए कहा है। अक़वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ से मुतालिक कमिश्नर वॉल्कर टर्क ने अपने एक बयान में पाकिस्तान के हुकाम से ज़ोर देकर कहा कि वो तहम्मुल से काम लें, बुनियादी हकूक़ की हिफाजत करें और महीने के अवाखिर में इलाकाई इंतखाबात से पहले तशद्दुद के जिन वाकयात की इत्तला दी गई है उनकी जवाबदेही कायम करें। जनाब टर्क ने अमन व सुकून बरकरार रखने की अपील की है क्योंकि खित्ते में कशीदगी का सिलसिला लगातार जारी है। हाई कमिश्नर ने सभी हलाकतों की फौरी, मुकम्मल और गैर जानबदाराना तफ्तीश के लिए आवाज़ उठाई है जो बेचैनी के सबब वाक़ हुई हैं। इस दौरान वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि हुकूमत हमेशा कहती रही है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम सभी इलाके भारत का अटूट हिस्सा हैं।
1: मैं ये कहना चाहूँगा और हम लोगों ने हमेशा से ये कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज जो पूरा क्षेत्र है ये भारत का अंग है, भारत का अंग था, भारत का अंग रहेगा।
0: गजा में आज एक तदफीन के दौरान हुए इसराइल के फिजाई हमले में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई और दीगर 22 जख्मी हो गए। नुसीरत पनागुजी कैंप में वाक़े अवदा अस्पताल ने हलाक होने वालों की तादाद की तस्दीक की है। इस हमले पर इसराइली फौज की जानिब से कोई फौरी तबसरा नहीं किया गया। इसराइल और हमास ग्रुप गुज़िश्ता साल अक्टूबर में जंगबंदी समझौते पर राजी हुए थे जिसका मकसद 2 साल तवील जंग को रोकना था। इंतहाई शिद्दत की लड़ाई अब कम हो गई है, ताहम जंगबंदी के नफाज के बाद से गजा में कम अज़ कम 1,123 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन समझौते के नाकाम होने के बाद अमेरिकी फौजों ने कल लगातार 7वीं रात ईरान पर हमले जारी रखे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये हमले कमांडर इन चीफ की हिदायत पर ईरान की फौजी सलाहियतों को कम करने के लिए किए जा रहे हैं। ईरानी मीडिया ने खबर दी है कि अमरीकी फौज के फिजाई हमलों की शुरुआत के कुछ ही देर बाद कल रात जुनूबी बंदरगाही शहरों बंदर अब्बास और सिरिक में कई धमाके सुने गए। दूसरी जानिब ईरान ने कहा है कि उसके ड्रोन्स ने खित्ते में मौजूद अमरीकी मोर्चों के खिलाफ अपने ऑपरेशन के हिस्से के तौर पर उर्दुन और कुवैत में अमरीकी फौजी मराकज़ को निशाना बनाया है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 16,700 करोड़ रुपये से ज़्यादा लागत के 3 कौमी शाहराह प्रोजेक्टों का मुश्तरका तौर पर संग बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों से पुणे खित्ते में कनेक्टिविटी में इजाफा होगा, सफ़र के वक्त और ट्रैफिक में कमी आएगी, नीज़ सनती व इकतसादी तरक्की को फ़रोग हासिल होगा। इन प्रोजेक्टों पर डिज़ाइन, रकूम की फराहम, तामीरात, कामकाज और मुंतकली DFBOT की तर्ज पर अमल दरामद किया जाएगा जिन्हें 4 साल की मुद्दत में मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारतीय महकमे मौसमियात ने हिमालय के ज़ैली मगरबी बंगाल इलाके और सिक्किम में कल तक शदीद से बहुत शदीद बारिश और अलग अलग जगहों पर इंतहाई दर्जे की बारिश के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में कल तक शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने साहिली आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, वस्ती महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में अगले दो दिन के दौरान गरज चमक

0: के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाओं की पेशगोई की है। इस दौरान आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में गर्मी और नमी का इम्कान है। मैक्सिको के जनूबी साहिल पर कल 7.4 शिद्दत का ताकतवर जलजला आया। मैक्सिको की सदर क्लॉडिया शेनबॉर्न ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जलजले के बाद किसी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है, ताहम उन्होंने कहा कि हिफाजती इंतजाम कर लिए गए हैं। जंजबार के सदर और इनकलाबी काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर हुसैन अली मोइनवी, जो भारत के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर हैं, आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। इससे पहले सदर मोइनवी ने कल चेन्नई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 63वें तकसीम असनाद में मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि IIT मद्रास के पहले बैन अवी कैंपस IIT मद्रास जंजीबार का क्याम तालीमी संगमील से कहीं ज़्यादा की नुमाइंदगी करता है। मारूफ भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु जापान ओपन के खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने दुनिया की चौथे नंबर की खिलाड़ी चीन की शेन यूफी को शिकस्त दी। सिंधु कल खेले गए क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की साबिक आलमी चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के दस्तबरदार होने के बाद सेमीफाइनल में पहुंची थीं। फीफा आलमी कप में आज रात मायामी स्टेडियम में यूरोपीय हरीफ फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा मुकाम हासिल करने के लिए प्लेऑफ मैच होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 2:30 बजे शुरू होगा। तीसरे मुकाम के लिए प्लेऑफ मैच को आलमी कप के हिस्से के तौर पर साल 1934 में टूर्नामेंट के दूसरे एडिशन में शामिल किया गया था। इसके बाद से सिर्फ साल 1950 के एडिशन में ये मैच नहीं हो सका था। इस दौरान कल रात न्यूयॉर्क के न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान फीफा आलमी कप का फाइनल मैच होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू होगा। हॉकी इंडिया आज से मुल्क भर में मुल्कगीर सतह पर कोचिंग और इंतजामी उमूर के तौर तरीकों से मुतालिक वर्कशॉप का आगाज करेगा, ताकि मुल्की सतह पर हॉकी के फरोग के लिए इको निज़ाम को मुस्तहकम किया जा सके। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असलम बेग।
1: शुक्रिया। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों मुल्क की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किए जाने की खबर को शह सुर्खी बनाया है। ये ट्रेन हरियाणा के जिंद से सोनीपत तक चलेगी। फॉरेस्ट सर्विस के अफसरान महज जंगलात के मुंतजिम नहीं हैं, बल्कि कुदरती वरसे के भी मुहाफिज हैं। इस बात का इजहार ख्याल सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ट्रेनी अफसरान से मुलाकात के दौरान किया। इस खबर को रोजनामा प्रताप ने पहले सफ़े पर जगह दी है। सतीश गोलछा की जगह अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर बनाए जाने की खबर को रोजनामा इनकलाब समेत दीगर अखबारों ने खसूसी तौर पर शाये किया है। खबरों के मुताबिक वजारत दाखिला का हुक्म जारी होते ही उन्होंने चार्ज संभाल लिया है, जबकि रोजनामा इनकलाब ने अमरीका और ईरान की तरफ से एक दूसरे के ठिकानों पर हमले जारी रहने की खबर पर तवज्जो मरकूज की है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्कीम के तहत पूरे मुल्क में 75 रेलवे स्टेशनों का इफ्तिताह किया, जिनकी हाल ही में जदीदकारी की गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने दो नई रेलगाड़ियों को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। वज़ीर-ए-दाखला अमित शाह आज मगरबी बंगाल में BSF की बाहरी सरहदी चौकी का दौरा करेंगे। वो हिफाजत इंतजाम का जायजा लेंगे और तरक्याती इकदाम का आगाज करेंगे। अक़वामे मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक़ एजेंसी ने पाकिस्तान के ज़ेर क़ब्ज़ा जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली बेचैनी पर तशवीश जाहिर की है। उसने मुजाहिरीन की अमवात की तफ्तीश के लिए आवाज़ उठाई है। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। और फीफा आलमी कप में आज रात मायामी में तीसरे मुकाम के प्लेऑफ मैच में फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।
2: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम 268.8 मीटर और FM 103.5 MHz पर। पेश है स्पॉन्सर प्रोग्राम सेहत बदन।
3: तमीन पेश खिदमत स्पॉन्सर प्रोग्राम सेहत बदन। यह प्रोग्राम तहतम वातनावान हया वेलनेस एंड रिसर्च सेंटर सैफको प्लाजा अपोजिट बस स्टैंड बटामालो श्रीनगर ये डिस्क पाइलस तो प्रोस्टेट वगैरह खतर ऑपरेशन बगैर इलाज सपदान फोन 7051545788।

0: चीफ सेक्रेटरी रिव्यूज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन जे एंड के।
1: कमिश्नर एसएमसी रिव्यूज इंटीग्रेटेड एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर कैटल पॉन्ड एट टिंगपुरा।
0: एक और अंग्रेजी रोजनामे की सुर्खी है, फ्यूचर ऑफ वुलर लेक रेस्ट ऑन इट्स विलेजेस, 30 वुलर विलेजेस टू बी क्लस्टर्ड फॉर साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज CCF।
1: एक बार फिर नजर दौड़ाते हैं उर्दू और रोजनामों की तरफ और एक और सुर्खी है, 30,000 रुपए रिश्वत लेने के इल्जाम में असिस्टेंट इंजीनियर गिरफ्तार, सीबीआई की तरफ से बिछाए गए जाल में फंस गया, कानूनी कार्रवाई जारी।
0: महंगाई का दबाव बरकरार, श्रीनगर में मटन, मुर्ग, अंडे और सब्जियां मजीद महंगी।
1: नीट इम्तिहान में दो कश्मीरी तलबा कौमी सतह पर टॉप 125 में शामिल, हादिया निसार और जैदान वानी की शानदार कामयाबी, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया।
0: जम्मू कश्मीर के मीडिया नुमाइंदों की वफद की दिल्ली में मीडिया प्रोफेशनल्स ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत।
1: एक और सुर्खी है, स्कॉस्ट कश्मीर में तहकीकाती रोड मैप का जायजा, किसान मरकूज और तल पर मबनी तहकीक पर जोर।
0: तरक्की तभी मानी खैज है जब इसके समरात आम लोगों तक पहुंचते हैं, तरक्की ही जम्मू कश्मीर की खुशहाली की कलीद। सतीश शर्मा ने छंब में कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा।
1: खान साहिब में मुश्तबा मछली जहर खुरानी, 4 फार्म मुतासिर, सैकड़ों मछलियां हलाक, मुतासरीन को लाखों का नुकसान।
0: गोल मुखजी में सड़क से दौरान शब होम पाइपें गायब, लोगों ने चोरी का लगाया इल्जाम, महकमे से कानूनी कार्रवाई का मुतालबा।
1: नीट इम्तिहान में कामयाब तलबा को वजीर आला उमर अब्दुल्ला की मुबारकबाद।
0: तेज रफ्तार ट्रक कई गाड़ियों से टकरा गई, कई अफराद जख्मी।
1: जम्मू कश्मीर में मनरेगा का बाब बंद, नई दिही रोजगार स्कीम का आगाज, 125 दिन रोजगार की गारंटी, मगर नई स्कीम के निफाज पर कई खदशात बरकरार।
0: जम्मू खिते में एंटी ड्रग ऑपरेशन तेज, हीरोइन गांजा बरामद, मुनशियात फरोशों की कमर तोड़ दी गई।
1: कोलम चिनार चश्मे में मछलियों की पुरेसरार हलाकत, अवाम में तश्वीश।
0: अशोक कौल का मजबूत डिजिटल रसाई और निचली सतह पर तंजीमी राबते पर जोर।
1: और महकमे बिजली में 8 आला कुर्सियां खाली, इंतजामी व तरकियाती उमूर मुतासिर होने लगे।
0: तो सामीन, ये थी आज की सुर्खियां।
2: आज की सुर्खियां।

0: आपने जगजीत सिंह की आवाज में गजल सुनी।
1: हमारी जिंदगी के लिए जरूरी मालूमात,
2: माहिरीन की आरा, तजुर्बा और रहनुमाई,
3: उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सक्लूसिव फंडिंग रखी है और स्टेट गवर्नमेंट ने न कि इसको एक्नॉलेज किया, इसको चैनलाइज किया, अपनी तरफ से अच्छा खासा पैसा डाला हुआ है।
1: सेहत के मशवरे,
4: ऑर्थोपेडिक कुन तकलीफस मंज ब्रॉडली करन यम क्लासिफाई इनटू सम ग्रुप्स,
1: साइंसी मालूमात और रोजमर्रा के मुफीद नुकात
2: जो आप तक पहुंचेंगे एक मौसर और बावकार अंदाज में।
1: आकाशवाणी श्रीनगर का मॉर्निंग लाइव शो पयाम में सुबह,
2: इल्म और आगही का संगम, हर रोज सुबह 7:10 से 11:00।

0: 20 मिनट तक पयामे सुबह।
1: मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर पयामे सुबह।
2: यह जमीन आप समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन और प्रोग्राम जारी है पयामे सुबह। और रशीद साहब, गज़ल इतनी खूबसूरत थी और गज़ल को सुनते सुनते ही मेरे जहन में ये बात आ गई कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त लगता है और कहीं ना कहीं शुरुआत करने में क्यों हमेशा वक्त लगता है, जबकि अगर कोई अच्छा काम भी करना हो तो हम यहाँ से जो है हाथ बढ़ाने में हिचकिचाते हैं और कहीं ना कहीं क्या वो हमारा ईगो जो है वो आड़े आता है या कुछ और चीज़ें?
3: असल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि नाकामी का डर कि अगर मैं ये कदम उठाऊं ये मेरे लिए सही साबित होगा नहीं होगा
2: जी।
3: या दूसरा कि अगर मैंने कोई बिजनेस शुरू किया या मैंने कोई पढ़ाई शुरू की क्या मुझे कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी, तो ये कुछ खदशात हैं और कई कई ये खदशात बदल भी जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं ये काम करूंगा। ठीक है, कुछ ऐसे खदशात हैं तो जिससे पहला कदम उठाने में वक्त लगता है, लेकिन हिम्मत से, लगन से, मेहनत से, ध्यान से जब इंसान आगे बढ़े तो मंजिल पर जरूर पहुंचता है।
2: जी बिल्कुल। और जब रिश्तों की बात आती है, कभी कभार किसी शख्स के साथ आपकी थोड़ी अनबन होती है, रिश्तों में कभी कभार जो है वो ऊंच नीच होती है
3: जी।
2: तो फिर उस रिश्ते को बहाल करने में भी आप हिचकिचाते हैं, उसमें पहला कदम उठाने में आप हिचकिचाते हैं,
3: वो बदकिस्मती है। देखिये, मैं आपको एक बात बताऊंगा, अल्लाह ने मौका दिया है, अगर आपका जहन वसी है, अगर आपको वो उस तजल्ली का एहसास है
2: जी,
3: उस रोशनी का एहसास है जो रोशनी उस रास्ते को मुनव्वर करती है जो रास्ता सीधे हक की तरफ जाता
2: जी।
3: है, तो आप ऐसा करेंगे, अगर खता भले ही किसी और की हो लेकिन आप उठ करके उसे माफी मांगेंगे, इनकिसारी से, इज्जत से रिश्ता वापस हमवार करेंगे
2: जी। जी, और कहीं ना कहीं कोशिश हम सबकी होनी चाहिए कि हम पहल करें और इससे पहले कि रिश्ते और बिगड़ जाए, क्योंकि कहते हैं कि दूरी जो है वो रिश्तों को बिगाड़ देती है और जितना हम दूर रहेंगे जितनी बातचीत कम होगी, जितने आपके ख्यालात, और कभी कभार आपको चाहिए कि आप इस बात को समझे कि अगर आपकी गलती है तो मान लें और माफी मांग लें और कहे कि चलिए मुझसे गलती हो गई, और जो आगे वाला है उसको भी चाहिए कि वो भी माफ कर दे और मामला ये भी खत्म करे।
3: दुनिया जो है ना, ये दुनिया इन्हीं चीजों पर मुनहसर है। हम कहते हैं ना कि भरोसे पर दुनिया कायम है
2: जी।
3: ये भरोसा क्या है? भरोसा ये है कि अगर आप मुझसे नाराज हो गए, मुझे ये भरोसा है कि आप आकर के मुझे
2: जी
3: मनाएंगे।
2: जी जी जी, बिल्कुल,
3: ठीक है।
2: बिल्कुल।
3: मुझे एक शेर याद आ रहा है, आप सुनिएगा, मुझे उम्मीद है हमारे जो सुनने वाले हैं उनको भी अच्छा लगेगा
2: जी।
3: मेरी तलाश में मायूस लौटने वाले, मेरी तलाश में
2: जी
3: मायूस लौटने वाले, तेरे हुदूद में आकर तुझे पुकारूंगा।
2: बहुत खूब। और कहीं ना कहीं ये शेर जो है जो अभी हम बात कर रहे थे, इस पे फिट बैठता है।
3: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कि इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वही पहल करे
2: जी।
3: जिस इंसान, अब सबके जहनों में जब ये होगा कि मैं ही पहल करूं कि फिर से सुलह हो जाए, फिर से हमारे रिश्ते हमवार हो जाए, तो माशरा बेहतर बनता है।
2: दूसरों की पहल का इंतजार ना करे।
3: और यहां से घड़ी का इशारा है कि 9:20 होने वाले हैं, चंद ही लम्हों में हम कश्मीरी और उर्दू में खबरें सुनेंगे।
4: एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
5: चिनार की छांव तक किताबों का एक खूबसूरत जहां आपका इंतजार कर रहा है, आइए तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल में, जहां मिलेंगी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के 200 से अधिक बुक स्टॉल्स, साथ ही क्रिएटिव वर्कशॉप्स, बच्चों के लिए लिटरेरी सेशंस, डिजिटल रीडिंग कॉर्नर और कल्चरल परफॉर्मेंसेस का लुत्फ उठाइए। 18-26 जुलाई SKICC श्रीनगर। चिनार बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद NCPUL एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर। टुगेदर वी रीड, टुगेदर वी लीड।
6: آداب، یہ آکاشوانی سرینگر شبنم تلگ بوزن خبر۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے جکھے نے ادھمپور کس یاترا بس پیش آمتے حادثے پتہ سر

0: सहूलियात फराहम करें। उन्होंने हादसे में जख्मी अफराद की फौरी सेहतियाबी की दुआ की है। वाजह रहे आज सुबह यात्रा काफिले में शामिल एक गाड़ी को हादसा पेश आया, जिसमें उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले 5 यात्री और गांधरबल से ताल्लुक रखने वाला ड्राइवर जख्मी हुआ है। सभी जख्मी अफराद को जीएमसी उधमपुर मुंतकिल किया गया है, जहां वो जेर इलाज हैं। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा दोनों रिवायती रास्तों पहलगाम और बालतल से खुशअसलूबी के साथ जारी है। कल शाम तक लगभग 3.5 लाख से ज्यादा यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी देकर शिवलिंगम के दर्शन किए। दरियासना आज सुबह 7 बजे तक मजीद 734 यात्रियों ने शिवलिंगम के दर्शन किए। उधर जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से 3,632 यात्रियों पर मुश्तमिल 17वां काफिला आज सुबह वादी की तरफ रवाना किया गया। दरियासना लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि इस साल सालाना अमरनाथ जी यात्रा के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं और इस हवाले से यात्रियों की जानिब से मिलने वाला फीडबैक इंतहाई हौसला अफजा है।
1: जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी विभागों के लोग, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, सुरक्षा बलों के लोग सबने मिलकर के मैं ये 5वीं यात्रा देख रहा हूँ। इस बार काफी बेहतर प्रबंध किया और जो फीडबैक यात्रियों से मिला है वो भी उत्साहवर्धक है और मुझे लगता है कि बाबा अमरनाथ की कृपा से सफल यात्रा अच्छे ढंग से चल रही है। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को भी इस यात्रा से बड़ा लाभ होगा। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस यात्रा को एक यादगार यात्रा और ऐतिहासिक यात्रा के रूप में याद किया जाएगा।
0: पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक वफद ने इदारे के सीईओ और सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर रंजीत मेहता की कयादत में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। इस मौके पर यूटी में मईशत, फिल्म, सियाहत और सरमायाकारी के मौकों को फरोग देने से मुतल्लिक मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादले ख्याल किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वफद को यकीन दिलाया कि इंतजामिया सरमायाकारी, सियाहत और मईशत को फरोग देने में मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। दरियासना वर्ल्ड कांग्रेस ऑन नैनो मेडिसिन की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सदर और इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो मेडिकल साइंसेज के बानी डायरेक्टर प्रोफेसर रमेश चंद्र ने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर से अलाहिदा मुलाकात की, जिस दौरान मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में साइबर जराइम से निपटने और साइबर सिक्योरिटी को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए एक अहम पेशरफ के तहत JK4C यानी जम्मू कश्मीर साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर कायम करने को मंजूरी दी है। महकमे दाखिला की तरफ से जारी एक हुक्मनामे के मुताबिक ये मरकज डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की निगरानी में खुद मुख्तार इदारे के तौर पर काम करेगा। 23 जिले साइबर पुलिस स्टेशन और 2 जोनल साइबर मराकज इस नए इदारे के साथ मुंसलिक रहेंगे, जिनका सरबरा IGP रैंक का अफसर बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर होगा। सेंटर मरकजी वजारत दाखिला के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C के साथ करीबी इश्तराक में काम करेगा, ताकि इसे कौमी सतह पर साइबर जराइम से निपटने के निजाम के हम पल्ला बनाया जा सके। खुराक और शहरी रसदात के वजीर सतीश शर्मा ने कहा है कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला की कयादत वाली हुकूमत शफाफ, जवाबदेह और तरक्की पर मबनी तर्ज हुक्मरानी के लिए पुरअज़्म है, जिसमें यकसां तामीर और तरक्की और माशरे के हर तबके की फलाह बहबूद को खसूसी अहमियत दी जा रही है। इन बातों का इजहार उन्होंने हल्के इंतखाब छम में 10 करोड़ रूपये से ज्यादा लागत के मुतअद्दिद अहम तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने के मौके पर किया है। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने जम्मू कश्मीर में कारोबार और आसान तर्ज जिंदगी को फरोग देने के लिए मुल्की सतह पर कामयाब साबित हुए बेहतरीन हुक्मरानी के मॉडल को अपनाने पर जोर दिया है। वो मुख्तलिफ महकमों के इंतजामी सेक्रेटरियों और मुतलका महकमों के सीनियर अफसरान की एक आला सतह की मीटिंग में इजहार ख्याल कर रहे थे। चिनार बुक फेस्टिवल का तीसरा शुमारा आज से SKICC श्रीनगर में शुरू हो रहा है। 26 जुलाई तक जारी रहने वाले इस कुतुब मेले में मुख्तलिफ मौजूआत का अहाता करने वाली किताबों का जखीम खजाना फरोख्त के लिए दस्तियाब रहेगा। इस फेस्टिवल में मुल्क भर से पब्लिशर्स अपनी खिदमात दस्तियाब रखते हैं। आखिर में दर्जे हरारत, जम्मू कश्मीर में गर्मी की शिद्दत में एक बार फिर गैर मामूली इजाफा दर्ज किया गया है। वादी में गुज़श्ता रात इस मौसम की अब तक की गर्म तरीन रात रिकॉर्ड की गई। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत 23.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्ज हरारत 28.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
2: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मेरे 268.1 मीटर और FM 103.5 MHz पर सामीन सुबह के 9:30 और 32 सेकंड हुए हैं।
3: रीजनल न्यूज यूनिट आकाशवाणी श्रीनगर की पेशकश रेडियो न्यूज रीड, हफ्ते रफ्ता की खास और अहम खबरों के खुलासे पर मबनी प्रोग्राम रेडियो न्यूज रीड।
4: समीन आदाब, न्यूज रील का ताजा शुमारा लेकर मैं शबीर उज़्ज़मा। हमारे आज के शुमारे में भारत और बरतानिया के दरमियान

0: मिलाएगा। दरी यसना चीफ सेक्रेटरी ने एक अलहदा मीटिंग के दौरान यूटी में अमलाए जा रहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा एहसन तरीके पर जारी है और दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। पवित्र गुफा में हाजिरी देने वाले यात्रियों की तादाद 4 लाख के करीब पहुंच रही है। इस साल की सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा की एक खास बात ये भी है कि अब तक 13 श्रद्धालु यात्रा करने की गर्ज से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से पैदल सफर करते हुए कश्मीर पहुँच गए। इनमें से चंद एक यात्रियों ने न्यूज रील से बात करते हुए कहा,
1: नाम वर्धमान मीनायम जयपुर राजस्थान से कंटिन्यू पैदल यात्रा करते हुए आ रहे हैं। देखिए पवन की बात वो होते है तो बहुत ही बढ़िया है। रही यहाँ के स्थानीय निवासियों की बात तो ऐसे नहीं लगता मुझे कि मैं अपना राजस्थान छोड़ के यहाँ आया हूँ। ऐसे लगता है कि मेरे भाई यहीं वापस मिल गए। बहुत ही बढ़िया इनका व्यवहार है, भाईचारे से रहते हैं, हर कहीं पानी के लिए पूछते हैं, कोई किस नाश्ते के लिए पूछते हैं। बहुत ही बढ़िया इंसान है कश्मीर के।
2: अरविंद रघुवंशी है, हम जिला गुना MP के रहने वाले। हम 14 मई को घर से निकले हुए।

0: भाई यहीं मिल वापस मिल गए। बहुत ही बढ़िया इनका व्यवहार है, भाईचारे से रहते हैं, हर कहीं पानी के लिए पूछते हैं, कोई किस नाश्ते के लिए पूछते हैं। बहुत ही बढ़िया इंसान है कश्मीर के।
1: हम अरविंद रघुवंशी है, हम जिला गुना MP के रहने वाले हैं। हम 14 मई को घर से निकले हुए, 1600 किलोमीटर चल के आ चुके हैं। थोड़े एक दो दिन और लगेंगे बाबा के दरबार पहुंचने के लिए, हमें एक दो महीने हुए करीब चलते हुए। देखिए प्रशासन ने सारी व्यवस्था की हुई है, कोई व्यवस्था हम कोई कमी नहीं है। यहाँ के लोगों की बात करें तो यहाँ के लोग तो महान है।
2: कश्मीर और जम्मू सूबे के सरमाई जोन इलाकों के तमाम सरकारी डिग्री कॉलेजों में गर्माई तातीलात का ऐलान किया गया है। महकमा आला तालीम ने कहा है कि ये डिग्री कॉलेज गर्मियों की छुट्टियों के लिए 21 जुलाई से 2 अगस्त तक बंद रहेंगे। श्रीनगर में आज से शुरू होने वाले बड़े किताब मेले के सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। चिनार बुक फेस्टिवल का ये तीसरा शुमारा 26 जुलाई तक जारी रहेगा, जिसमें मुख्तलिफ मौजूआत का इहाता करने वाली किताबों का एक जखीम खजाना फरोख्त के लिए दस्तियाब रहता है। इस फेस्टिवल में मुल्क भर से पब्लिशर्स अपनी खिदमात दस्तियाब रखते हैं। बुक फेस्टिवल की अहमियत और इंतजाम के ताल्लुक से नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया के डायरेक्टर युवराज मलिक ने न्यूज रील के साथ बात करते हुए कहा,
3: जैसा कि आप जानते हैं कि चिनार बुक फेस्टिवल 18 से 26 जुलाई डल लेक के खूबसूरत किनारे SKICC में हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं। इसे शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर, हमारे बाकी संस्थान और साथ ही साथ सभी लोगों के पार्टिसिपेंट से कम्युनिटी इवेंट के तौर पर हम लोग लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको लिटरेचर, आर्ट, कल्चर और बहुत सारी चिल्ड्रन एक्टिविटीज के साथ एक मेगा बुक फेयर भी देखने को मिलेगा, जिसमें 200 से ज्यादा पब्लिशर्स हैं और 250 के आसपास यहाँ पर स्टॉल होगी। सो आने वाले 9 दिन निश्चित रूप से आर्ट, लिटरेचर, कल्चर का सेलिब्रेशन है और कश्मीर अपने आप में एक समृद्ध परंपरा रही है, उस परंपरा को आगे ले जाने का काम चिनार बुक फेस्टिवल ने किया है। और निश्चित रूप से पूरी सिटी के लिए, पूरे कश्मीर के लिए गर्व का विषय है कि हमारे पास भी अपना एक खुद का एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक पुस्तक का महोत्सव हम लोग यहाँ स्थापित कर पाए। तो जो भी हमारी कश्मीर की संस्कृति है, जो भी परंपराएं हैं, उनको एक मंच देने का काम चिनार बुक फेस्टिवल के माध्यम से हमने प्रयास किया।
2: राजौरी जिले की तारीखी भैरव यात्रा को नेशनल इन्वेंट्री ऑफ इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया में शामिल किया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस पेशरफ्त को राजौरी जिले के लिए एक फख्र का मकाम करार देते हुए जिला इंतजामिया और जम्मू कश्मीर के डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर को मुबारकबाद दी है। LG ने कहा है कि कौमी सतह पर इस यात्रा को मुकाम मिलने से राजौरी की रूहानी और सकाफती रिवायात को तहफ्फुज देने, इसे लोगों तक पहुंचाने और इसकी दस्तावेज साजी करने में मदद मिलेगी। जम्मू कश्मीर नशा मुक्त अभियान के तहत UT के तकरीबन सभी अजला में स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाईयों और आवाम में जानकारी पैदा करने की सरगर्मियां जारी और सारी हैं। गांधरबल जिले में इस अभियान के तफसीली अहवाल के साथ हमारे नुमाइंदे।
4: सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक गांधरबल पुलिस ने इस अरसे में 26 मुकदमा दर्ज किए और 29 अफराद को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान 82.14 ग्राम हेरोइन, 881 ग्राम चरस, 15.45 किलोग्राम बंगपत्री, 109 बोतलें कोडीन और 84 साइकोट्रॉपिक कैप्सूल बरामद की गई, जिनकी मजमुई मालियत 20,84,000 रुपए बताई जाती है। पुलिस ने मजीद कार्रवाई करते हुए 4 मुलजमान को PIT NDPS एक्ट के तहत हिरासत में लिया, जबकि 12 बैंक अकाउंट मुंजमद किए गए और मंशात के कारोबार से वाबस्ता 2,27,00,000 की 3 जायदादें भी जब्त की गई। जिला भर में 339 इंसदादे मंशात बेदारी प्रोग्राम मुनक्कद किए गए। मंशात का अंजाम सिर्फ तबाही है, जबकि जिंदगी का असल नशा कामयाबी। आइए महफूज और रोशन माशरे की तामीर का अहद करे। से नो टू ड्रग्स, गांधरबल से मैं साबिर अयूब।
2: कश्मीर यूनिवर्सिटी में एक तकरीब के दौरान 17वें कौमी यूथ पार्लियामेंट मुकाबले में कौमी चैंपियन के बतौर उभरने वाली यूनिवर्सिटी की टीम की इज्जत अफजाई की गई। इस मुकाबले का एहतमाम पार्लिमानी उमूर की मरकजी वजारत ने किया था। इज्जत अफजाई की यह तकरीब यूनिवर्सिटी के गांधी भवन में इदारे की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान की सदारत में मुनक्कद हुई, जिसका एहतमाम तालिब इल्मों की बहबूद के शोबे ने किया था। इस मौके पर शोबे के रजिस्ट्रार प्रोफेसर नसीर इकबाल और दीगर सीनियर अहदेदारान भी मौजूद थे। वाइस चांसलर ने ऐलान किया कि यूनिवर्सिटी की नुमाइंदगी कौमी सतह के यूथ लीडरशिप प्रोग्रामों में करने वाले तालिब इल्मों को यूनिवर्सिटी के फ्रेमवर्क के मुताबिक एकेडमिक क्रेडिट भी दिए जाएंगे। इधर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने तालीमी साल 2026-27 के लिए यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्रामों के दाखिले के लिए अहल उम्मीदवारों से ऑनलाइन दरखास्तें तलब की हैं। उम्मीदवार जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2026 में शामिल हुए हैं और यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्रामों में दाखिले के ख्वाहां हैं, से कहा गया है कि वो यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें। 7 जुलाई से शुरू हुआ ये अमल कल 19 जुलाई तक जारी रहेगा।

यो आकाश पनि हुन् श्रीनगर स्टेशन समय सुबह 10 बजे पेश हो सुफित ऋषि व्याचारण पेठ मबनी प्रोग्राम सुफी सदा अज प्रोग्राम छो हजरत बाबा दाऊद खाकी रहमतुल्लाह अलैह मुतल्लिक तहरीर अब्दुल सलाम सोहरवर्दी तो आवाज़ गुलशन बदरनी तो शाहिदा अलवी।

0: मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियाँ बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग।
1: घर का AC हो या गीजर, वोल्टेज का हीरो सिर्फ एक BS वॉइस स्टेबिलाइजर्स। पावर फ्लक्चुएशन सॉर्टेड, लॉन्ग लाइफ फॉर योर अप्लायंसेस गारंटीड। BS वॉइस, दैट्स बेस्ट सर्विस। कॉल नाउ 9419001960।
2: चिनार की छांव तले किताबों का एक खूबसूरत जहां आपका इंतजार कर रहा है, आइए तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल में, जहां मिलेंगी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के 200

0: से अधिक बुक स्टॉल्स, साथ ही क्रिएटिव वर्कशॉप्स, बच्चों के लिए लिटरेरी सेशंस, डिजिटल रीडिंग कॉर्नर और कल्चरल परफॉर्मेंसेस का लुत्फ उठाइए। 18 से 26 जुलाई SKICC श्रीनगर, चिनार बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद NCPUL एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर। टुगेदर वी रीड, टुगेदर वी लीड।
1: सूफी सदा ये प्रोग्राम जो प्रत दोह आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बजे पेठ 10:30 बजे तक नश शब्दान बलि बोजो

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: प्रोग्राम बोजान सूफी सदा ये प्रोग्राम दोह आकाशवाणी श्रीनगर पे सुबह 10 बजे पे साढ़न दहन बजन तम नशर सपदान।
2: समिन तुजो सूफी वेचारन पे मबनी प्रोग्राम बोजान सूफी सदा ये आकाशवाणी श्रीनगर है। मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 MHz पर। आपको बताते चले कि आप प्रोग्राम सुन रहे हैं पयाम सुबह, और अब वक्त हो रहा है लाइव इंटरैक्टिव शो का। लीजिए समाप्त कीजिए।
3: बहुत बहुत शुक्रिया नाहिदा आपका। ये प्रोग्राम पयाम सुबह है, सही है, और ये प्रोग्राम सुबह 7:10 पर शुरू होता है और 11:30 तक ये प्रोग्राम जारी रहता है। और इस दूसरे हिस्से में हम हर बार किसी मेहमान से बात करते हैं किसी खास टॉपिक पे, किसी खास मौजू पे। आज सैटरडे है और आज हमारा जो थीम रहता है, हमारा थीम रहता है आज इश्यूज़ रिलेटेड टू पब्लिक, यानी आवाम से मुतल्लिक जितनी भी मुश्किलात हैं उनका सदबाब ढूंढने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं मुख्तलिफ मेहमानों के साथ, ताकि हमारा जो माशरा है, हमारा जो समाज है, वो सही समत से चले और अच्छी तरह से सारे लोग इस माशरे में रहें। अब चूंकि 10:30 होने वाले हैं, अभी 1 मिनट है, लेकिन मेरे जो मेहमान हैं ये तशरीफ आवर हो चुके हैं, मेरे साथ बैठे हैं आज के मेहमान। कौन है आज के मेहमान मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मैं पहले कुछ बात करूंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। सामने क्राम मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने मालूमात तक रसाई, तालीम, तहकीक, सहाफत और रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदाज को तेज़ी से बदल दिया है। आज मालूमात चंद लम्हों में हमारे सामने आ जाती हैं, लेकिन एक अहम सवाल यह है कि क्या हर मालूमात दुरुस्त, मुस्तनद और काबिल एतमाद भी होती है। इसी तनाजुर में आज का हमारा जो मौजू है वो है मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी मसनूई ज़हानत के दौर में मीडिया और मालूमात से मुतल्लिक शऊर और आगही। इस अहम मौजू पर हमारे साथ बात करने के लिए हमने मदऊ किया है प्रोफेसर नईम शौकत को। आप पोस्ट ग्रेजुएट इन मीडिया स्टडीज़ हैं, बहैसियत असिस्टेंट प्रोफेसर के अपने फ़राइज अंजाम दे रहे हैं मीडिया एजुकेशन रिसर्च सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में। आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से PhD किया है। डॉक्टर साहब खैर मकदम आपका,
4: बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो अस्सलाम वालेकुम और आदाब।
3: वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। सबसे पहले आप मुख्तसरन अपना तारुफ दीजिए कि आप कहाँ से हैं, तालीम कहाँ पे हासिल की और इस वक्त कहाँ हैं।
4: मेरा नाम डॉक्टर नईम शौकत है, मैं बोनियार तहसील के एक छोटे से गांव भीमियार से हूँ। इब्तदाई तालीम मैंने अपने गांव में हासिल की, उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन मास कम्युनिकेशन में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला से 2010 साल में मुकम्मल करने के बाद मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन, और फिर उसके बाद मैंने MPhil प्रोग्राम ज्वाइन किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। लेकिन इसी दौर में एक दो साल का गैप लगा जिसमें मैंने इंडियन एक्सप्रेस में न्यू दिल्ली में एज सब एडिटर कुछ एक छोटा सा रोल काम किया। तो उसके बाद MPhil के बाद फौरन मैंने PhD ज्वाइन कर लिया, और PhD मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की। लेकिन PhD का दौर मेरा काफ़ी लंबा रहा, 6-7 साल का।
3: क्यों, इतना लंबा क्यों चला?
4: क्योंकि मैं मीडिया हिस्ट्री को स्टडी कर रहा था, मुझे आर्काइव्स जाना पड़ा, आर्काइव्स में बहुत टाइम सर्व करना पड़ा 1-2 साल
3: रियल सेंस में
4: जी, एग्जैक्टली प्राइमरी डेटा के लिए अखबारों को पढ़ना पड़ा। तो लेकिन उस दौरान मैंने 3 साल के बाद अपना रेजिडेंसी कंप्लीट करने के बाद मैंने कुछ वक्त के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया ज्वाइन किया, जहां मैं एज ए रिसर्च फेलो 7-8 महीने दिए। उसके बाद मैंने सेंट्रल

0: यूनिवर्सिटी एज असिस्टेंट प्रोफेसर कंट्रैक्चुअल, एक दो साल जाए अपने जॉब किया. तो रिसेंटली मेरा अपॉइंटमेंट मीडिया एजुकेशन रिसर्च सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में हुआ है, जहाँ पे मैं मुख्तलिफ कोर्स पढ़ाता हूँ, जिसमें मीडिया हिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है. उसके अलावा हाल ही में कश्मीर यूनिवर्सिटी और मीडिया एजुकेशन रिसर्च सेंटर ने मीडिया इंफॉर्मेशन लिटरेसी पे कुछ कोर्स स्टार्ट किए हैं. तो हालांकि मुख्तलिफ कोर्सेज हैं, आजकल ना AI का जो दौर है, इसमें बहुत मुश्किल है, चीज़ें इस तरह से इमर्ज हो रही हैं कि अभी कोई स्टॉप नहीं है हमें. तो इस हिसाब से हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं कि बेस्ट कोर्स मिले, ताकि हम बच्चों को इन्फॉर्म कर सकें, इन्फॉर्म सिटीजन्स बना सकें.
1: बिल्कुल सही है. और ये जो टॉपिक हमने इसीलिए चुना कि हमने सोचा कि आपसे बेहतर इस मौजू पर कोई और बोल नहीं सकता है. सबसे पहले हमारे सामीन को ये बताइए कि मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी से क्या मुराद है और आज के दौर में इसकी अहमियत क्यों बढ़ गई है.
0: एक्चुअली मीडिया और इंफॉर्मेशन लिटरेसी से पहले हमें इंफॉर्मेशन ओवरलोड को समझना बहुत जरूरी है. हर वक्त की अलग अलग प्रॉब्लम्स रही है. किसी वक्त में बहुत ज़्यादा फूड स्कैरसिटी रही है, कभी इंफॉर्मेशन स्कैरसिटी रही है. अगर आप ह्यूमंस की सिविलाइजेशन को पढ़ें, हिस्ट्री को पढ़ें, आप देखेंगे एक दौर था जब फूड की स्कैरसिटी थी, स्कैरसिटी ऑफ फूड थी, लोग फैट कंज्यूम करते थे क्या कि ताकि वो बहुत टाइम तक एनर्जेटिक रह सके, खुद को चला सके. तो एक वक्त आया जब मास प्रोडक्शन और मास कंजप्शन का जिसे दौर हम कहते हैं, जिसमें लोग अब डॉक्टर से पूछते हैं, डाइटिशियन से पूछते हैं कि हम क्या खाएं, क्योंकि वो चीज़ें इतनी प्रॉब्लम करती है. लाइक फैट आज के वक्त में कोई कंज्यूम नहीं करता, लेकिन एक वक्त में हमारी नीड थी, हम फैट कंज्यूम करते थे. अगर इसी मेटाफर को हम अप्लाई करें इंफॉर्मेशन पे, एक दौर था जब हमें इंफॉर्मेशन की स्कैसिटी थी. जैसे प्रिंटिंग प्रेस आया, प्रिंटिंग प्रेस के आने से पहले गटनबर्ग प्रेस जैसे हम कहते हैं 1450 में जर्मनी में डेवलप हुआ, उससे पहले बहुत कम लिटरेचर अवेलेबल था. कुछ साधन थे जिसके थ्रू लिटरेचर पब्लिश किया जाता था, रिप्रोड्यूस किया जाता था, और उतनी किताबें अवेलेबल नहीं थी, उतने साधन अवेलेबल नहीं थे लोग पढ़ सकें, इन्फॉर्म्ड रह सकें. प्रिंटिंग प्रेस के आने के कहा जाता है कुछ ही सालों में, कुछ ही डेकेड्स में इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गया. यानी इंफॉर्मेशन ओवरलोड का मतलब है इतनी किताबें थी जितने लोग नहीं थे या जितने पढ़ने वाले नहीं थे.
1: सही.
0: तो ये चीज़ें विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो हम टेलीग्राफ अगर हम देखें, पहली टेक्नोलॉजी थी मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में, फिर रेडियो आया, फिर टेलीविजन आया, सिनेमा आया, अखबार पब्लिश होने लगे, फिर सोशल मीडिया का दौर आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया. तो हमारे जो इंफॉर्मेशन के प्लेटफॉर्म्स हैं ये बहुत ज्यादा बढ़ गए. हमें इंफॉर्मेशन लेफ्ट राइट सेंटर से आने लगी. हमें ये एक वक्त ऐसा आया कि हमें ये नहीं पता था. एक वक्त था कि हम डिपेंडेंट थे कुछ अखबारों पे, जो क्रेडिबल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन थी हम वही कंज्यूम करते थे. तो एक वक्त आया कि हमें पता नहीं है हमारे मोबाइल फोन्स पे जो खबर आ रही है, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये सही है या नहीं है. अगर मेटाफोरिकली इसी चीज़ को मैं अप्लाई करूँ कि फैट खाने से आप बीमार हो जाओगे, वैसे ही बुरी इन्फॉर्मेशन, बैड इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करने से आप और भी बीमार हो सकते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रिटिकल इन दीज टाइम्स. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मीडिया एंड इन्फॉर्मेशन लिटरेसी इज एक्चुअली हाउ यू क्रिटिकली इवैल्यूएट दैट इन्फॉर्मेशन विच यू आर रिसीविंग बाय योर फोन्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज डेज.
1: और इसीलिए इस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ी, यानी इन्फॉर्मेशन लिटरेसी से हम यही मुराद लेंगे कि आज के दौर में ये ज़रूरी इस लिहाज से है कि आपको पता नहीं है कहाँ से कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल पे आ जाए और उसको आप शेयर करने बैठें या उस पर अमल करने बैठें, तो इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. और मसनूई ज़हानत ने मालूमात के हुसूल को किस तरह आसान बनाया है और इसके साथ कौन से नए चैलेंजेस पैदा हुए हैं.
0: देखिए, अगर आप देखें ना, जो जैसे मैसेज प्रोड्यूस होती थी, प्रोडक्शन, डिसेमिनेशन, रिसेप्शन, इसके तरीके पूरे बदल गए. अगर हम अपने समाज की बात करें, मैं ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में नहीं बात करूँगा, हमारे घर की, मतलब जो ट्रेडिशनल सेटिंग्स थी, हमारे घर में TV हुआ करता था. TV एक कल्चरल चीज़ थी, एक शेयर्ड कल्चर, जो पूरी फैमिली शाम को TV देखा करती थी. तो गेट कीपर वहां पे हुआ करते थे एज आर पेरेंट्स. हमारे पेरेंट्स डिसाइड करते थे कि हम कौन सा चैनल देखें,
1: कौन सा चैनल, ठीक
0: है. तो ऑटोमेटिकली ऑन द बेस ऑफ देयर ओन एक्सपीरियंसेस, है ना, तो वो हमें गाइड करते थे कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करनी है, क्या नहीं करनी है. और टीवी में भी कॉन्टेंट कंप्लीटली हमारे पेरेंट्स जो है रेगुलेट करते थे. तो

गेटकीपर्स एट दैट पॉइंट इन टाइम। आज के वक्त में जिसे हम हाइपर इंडिविजुअलाइजेशन का दौर कहते हैं, हाइपर इंडिविजुअलाइजेशन का मतलब है हम इतने इंडिविजुअलाइज्ड हो चुके हैं, इतने आइसोलेटेड हो चुके हैं, हमारे हाथ में मोबाइल फोन है, हमारे पास कंटेंट आ रहा है, इवन हम वो कंटेंट अपने नियर्स और डियर्स के साथ भी नहीं शेयर करें। मेरा अपना कंटेंट है, मेरा अपना एल्गोरिथम बायस है ना, उसके हिसाब से मुझे कंटेंट मिल रहा है, आपका अपना कंटेंट है, आपका अपना एक लिस्ट है जिसके हिसाब से आपको कंटेंट जो कंज्यूम कर रहे हैं आप, है ना। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो जो प्लेटफॉर्म्स मल्टीप्लीकेशन है, इसकी वजह से इंफॉर्मेशन जो है हर तरफ से आ रही है, और हमारे इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने का तरीका

0: एकदम बायस है ना, उसके हिसाब से मुझे कंटेंट मिल रहा है। आपका अपना कंटेंट है, आपका अपना एक लिस्ट है जिसके हिसाब से आपको कंटेंट जो कंज्यूम कर रहे हैं आप, है ना। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो जो प्लेटफॉर्म्स मल्टीप्लिकेशन है, इसकी वजह से इंफॉर्मेशन जो है हर तरफ से आ रही है, और हमारे इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने का तरीका भी बदल गया, हमारे इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का तरीका भी बदल गया, डिसमिनेशन का भी तरीका बदल गया। तो इसमें मैं नहीं कह सकता कोई सेंटर है, है ना, मतलब हालांकि कुछ प्लेटफॉर्म्स मल्टीपल कुछ ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को यूज करती है इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन करने के लिए, लेकिन कोई सेंटर नहीं है। इंफॉर्मेशन कोई भी प्रोड्यूस कर सकता है। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मीडिया हो गया। पहले अगर मुझे कोई आर्टिकल या कोई ओपिनियन अखबार में पब्लिश करानी होती थी तो मुझे एडिटर को भेजनी पड़ती थी ताकि वो लोगों तक पहुंचे, लेकिन अब मैं ब्लॉग के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, AI के थ्रू वो चीजें खुद प्रोड्यूस कर सकता हूं और बहुत दूर ग्लोबल जिसका रीच होगा उनको डिसमिनेट कर सकता हूं।
1: मेरा सवाल ये था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने मालूमात के हुसूल को, यानी गैदर करने को, मालूमात को अपने तक पहुंचाने को किस तरह से आसान बनाया है और चैलेंजेस क्या दरपेश?
0: देखिए बात वही है ना कि AI का जो बैकएंड पे जो मैकेनिज्म है उसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता, और लेकिन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये आपको समराइज करके देता है इंफॉर्मेशन। मतलब इंफॉर्मेशन इज जस्ट ए क्लिक अवे फ्रॉम यू व्हेन इट कम्स टू AI, नॉट अनलाइक जो हमारे पुराना नया मतलब पहला वाला दौर था जहाँ पे अखबार के थ्रू है ना कोई पर्टिकुलर टेंजिबल चीज के थ्रू आप जो इंफॉर्मेशन रिसीव करते थे। आज के वक्त में आप क्लिक करेंगे और आपको सारी समरी मिल जाएगी इंफॉर्मेशन, इवन समराइज समरी में भी आपको बुलेट पॉइंट्स,
1: ठीक है, वो तो आपके पास टाइम नहीं है जी। लेकिन चैलेंजेस क्या दरपेश?
0: चैलेंजेस के साथ यही है ना कि आपको आपको नहीं पता सोर्स क्या है, आप इसको वेरीफाई नहीं कर सकते। जैसे पहले आपके पास अखबार आता था, अखबार में राइटर का नाम लिखा होता था, एडिटर का पता होता था, किसने इंफॉर्मेशन दी है, जैसे पुलिस के कोई ऑफिसर है उनका अगर कोर्ट है उनकी तरफ से इंफॉर्मेशन आई तो हमें पता था कि फलाने साहब की इंफॉर्मेशन।
1: एक मिसाल मैं आपको दूंगा, मैं दिल्ली में था तो हम एक कमरे में ठहरे थे, एक बुजुर्ग मेरे साथ कमरे में थे, वो भी कश्मीर से बिलोंग करते हैं, तो वो मुझे कहने लगे कश्मीर के बारे में एक न्यूज है कशीर मजस गोयत का। मेरे लिए वो अचंबा था, मैंने उसे कहा तो एक कम उन्ना दुबर विनियज आ वीडियो वीडियो आओ न्यूज आई व्यूज आई मोबाइल पर तुम वो मैं ठीक छु, मगर मैंने कर भरोसा अत कचप कह तो चूंकि वनकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वक्त पता नहीं किस न्यूज रीडर को कौन सी आवाज़ दे करके इन्होंने पेश किया है, जबकि वो न्यूज़ बिल्कुल टोटल सही है गलत थी। तो ऐसे चैलेंजेस दरपेश हैं। तो नईम शौकत साहब, इस ये टॉपिक से इशू बड़ा दिलचस्प, मैं तो आकत मूसीकी से वह बोझन कलाम थोमुत तुंद बापत मे पूर उमेद जे ये कलाम खच तारि पसंद ती तु सपो महजूस दे गुजार अहमद गनई सी गवान वलि बोजान।

0: यहाँ पे फोन है, मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ टीवी में, या कॉमन रूम में मैं नहीं जाऊँगा टेलीविजन देखने, या मेरे पेरेंट्स वोंट फोर्स मी टू कम टू द कॉमन रूम टू वॉच अ पर्टिकुलर प्रोग्राम, जो पुराने जो ट्रेडिशनल स्पेशल आज मेरे हाथ में फोन है, जिस तरह का कॉन्टेंट आ रहा है, ऊपर से अगर फॉर एग्जाम्पल मैं नेगेटिव न्यूज कंज्यूम करता हूँ, जिसे हम नेगेटिव बायस कहते हैं, तो आई वुड बी रिसीविंग मोर नेगेटिव न्यूज, नेगेटिविटी कंपेल्स नेगेटिविटी, जैसे हम डूम स्क्रोलिंग कहते हैं,
1: इसको आप एक वीडियो को लाइक कीजिए आपको वैसे ही वीडियो,
0: एग्जैक्टली वो एल्गोरिथम बायस भी उसको कहा जाता है।
1: मुझे एक बात बताइए, कुछ कंट्रीज ने एक खास उम्र तक के बच्चों के लिए बैन किया है वीडियोस देखना और मोबाइल चलाना।
0: मुझे नहीं लगता है, लार्जली ये ठीक है फॉर टाइम बीइंग इट्स फाइन, लेकिन एक वक्त आएगा शायद चीज़ें बदल जाएंगी, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप, आप 16 साल के बच्चे तक बैन कर रहे हो, लेकिन उनके हाथ में उनके पेरेंट्स, क्योंकि आज का करिकुलम जो ऐसे डेवलप हो रहा है, यू आर फोर्स टू हैव योर मोबाइल फोन एंड स्मार्टफोन्स। जैसे आपने देखा कोविड पीरियड में हमने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेज ली है ना, छोटे छोटे बच्चों की, तो उनको असाइनमेंट्स, जैसे अगर आप ट्रेडिशनल जो है जो है ना टीचिंग देखे, तो पहले बच्चा जाता था उसको वहाँ होमवर्क मिलता था, होमवर्क करता था, आज आपको व्हाट्सएप के थ्रू असाइनमेंट मिल रहा है, तो दैट वे जो बच्चे हैं वो डिपेंडेंट हैं टेक्नोलॉजी पे, आप उनको कम्प्लीटली टेक्नोलॉजी से दूर नहीं कर सकते। इसमें हमें लार्जली यही जो है मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी, पर्टिकुलर जो यूनेस्को का फ्रेमवर्क है, इसके हिसाब से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हमें इंक्लूसिव पॉलिसी बनानी है, जहाँ पे हम इन बच्चों को भी इस तरह का मीडिया कॉन्टेंट ना, रेगुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वे, इस तरह का मीडिया कॉन्टेंट वो कंज्यूम करें जो उनके लिए अच्छा हो। हालांकि बहुत सारा आपको जैसे इसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में खराबियाँ हैं, अच्छी अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन हम उनको महरूम नहीं कर सकते कि इसकी खराबियाँ हैं तो इस वजह से हम आपको महरूम करेंगे, हम आपको इनका एक्सेस ही नहीं देंगे, दैट इज़ अ प्रॉब्लम।
1: मेशू बासान आख जान तादाद चुसाने स्टूडेंट हो दिन बेहतर आए अथ मोबाइल फोन से इस्तेमाल करान तो क्या चला है।
0: एग्जैक्टली लाइक तुम जो करा यूट्यूब यूज, लाइक फॉर एग्जांपल इन आर टाइम्स आई एम बिट ओल्ड फ्रॉम बिट ओल्ड स्कूल, तो वी वर डिपेंडेंट लाइब्रेरीज, देयर वर वेरी फ्यू बुक्स ऑन जर्नलिज्म है ना, जो हम पढ़ते थे एग्जाम के टाइम पे, तो और भी प्रॉब्लम होती है। यूट्यूब पे यू हैव वीडियोज अवेलेबल फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट और समथिंग एल्स, यू नीड नॉट टू गो फिजिकली देयर, तो आप घर बैठे आराम से
1: पन इंफॉर्मेशन गैदर करने खातिर छ तिम मोबाइल इस्तेमाल
0: कर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तुम छ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वे।
1: तो बेटी बुजवाक बथनाक मे छ पूर्व में दी बहुत ही तो पसंद, ये शो गुलाम हसन सुब से बनी आवाज़।

आप प्रोग्राम समाप्त कर रहे हैं पयाम सुबह आकाशवाणी श्रीनगर से। मैं हूं आपका मेजबान, आपका होस्ट, आपका दोस्त रशीद निजामी। इस वक्त हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर नईम शौकत साहब के साथ, और हमारा जो मौजू है आज का, हमारा मौजू बड़ा दिलचस्प मौजू है, मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्रोफेसर साहब, हम अभी भी बात कर रहे थे कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि आम जो नाखंदा इंसान है उसको भी इंफॉर्मेशन लिटरेसी के हवाले से आगाह किया जाए, उसमें शऊर बेदार किया जाए।

0: पैदा किया जाए। तो आपने कुछ कंट्रीज़ की मिसाल दी कि वहाँ पर उन्होंने बेड़ा उठाया है। जब हम अपने मुल्क की बात करते हैं, हम विकसित भारत बैनर के तले बहुत सारा काम करते हैं, क्या ऐसा काम विकसित भारत के अंडर नहीं हो सकता?
1: जी बिल्कुल हो सकता है। इवन विकसित भारत जो है का जो डॉक्यूमेंट है, जो पॉलिसी है, इसमें तो मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी पे काफ़ी जोर है। हालांकि एक्सप्लिसिटली मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी मेंशन नहीं है, लेकिन इसमें डिजिटल लिटरेसी के बारे में बहुत है। इसमें आप देखेंगे जैसे क्रिटिकल थिंकिंग की बात हो रही है, जैसे हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसमें आपका जोर जो है वो आप प्रमोट कर रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग को, इंक्वायरी लर्निंग को, कम्युनिकेशन को, एथिकल रीजनिंग को, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। इसके अलावा आप एम्फेसाइज कर रहे हैं कि डिजिटल एक्सेस हो, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, डिजिटल सिटीजन दिया जाए, स्किल्स दिए जाए सिटीजन्स को, और पार्टिसिपेशन हो सिटीजन का, जो आम लोगों के बारे में आप बात कर रहे हैं। इसके अलावा लाइफ लॉन्ग लर्निंग लिटरेसी पर जोर दिया गया है इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में। तो इस बैनर के अंडर बहुत स्कोप है कि पर्टिकुलरली आप जैसे लेटर्स की हम बात कर रहे हैं, उसका तो कवर हो गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, लेकिन जो आम लोग हैं, जो आप कह रहे हैं इलिटरेट लोग हैं, उनको भी इस बैनर के अंडर काफ़ी हद तक ना क्रिटिकली इवेल्युएट करने का जो है कॉम्पिटेंसीज वो दी जा सकती है।
0: देखिए, जब हम वीडियोज़ की बात करें या किसी भी इंफॉर्मेशन की बात करें, एक नौजवान उसमें क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। अगर उसमें क्रिटिकल थिंकिंग है तो उसी क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से वो नकार सकता है किसी इंफॉर्मेशन को। अब तालीमी इदारे स्टूडेंट्स में तनकीदी सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करने के लिए क्या किरदार अदा कर सकते हैं?
1: जी, क्रिटिकल थिंकिंग इज़ अ प्रोसेस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए है। हम देखिए, एक होता है नॉलेज देना। हमारे पुराना जो टाइम था, जो हमारा टीचिंग मेथड था, उसमें हमारा फोकस यूजुअली होता था रॉट लर्निंग पे, या जिसे हम कहते हैं रिमेंबर, कि आप पढ़ा रहे हैं और बच्चे को
0: याद कर रहे हैं,
1: फिर वही एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, जब हम यूनेस्को के फ्रेमवर्क के बारे में अगर बात करें, तो वो भी ये चीज़ बार बार कह रहे हैं कि नॉलेज सफिशिएंट नहीं है, आप इसको अप्लाई कैसे करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ना उसके बाद अगर हम लेयर देखें, जैसे आपने शायद सुना भी हो जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है ना, जो MIL टास्क के लिए यूज़ की जा रही है आजकल, उसमें रिमेंबर को सबसे कम प्रेफरेंस दी जाती है। इवन जो फोकस है वो अंडरस्टैंडिंग पे रहता है, कि आप कैसे अंडरस्टैंड करें, आप कैसे अपने स्किल्स को यूज़ करके एक इंफॉर्मेशन या एक पर्टिकुलर जो न्यूज़ है उसको अंडरस्टैंड करें। उसके अलावा फिर उन स्किल्स को समझें, जो आप ना क्रिटिकल एनालिसिस आप करें, उन स्किल्स को समझें और उन स्किल्स को अप्लाई करें। जब फॉर एग्जांपल, इट्स नॉट ओनली अबाउट ना रिमेंबरिंग देम, इट्स ओनली ऑन द बेस ऑफ डेली जो आपका एक्सपीरियंस है। जैसे हम दिन में 8 घंटे मोबाइल फ़ोन चलाते हैं और 8 घंटे हम कॉन्टेंट के साथ डील करते हैं, तो जब भी मैं 8 घंटे कॉन्टेंट के साथ डील करता हूं, तो मुझे हमेशा ये याद रहना चाहिए कि मुझे कंटेंट को अंडरस्टैंड करना है, सिर्फ याद नहीं रखना है, अंडरस्टैंड करना है, फिर इन स्किल्स को, जो कॉम्पिटेंसीज मैंने डेवलप किए हैं, उनको अप्लाई करना है, फिर उसको एनालाइज भी करना है कंटेंट को। इट्स नॉट ओनली अबाउट अप्लाइंग, इसको एनालाइज करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दो अखबार उठाइए, दो अखबारों की दो अलग अलग एक ही तरह की खबर दो अखबारों में, जैसे आजकल यूजुअली होता है, एक कोई एक इवेंट होगा, दो अखबार उसको पब्लिश करेंगे, तो आप उनकी एनालिसिस कर सकते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस समझ सकते हैं कि एक अखबार में किस तरह का स्लांट है और एक ने किस तरह की फ्रेमिंग की हुई है। वो इट कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि अखबार कैसे एक पोजीशन ले सकता है, क्योंकि हर अखबार की ना पोजीशनैलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल आप देखेंगे वेस्टर्न मीडिया भी पोजीशनैलिटी की बात कर रहे हैं, तो उस पोजीशनैलिटी को समझने के लिए आपको इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को क्रिटिकली एनालाइज करना है और इवैल्यूएट करना है। असेसमेंट और इवैल्यूएशन में बहुत फ़र्क है। हम इवैल्यूएट करते हैं एट द एंड ऑफ द कोर्स, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे जो ट्रेडिशनल एग्जाम्स स्कीम है, उसमें हम बच्चों को पढ़ाते हैं, 6 महीने के बाद एग्ज़ाम लेते हैं और उनको स्कोर देते हैं। असेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क्स तो देना जो एवेल्युएशन एट द एंड ऑफ द कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट कंटिन्यूअस असेसमेंट इंपॉर्टेंट है कि इनको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, कि ये असेस कर पा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप उनको कुछ स्किल्स दे रहे हैं डिजिटल स्किल्स, तो वो स्किल्स उनको अप्लाई करके दिखाने हैं। जैसे मैं आपको डिजिटल कंपटेंसीज के बारे में अभी कह रहा था कि आपने किसी दो अखबारों की खबर को कंपेयर किया, तो आप कंटिन्यूअसली बच्चों से एसेस करवा सकते हैं। और फिर जब कंटेंट आप क्रिएट करते हैं या शेयर करते हैं, ठीक है, तो उसमें ये स्किल्स आप यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू लर्न दीज स्किल्स, है ना। आप एनालिसिस समझते हैं, आप अंडरस्टैंडिंग समझते हैं, आप उसको पूरी तरह से जो है इवेल्युएट

0: हैं, फिर क्रिएट करते हैं, फिर शेयर करते हैं या रिपब्लिश करते हैं।
1: अब यहाँ पर शेयर करने पर मुझे एक बात याद आ रही है, सोशल मीडिया पर किसी खबर या वीडियो को शेयर करने से पहले किन बुनियादी बातों का ख्याल रखना चाहिए?
0: आपको सबसे इम्पॉर्टेंट देखना चाहिए सोर्स, आपको क्रॉस चेक करना चाहिए। मुझे देखिए, हमारा लेगेसी मीडिया है, अगर फॉर एग्जांपल कोई न्यूज़ सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है या कहीं से आ रही है, तो आप उसकी रिलायबिलिटी चेक करने के लिए पहले लेगेसी मीडिया में जाएंगे। आप देखेंगे जो ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ बहुत सारे अखबार निकलते हैं, नेशनल लेवल के अखबार निकलते हैं, इंटरनेशनल, अगर ये लोकल न्यूज़ है तो एक्सपेक्ट किया जाएगा, अगर बहुत बड़ी खबर है या बहुत जो एक्सपेक्ट किया जाएगा कि इसको लेगेसी मीडिया ने या जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने कवर किया होगा, तो आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा वेरिफिकेशन एंड रीवेरिफिकेशन, जब हम क्लास में ऑब्जेक्टिविटी पढ़ाते हैं, ऑब्जेक्टिविटी क्या है? इट्स नथिंग, इट्स अ प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन एंड रीवेरिफिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई क्लेम किया, ठीक है, मैं उठा, मैंने अखबार में ऐसे ही लिख दिया, ठीक है, तो हो सकता है मेरे खिलाफ कोई केस डिफेमेशन फाइल हो जाए, लेकिन जब मैं इंफॉर्मेशन को वेरीफाई और रीवेरीफाई कर रहा हूँ, मैं काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी उसमें ला रहा हूँ, किसी का कोई क्लेम है काउंटर क्लेम भी ला रहा हूँ, मैं सोर्सेस को वेरीफाई कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आपने कोई बात मुझसे कह दी, तो मेरा फर्ज है एज ए जर्नलिस्ट उसको रीवेरीफाई करना फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। तो जब आप एज ए रीडर उस कॉन्टेंट को पढ़ते हैं या देखते हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कॉन्टेंट की सोर्सेज को चेक करें कि ये कहाँ से आ रहा है इन्फॉर्मेशन। तो
1: बिल्कुल सही। अच्छा, अब AI से मुतालिक एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि क्या AI यानी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर में असातिज़ा और सहाफ़ियों का मुतबादिल बन सकती है, या ये सिर्फ हम एक मुआविन टेक्नोलॉजी के तौर यानी टूल के तौर इस्तेमाल कर सकते हैं?
0: देखिए, मैं AI को साइंटिफिक टूल नहीं मानता हूँ, मैं इसको साइंस का कॉन्सेप्ट भी नहीं मानता हूँ।
1: फिर क्या मानते हैं?
0: बिकॉज इट्स अमर्जिंग, यू डोंट नो, इट्स अनप्रेसिडेंटेड। मेरे हिसाब से ये कल्चरल टूल है, एक पर्टिकुलर कल्चर में है और उस कल्चर के में चेंज ला रहा है। जैसे हम पहले आपका, आप जर्नलिस्ट
1: टूल तो मानते हैं ना,
0: टूल है लेकिन साइंटिफिक टूल नहीं मैं मानता,
1: साइंटिफिक टूल नहीं मानता,
0: नहीं मैं इसको साइंटिफिक कॉन्सेप्ट,
1: साइंटिफिक टूल क्यों नहीं मानते हैं? अभी आप कोई भी बात कीजिए, कोई भी प्रोजेक्ट बनाइए, तो उसमें भी साइंस ही है ना।
0: नहीं, लेकिन इस क्लियर डेफिनेशन नहीं है, आप मुझे AI की क्लियर डेफिनेशन नहीं बता सकते, आप मुझे इसके बैक एंड पे जो चीजें चल रही है वो नहीं बता सकते, आप मुझे इसका फ्यूचर नहीं बता सकते, आप मुझे ये नहीं बता सकते ये कॉन्टेंट कैसे ला रहा है, कैसे दे रहा है, ये कैसे एल्गोरिथम बायस जैसे जो बन रहे हैं, या एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन कैसे आ रहा है, स्लांट कैसे आ रहा है इन्फॉर्मेशन, इन चीजों के बेस पे अगर आप देखेंगे तो ये कोई साइंटिफिक कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है मेरे हिसाब से। तो मैं इसको एक कल्चरल टूल मान रहा हूं, जो हमारे पर्टिकुलर प्रेवेलिंग कल्चर को इन्फ्लुएंस कर रहा
1: है। आप इसे कल्चरल टूल मानते हैं, साइंटिफिक टूल नहीं मानते हैं?
0: जी।
1: तो प्रोफेसर साहब, मुझे एक बात बताइए, बसे थे प्रोफेसर मीडिया प्रोफेसर स्पेशली, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या समझते हैं कि AI का फ्यूचर क्या है?
0: AI का फ्यूचर प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। मैंने तभी आपसे कहा ना कि अगर ये इसका फ्यूचर पता होता तो ये साइंटिफिक कॉन्सेप्ट बन जाता। मेरे हिसाब से ये साइंटिफिक कॉन्सेप्ट नहीं बन पाएगा, यू नेवर नो। बहुत लोग कहते हैं कि इसका फॉल होगा, बहुत लोग कहते हैं कि इट विल कैप्चर ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर देगा, बहुत लोग कह रहे हैं कि ह्यूमंस को इरेलीवेंट बनाएगा, यूजलेस बनाएगा। अगर आप देखेंगे हिस्ट्री से भी, अगर आप एग्जाम्पल्स उठाएंगे तो आप देखेंगे कुछ एरियाज में इसने ह्यूमंस को इरेलीवेंट बना दिया है। जैसे एक छोटी सी एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, पता नहीं आप सहमत रहेंगे मेरी इस एग्जाम्पल से या नहीं। एक ATM मशीन है, ATM मशीन को पता नहीं आप AI टूल माने या ना माने, ATM मशीन एटलीस्ट 4-5 लोगों को इरेलीवेंट बना रही है। अगर ATM मशीन नहीं होती तो वहां 5 कैशर्स आपको चाहिए जो कैश देंगे। अब ये चीज जो है रेप्लीकेट हो रही है। अब नाउ दे आर इनटू समथिंग विच इज ह्यूमंस कोर कॉम्पिटेंसी, विच इज राइटिंग।
1: मैंने यही सवाल आपसे पूछा था, क्या हमारे जर्नलिस्ट की जगह अब AI ही लेगा? आप देख लीजिए, मैंने कुछ न्यूज़ देखी है जो कोई बंदा नहीं है, AI है, न्यूज़ हमें दे रहा है, आवाज़ है, शक्ल है, लेकिन वो कोई पर्टिकुलर इंसान नहीं है।
0: सर, अगर ये मशीन होती और इसके पीछे एक मशीन होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मशीन है लेकिन इसके पीछे इंसान है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हर एक इंसान के अपना एक बायस है, ठीक है, और उसके कुछ गोल्स हो सकते हैं, तो वो प्रॉब्लम है। लार्जली अगर आप देखेंगे, प्लूरैलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट सोसाइटी में। मतलब सोसाइटी में कहते हैं हम, टू एग्जिस्ट यू हैव टू को एग्जिस्टेंस मींस को एग्जिस्टेंस। लेकिन द वे प्लूरैलिटी इज एंडिंग, इट्स अफेक्टिंग प्लूरैलिटी ऑफ द आइडियाज, प्लूरैलिटी ऑफ द थॉट्स, है ना, तो वो इट्स वेरी प्रॉब्लमैटिक दैट वे।
1: आपने कहा था कि एटीएम में, अगर एटीएम मशीन

0: नहीं होती। आप कहते हैं कि आप उसको एक एआई टूल मानते हैं, वहां पर 5 आदमी काम करते होते। इसी तरह से जो हमारा फ्यूचर, मुझे लगता है कि अब प्रेजेंटर्स की कम जरूरत होगी, जर्नलिस्ट्स की कम जरूरत होगी, एआई हमारी कम, जो हमारी जो वो ना एक पोजीशन होती है ना, वो एआई लेने वाला है। और अब एक दिलचस्प सवाल, एक कहते हैं ना कि बुनियादी सतह का एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि वालिदैन अपने बच्चों को इंटरनेट और एआई के मस्बत और महफूज इस्तेमाल की आदत कैसे डाल सकते हैं?
1: एक्चुअली वही है सारा, वही जो हम डिस्कस कर रहे हैं। जब तक आपकी यूनिवर्सिटीज़ कोई इनिशिएटिव नहीं लेते, जब तक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती, इट्स वेरी डिफिकल्ट। बिकॉज पेरेंट्स को स्किलफुल होना पड़ेगा, पेरेंट्स को खुद पहले ये डिजिटल कॉम्पिटेंसीज डेवलप करनी पड़ेंगी। तो ये इट्स मतलब इंटरकनेक्टेड। पेरेंट्स अगर डिजिटली कॉम्पिटेंट बन जाए, कॉम्पिटेंसी उनमें डेवलप हो, तो बच्चों में भी हो सकती है, टीचर्स में भी हो सकती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि खाली करिकुलम इंट्रोड्यूस करने से नहीं होगा। मैंने जैसे आपको कहा MIL सिटी की एग्जाम्पल दी, जहाँ पर आप लोकल गवर्नमेंट जो को इंक्लूड कर रहे हैं, आप लोकल गवर्नेंस जो स्मॉल लेवल की है ना, जो इनिशिएटिव्स आप ले रहे हैं एट लोकल बेसिस, तो वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लोकलाइजेशन इसका करें, है ना, तो वहाँ से हर गांव में या हर शहर में या हर कस्बे में ऐसे इनिशिएटिव स्टार्ट करें जहाँ हम लोगों को डिजिटली लिटरेट करना शुरू कर दें, या मैं कहूँगा एम्पावर करें हम उनको, सिटीजन को, टू नेविगेट दिस इवॉल्विंग डिजिटल इकोसिस्टम जो है, विच इज़ अनप्रेसिडेंटेड। तो उस चीज़ से यू कैन ब्रिंग चेंज एट लार्ज। जब आप लोगों को, सिटीजन्स को एम्पावर करेंगे, उनको इन्फॉर्म्ड बनाएंगे, तो आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर एक खत्ते में जो है असर डाल सकते हैं। दैट वे ना यू विल हैव इन्फ्लुएंस इन अक्रॉस।
0: पेरेंट्स पहले खुद आगाह हो जाएं, तब वो अपने बच्चों को भी आगाह।
1: एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए आजकल हर एक पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा अच्छे से परफॉर्म करे, तो वो उसको सारे साधन ला के देगा। बहुत सारे पेरेंट्स को एआई की के बारे में पता नहीं है, एआई के जो जब हम सोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं, एआई की जो डेटा के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो अगर वो अवेयर हो जाएंगे कि एआई के डेटा या सोर्सेज में प्रॉब्लम हो सकती है, या एक तरह का कंटेंट, एक तरह का स्लांट हो सकता है, जब तक उनको पता नहीं होगा, वो अपने बच्चों में नहीं ये वाला ये कॉम्पिटेंसी नहीं दे सकते। दे कांट गिव देम दिस स्किल्स टू अंडरस्टैंड दिस।
0: आज के दौर में कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसको इंफॉर्मेशन लिटरेसी के बारे में पता ना हो या उसको अवेयर ना होना चाहिए। सबको अवेयर होना चाहिए। आप देखिए, मैं आपको एक मिसाल दूंगा। जब डिजिटल मोबाइल आ गए हमारे हाथ में, तो एक शख्स था, वो अनपढ़ था, उस वक्त उसके हाथ में वो कीपैड वाला फ़ोन था,
1: फीचर्ड फोन।
0: उसके बाद वो बटन वाला फ़ोन जिसे कहते हैं, 4-5 साल मैं उनसे मिला नहीं, 6 साल के बाद मुलाकात हुई तो उनके पास स्मार्टफोन है। मैंने उनसे कहा कि क्या आप स्मार्टफोन चलाते हैं? तो हाँ, सारी फीचर्स चलाता हूँ, व्हाट्सएप, फेसबुक, बाकी चीज़ें। तो दैट मीन्स उसने एक ट्रेनिंग हासिल की है ना। तो इसी तरह से मुझे लगता है कि आज के माशरे में कोई फ़र्द ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको इस चीज़ का इल्म नहीं होना चाहिए।
1: सर वही है ना, नॉलेज है। मैं आपसे वही तो कह रहा था। अब यूनेस्को का फ्रेमवर्क देखिए, उसमें नॉलेज पे बहुत स्ट्रेस है कि नॉलेज तो सबको है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, डिस इन्फॉर्मेशन क्या होता है, गलत इन्फॉर्मेशन क्या है, सही क्या है, कैसे फ़ोन चलाना है, लेकिन उनके पास स्किल नहीं है उसको क्रिटिकली एनालाइज करने का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, क्योंकि बहुत सारी वेस्टर्न सोसाइटीज़ जो हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट ना डिक्लेयरिंग मीडिया इंफॉर्मेशन लिटरेसी एज ए पब्लिक गुड,
0: ओके,
1: ठीक है, एंड ए कॉम्पिटेंसी। इन दैट केस एवरीबडी हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू हैव टू बी एथिकली करेक्ट। इट्स नॉट ओनली अबाउट शेयरिंग, यू ऑल्सो अंडरस्टैंड, यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड द सोशल वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारी सोसाइटी है, हमारे कॉन्टेक्स्ट होते हैं, हर चीज कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से रेलिवेंट रहती है। मैं एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट की चीज को दूसरे कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंट कर रहा हूँ, वो भी गलत होगा। बिकॉज एक पर्टिकुलर सोसाइटी के एक पर्टिकुलर वैल्यूज होते हैं, मुझे वैल्यूज समझना है और अकॉर्डिंगली जो है ये स्किल्स यूज करने हैं टू क्रिटिकली एनालाइज इंफॉर्मेशन।
0: जी जी जी जी, बिल्कुल सही है। अब हम एक और नगमा सुनेंगे, उसके बाद आपके साथ और बात करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये नगमा भी आप पसंद फरमाएंगे।

0: एक मासूम सा चेहरा, और सही में एक मासूम सा चेहरा बिल्कुल मेरे सामने बैठे हैं। आप हैं प्रोफेसर नईम शौकत, पोस्ट डॉक्टरेट इन मीडिया स्टडीज़, इस वक्त असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मीडिया एजुकेशन रिसर्च सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में। और आज हम बड़े दिलचस्प मौजू पर बात कर रहे हैं, और हमारा जो ये मौजू है ये बड़ा दिलचस्प है कि मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी इन द एज ऑफ AI। प्रोफेसर साहब, क्योंकि हम अब आखिरी पायदान पर पहुँचे हैं आज के प्रोग्राम के, आज के इस डिस्कशन के, सरकारी तौर पर क्या काम होना चाहिए एक आम आदमी को, एक अनपढ़ को, ताकि वो इंफॉर्मेशन लिटरेट बन जाए, और आम लोग इसमें क्या मदद कर सकते हैं?
1: जैसे मैं अभी कह रहा था आपको यूनेस्को के फ्रेमवर्क के बारे में, उसमें बहुत ज़्यादा फोकस है। इट्स ए टू टीयर सिस्टम, जिसमें पहला इम्पोर्टेंस जो है वो सरकार के रोल को दिया गया है, जहाँ पे दे आर टॉकिंग अबाउट द पॉलिसी रेगुलेशन, है ना, रेगुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, टीचर एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, वो करिकुलम के बारे में बात कर रहे हैं, स्कूल लाइब्रेरीज पे फोकस है उनका, लर्निंग रिसोर्सेज पे फोकस है उनका। जैसे मैं आपको आसान भाषा में एग्जांपल दूं कि हम अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव

0: और सारे स्कूल्स में मीडिया और इंफॉर्मेशन लिटरेसी का जो कोर्स है, करिकुलम है, वो इंट्रोड्यूस करें होल सिस्टम, नॉट ना ये क्रॉस करिकुलर, नॉट एज स्टैंड अलोन कोर्स. तो उससे आपका बच्चा ही इन्फॉर्म्ड होगा. एक बच्चा अगर स्कूल से इन्फॉर्म्ड होके जा रहा है, वो अपने पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म करेगा, बिकॉज पेरेंट्स के पास डिजिटल कॉम्पिटेंसीज उतनी नहीं है. आजकल जैसे हम बात कर रहे थे कि अक्सर बच्चे वालिद साहब को या अपनी माँ को फ़ोन चलाना सिखाते हैं, या बहुत सारी जो डिजिटल टास्क है उसमें हेल्प करते हैं. तो जब बच्चा इन्फॉर्म्ड होगा तो पेरेंट्स भी.
1: अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या सरकार ये इनिशिएटिव नहीं ले सकती कि कौन कौन कौन कौन सा मटेरियल आपके लिए सही है, कौन कौन सा रास्ता आपके लिए सही है, किस किस कौन कौन से सोर्सेस सही हैं?
0: सर, हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं, जमहूरियत में रहते हैं. आर्टिकल 19 जो है आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन देता है.
1: हम कदम नहीं लगा सकते,
0: किसी को ये रोक नहीं सकते. इट्स अ फंडामेंटल राइट. मैं आपको किसी को नहीं ये कह सकता कि ये किताब पढ़ो ये मत पढ़ो. तो सरकार का वो रोल नहीं आएगा. सरकार का ये रोल आएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, वो पॉलिसी रेगुलेशन है ना, स्कूल्स में जो इनिशिएटिव है वो लेंगे.
1: एनजीओस क्या कर सकते हैं?
0: सर, एनजीओस का रोल हम यूजुअली एड ऑन माना जाता है. हम अक्सर स्टार्ट में ही मैंने आपसे कहा था कि इस तरह का रोल हम एनजीओस को ही देते हैं एज एन एड ऑन, और समझते हैं कि उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. लेकिन खाली एनजीओस, जैसे मैंने आपसे कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स पास्ट में मीडिया इंफॉर्मेशन लिटरेसी पे लिए हैं, वर्कशॉप्स कराई हैं, जैसे डेटा लीड्स है या फैक्टशाला है, दे यूजुअली दे फ्रीक्वेंटली कम टू कश्मीर यूनिवर्सिटी. इवन इन कोलैबोरेशन विद डेटा लीड्स, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर मीडिया एजुकेशन रिसर्च सेंटर रिसेंटली डिड ए प्रोग्राम ट्रेनिंग ऑफ 50 टीचर्स विद कोलैबोरेशन ऑफ SERET जम्मू एंड कश्मीर. तो वो तो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, लेकिन लार्ज लेवल पे जो ना दो टेयर है, इसमें एक टेयर वन जो है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू इंक्लूड करिकुलम, यू हैव टू इंडक्ट दीज कोर्सेज इन स्कूल्स.
1: एक जुमले में आपका जवाब चाहूंगा आखिर पर, क्या है आपके विचार एक नौजवान के लिए आज के दौर में?
0: मैं लोगों से यही कहूंगा, जैसे आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, अगर अल्लाह ना करे आपको लगे कि मैं बीमार हो गया या कोई प्रॉब्लम होगी, तो आप इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं ताकि बड़ी प्रॉब्लम ना हो कोई. इस तरह से यही चीज़ मैं आपको कहूंगा कि आप इंफॉर्मेशन के साथ भी यही कीजिए. जब भी आपको कोई इंफॉर्मेशन सामने आए तो आप उसको क्रिटिकली एनालाइज कीजिए, उसको आप अच्छे से समझिए, इवैल्यूएट कीजिए, फिर शेयर कीजिए या फिर कंज्यूम कीजिए, फिर वो अपने लिए अच्छी समझिए. गुड डिजिटल डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
1: बहुत अच्छे, ये जबरदस्त आपने कहा कि एक नौजवान को इसे अवेयर होना चाहिए. और बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब कि आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा हमें दिया.
0: थैंक यू फॉर हैविंग मी.
1: बहुत बहुत शुक्रिया. और अपने तमाम सुनने वालों से कहें कि अब पयाम सुबह प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर हो रहा है. अपने मेजबान रशीद निजामी को दीजिए इजाजत. मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का शो आपको अच्छा लगा होगा. अगली आवाज होगी नाहिदा बशीर की.
2: शुक्रिया रशीद साहब. ये आकाशवाणी श्रीनगर है और आप समाप्त कर रहे थे प्रोग्राम पयाम सुबह. हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए. ये आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव जात 68.8 मीटर FM 73.5 MHz से फिर समय बढ़ो. छकृत रोबोजो फनकार अली मोहम्मद शेख दीन सती ये मनीष बोजो कलामी अहमद बटवारी.

Planeta. भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 अब से कुछ देर में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। इसे हैदराबाद की निजी कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने बनाया है। विक्रम 1 का यह प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ये पहली बार होगा जब किसी भारतीय निजी कंपनी ने देश में डिजाइन और तैयार किया गया ऑर्बिटल क्लास रॉकेट लॉन्च किया है। इस रॉकेट का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉ. विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम 1 मिशन को भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि ये 4 चरणों वाला रॉकेट तेज और जरूरत के अनुसार उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने स्काईरूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये मिशन देश के युवाओं की प्रतिभा, मेहनत और नए विचारों को दिखाता है। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रूपये से अधिक की लागत आएगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश

0: मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि भारत अपने इस रुख पर दृढ़ता के साथ कायम है। नई दिल्ली में आज फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
1: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
0: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत की इस नीति को देखा है और ये तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। श्री सिंह ने कहा कि इस अभियान में आकाश तीर, आकाश मिसाइल प्रणाली और ब्रह्मोस सहित कई अन्य अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों का उपयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में दो अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। पीवी सिंधु ने टोक्यो में खेले जा रहे जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी दोस्तों, आप फिल्मी नगमे समाप्त कर रहे हैं और ये नगमा आपने सुना फिल्म 20 साल बाद से। शकील बदायूं के बोल थे, हेमंत कुमार की मौसीकी थी और आवाज़ भी हेमंत कुमार को ही इस नगमे को दी थी। और अब अगला गीत आपको सुनवाते हैं, ये है मन्ना डे की आवाज़ में फिल्म श्री 420 का नगमा।

जी दोस्तों, आपने ये नगमा सुना, ये था आशा भोसले और शमशाद बेगम की आवाज़ों में। ओपी नायर की मौसीकी थी, एस एच बिहारी की बोल थे और फिल्म का नाम था किस्मत। और अब आपको सुनवाते हैं आनंद फिल्म से सलील चौधरी के कंपोजिशन में मुकेश गाया हुआ नगमा, आइए समाप्त करते हैं।

0: जी दोस्तों, ये थे योगेश के बोल आनंद फिल्म से, सलील चौधरी की मौसीकी थी और आवाज़ मुकेश की थी। ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय 12:30 हो रहे हैं। अब हमारे यहाँ से खबरें नष्ट होंगी, पहली उर्दू और उसके फौरन बाद कश्मीरी में।
1: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है, खबरों का बुलेटिन लेकर मैं आबिदा अख्तर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जखैनी उधमपुर में एक यात्रा बस को पेश आए हादसे के बाद सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर उधमपुर मिंगा शेरपा और गारमेंट मेडिकल कॉलेज के अफसरान को हिदायत दी कि वो जख्मियों को बेहतर से बेहतर तिबी सहूलियात फराहम करें। उन्होंने हादसे में जख्मी अफराद की फौरी सेहतियाबी की दुआ की है। वाजह है, आज सुबह यात्रा काफिले में शामिल एक गाड़ी को हादसा पेश आया जिसमें उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले 5 यात्री और गांधरबल से ताल्लुक रखने वाला ड्राइवर जख्मी हुआ है। सभी जख्मी अफराद को GMC उधमपुर किया गया है जहां वो जहर इलाज है। हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में साइबर जराइम से निपटने और साइबर सिक्योरिटी को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए एक अहम पेशरफ के तहत JK4C यानी जम्मू कश्मीर साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर कायम करने को मंजूरी दी है। महकमे दाखिला की तरफ से जारी एक हुक्मनामे के मुताबिक ये मरकज डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की निगरानी में एक खुद मुख्तार इदारे के तौर पर काम करेगा। तय जिलाई साइबर पुलिस स्टेशन और 2 जोनल साइबर मराकज इस नए इदारे के साथ मुंसलिक रहेंगे जिनका सरबरा IGP रैंक का अफसर बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर होगा। ये सेंटर मरकजी वजारत दाखिला के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C के साथ करीबी इश्तराक में काम करेगा ताकि इसे कौमी सतह पर साइबर जराइम से निमटने के निजाम के हम पल्ला बनाया जा सके। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा दोनों रिवायती रास्तों पहलगाम और बालतल से खुश असलूबी के साथ जारी है। कल शाम तक लगभग 3.5 लाख से ज्यादा यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी देकर शिवलिंगम के दर्शन किए। इधर 3,632 यात्रियों पर मुश्तमिल 17वां काफिला आज वादी पहुंच गया। खुराक और शहरी रसदात के वजीर सती शर्मा ने कहा है कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला की क्यादत वाली हुकूमत शफाफ, जवाबदेह और तरक्की पर मबनी तर्ज हुक्मरानी के लिए पुराजम है जिसमें यकसां तामीर और तरक्की और माशरे के हर तबके की फलाह बहबूद को खसूसी अहमियत दी जा रही है। इन बातों का इजहार उन्होंने हल्के इंतखाब छम में 10 करोड़ रूपये से जायद लागत के मुतद्दिद अहम तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने के मौके पर किया। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने जम्मू कश्मीर में कारोबार और आसान तर्ज जिंदगी को फरोग देने के लिए मुल्क की सतह पर कामयाब साबित हुए बेहतरीन हुक्मरानी के मॉडल को अपनाने पर जोर दिया है। वो मुख्तलिफ महकमों के इंतजामी सेक्रेटरियों और मुतलिका महकमों के सीनियर अफसरान की एक आला सतह की मीटिंग में इजहार ख्याल कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने अफसरान को हिदायत

दी कि वो खदमात की फराहमी में गैर जरूरी जवाबित में कमी लाकर इसे आसान बनाए। चिनार बुक फेस्टिवल का तीसरा शुमारा आज से 26 जुलाई तक एसकेआईसीसी श्रीनगर में जारी रहेगा। इस कुतुब मेले में मुख्तलिफ मौजूदात का इहाता करने वाली किताबों का जखीम खजाना फरोख्त के लिए दस्तियाब रहेगा। फेस्टिवल में मुल्क भर से पब्लिशर्स अपनी खदमात दस्तियाब रखते हैं। फूड सेफ्टी महकमे ने जम्मू कश्मीर भर में अशय खुर्दनोश के मेयार को बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर बाजारों का मुआयना किया, जिस दौरान मुख्तलिफ अशिया के नमूने हासिल करके उनकी जांच के लिए लेबोरेटरी भेज दिया गया। दरी असना सार्फीन से कहा गया है कि वो किसी भी मशकूक या गैर मेयारी गजाई अजनास की खरीद और फरोख से मुतल्लिक इतला महकमे के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 104 या बजरिए ई मेल cfsjnk.fnd@jk.gov.in पर दे सकते हैं। मरकजी हुकूमत ने पार्लियामेंट के आने वाले मानसून इजलास से पहले 19 जुलाई इतवार को सियासी पार्टियों के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग तलब की है। मीटिंग के दौरान हुकूमत पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई आसान तरीके पर चलाने की सियासी पार्टियों से ताउन तलब करेंगे। वाजह रहे कि पार्लियामेंट का मानसून इजलास रवां महीने की 20 तारीख से शुरू होकर 13 अगस्त को इख्तिताम को पहुंचेगा। लोकटाक डेवलपमेंट अथॉरिटी इम्फाल मणिपुर के एक वफद ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर हेसनाम बाल कृष्ण की कयादत में जम्मू कश्मीर लेक्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी श्रीनगर का दौरा किया। वफद ने एलसीएमए के वाइस चेयरमैन खुर्शीद अहमद शाह से मुलाकात की और डल झील के तहफ्फुज़ समेत दीगर कई अहम उमूर पर तबादले ख्याल किया। डिप्टी कमिश्नर गांधरबल जतिन किशोर ने हजरत कमरुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह के सालाना उर्स के सिलसिले में किए जा रहे इंतजाम का जायजा लेने की गर्ज से अफसरान की एक मीटिंग की सदारत की। इस मौके पर तरक्याती कमिश्नर ने अफसरान को हिदायत दी कि वह उर्स के आयाम के दौरान अकीदतमंदों के लिए बुनियादी सहूलियात की दस्तियाबी को यकीनी बनाए। ये उर्स ऋषिपुरा सालूरा में 21-25 जुलाई तक मनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा श्रीकांत सूसे ने जिले में आधार सेवा केंद्र का इफ्तिताह किया। इस मरकज पर आधार से मुतल्लिक मुख्तलिफ सहूलियात एक ही छत के नीचे अवाम को फराहम की जाएंगी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने आधार के इंदराज और अपडेट के तरीकेकार का भी जायजा लिया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज़।

कि अब छोटे बच्चे मोबाइल के बगैर खाना खाने से भी इनकार करते हैं। सोशल मीडिया पर लाइक्स और कमेंट्स के दौर ने इन्हें इस कदर उलझा दिया है कि वो हकीकी जिंदगी के रिश्तों और जिम्मेदारियों से बेगाना हो गए हैं। अपने प्रोफाइल्स पर गैर जरूरी मवाद डालने, बेतरतीब वीडियोस बनाने और उन्हें देखने की लत ने न सिर्फ वक्त का जिया किया बल्कि जहनी सुकून भी छीन लिया। तालीम और माशरती ताल्लुकात भी अब डिजिटल जाल से महफूज न रहे हैं। शॉर्टकट के जरिए शोहरत और दौलत कमाने की हवस ने तहकीक, मुताला और मेहनत जैसे उसूलों को पसे पुश्त डाल दिया है। सियासत हो या मजहब, नौजवान हर मौजू पर बगैर सोचे समझे राय देने लगे हैं और ये रुझान माशरती इंतशार का बास बनने लगा है। इसके अलावा ऑनलाइन गेम्स की लत, मगरबी सकाफत की बेजा तकलीद और अपनी माशरती रिवायात से दूरी और बेजारी ने एक नई किस्म की नस्ल को जन्म दिया है जो न सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी तौर पर भी कमजोर हो रही है। इस सूरत हाल में दुआ ही की जा सकती है कि नौजवान नस्ल टेक्नोलॉजी को मस्बत मकासद के लिए इस्तेमाल कर सके। वालदैन, असातिज़ा और माशरती रहनुमाओं को चाहिए कि वो नौजवानों की रहनुमाई करें ताकि वो इस ताकत वर वसीले को अपनी तालीम, कारोबार और तख्लीकी सलाहियतों के फरोग के लिए इस्तेमाल कर सके। ये वक्त का तकाजा है कि हम डिजिटल मीडिया के फवायद को नुकसान से ज्यादा मुअसर बनाए और अपनी आने वाली नस्लों को बेहतर मुस्तकबिल की तरफ ले जाए। अगर बर वक्त इस तरफ तवज्जो न दी गई तो काफी देर हो जाएगी। इस बात से कोई इनकार नहीं कि सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगियों को बहुत आसान बनाया है और दौर जदीद की बहुत सी सहूलियात को एक प्लेटफॉर्म पर मुहैया कर दिया है, लेकिन इसका बेजा और गलत इस्तेमाल बहुत से मसाइल भी पैदा कर सकता है और कर रहा है। इससे बचने की जरूरत है। नौजवानों को खुद सोचना चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। वालदैन, असातिज़ा भी अपना रोल बखूबी निभाएं तो इसके गलत इस्तेमाल को रोका जा सकता है। बहुत खूब रिदवान रशीद, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस स्क्रिप्ट का जिसका अनुवाद था हमारी नौजवान नस्ल और डिजिटल मीडिया। बाकी मैं अपने इस स्क्रिप्ट में ऐसे कई बातों का जिक्र किया है जो हमारी नौजवानों को काफी मुतासिर कर रहे हैं। हमारे नौजवान अपनी तालीम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, मुताला नहीं कर रहे हैं, अपना वक्त जाया कर रहे हैं और रात रात भर जागते रहते हैं। उम्मीद की जा सकती है इस प्रोग्राम की वसालत से हम सामिन कराम को यही अपील कर सकते हैं कि अपने बच्चों को, खुद को और माओ बहनों को ये जो डिजिटल मीडिया है इसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उससे महफूज रखें। बहुत बहुत शुक्रिया रिदवान रशीद आपके इस बातचीत का, आपके इस स्क्रिप्ट का। समय के नाम प्रोग्राम जारी है, आइए सुनते हैं ये गजल।

संक्राम गजल के बाद आपका फिर से खैर मकदम है प्रोग्राम में। उम्मीद है गजल आपको पसंद आई होगी। समय आप बात करेंगे माइग्रेन के बारे में, जिसे आमतौर हम आम सरदर्द समझते हैं, जबकि माइग्रेन आम सरदर्द नहीं है बल्कि एक ऐसी कैफियत है जिसे इंसान की आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है, गनोदगी होने लगती है, यहाँ तक कि कुछ लोगों को कै और मतली की कैफियत भी होने लगती है। हालांकि नशरियाती इदारे CNN की रिपोर्ट में बताया गया कि 2018 के मुताले के मुताबिक माइग्रेन के सबब 50 साल से कम उम्र लोग किसी भी किस्म की माजूरी का शिकार होते हैं। कई लोग माइग्रेन की संगीनी को नजरअंदाज करते हुए डॉक्टर से रजू नहीं करते, जिसकी वजह से उन्हें मुस्तकबिल में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के जरीदे में एक तहकीक से जाहिर हुआ है कि सर दर्द और माइग्रेन का ताल्लुक नींद से है, जिसे बायोलॉजिकल इस्तेलाह में सर्केडियन सिस्टम कहते हैं। अमेरिकी एसोसिएशन ऑफ माइग्रेन की एक रिपोर्ट के मुताबिक माइग्रेन को आम सर दर्द समझना अब पुरानी बात हो चुकी है। जहां आमतौर पर सर दर्द को बर्दाश्त किया जा सकता है, वही माइग्रेन बहुत शदीद होता है और बाज अवकात जिस्म में शदीद कमजोरी महसूस होने लगती है। माइग्रेन का दर्द दिमाग की गहराई से शुरू होता है और आसाबी निजाम के हिस्सों को मुतासर करता है। ये दर्द मर्दों के मुकाबले खवातीन में तकरीबन 3 गुना ज्यादा आम है। आमतौर पर हर 15 मर्दों में से एक के मुकाबले में ये दर्द 5 में से एक औरत में पाया जाता है। खवातीन पर माइग्रेन की शिद्दत ज्यादा होने की वजह जिनसी हार्मोन्स का बड़े पैमाने पर उतार चढ़ाव NH1 में तब्दीली का बास बनता है। माहरीन सेहत का कहना है कि इस बीमारी की कोई हतमी वजह अब तक सामने नहीं आ सकी है और न ही इसका मुकम्मल इलाज सामने आया है। ताहम कुछ लोग सरदर्द की अदवियात का इस्तेमाल करके इस दर्द से आरजी तौर पर निजात हासिल करते हैं। माहरीन का कहना है कि अगर खानदान में किसी एक को माइग्रेन हो जाए तो मुमकिन है कि ये बीमारी आगे आने वाली नस्ल में भी मुंतकिल हो सकती है, लेकिन इसके इम्कान बहुत कम है। तहम आधे सर का दर्द दिमाग में चोट लगने की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा हार्मोनल तब्दीलियां भी माइग्रेन अटैक का सबब बन सकती है। दर्द शकीका यानी माइग्रेन की सही वजह मालूम नहीं है। हालांकि ख्याल किया जाता है कि ये दिमाग में केमिकल्स, आसाब और खून की नालियों में आरजी तब्दीलियों का नतीजा है। आधे सर का दर्द का दौरान या 5 मिनट से 72 घंटों तक जारी रह सकता है। इस दौरान धुंधला नजर आना, जल्दी बुझती तेज रोशनी दिखाई देना, आवाज में तब्दीली जैसी अलामत भी जाहिर होती है। आधे सर दर्द की दीगर अलामत में चक्कर, दिमाग माऊफ रहना, मूड में तब्दीली, जमाई आना, गर्दन में शदीद दर्द रहना और भूख की तलब में गैर मामूली इजाफा भी हो सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक हर साल बरतानिया में इस दर्द की वजह से 2.5 करोड़ दिन की छुट्टी ली जाती है, लेकिन सेहत और माशी बोझ के मुकाबले में दर्द शकीका दुनिया की सबसे कम फंड्स रखने वाली बीमारी रही है। क्योंकि इस बीमारी की कोई हतमी वजह अभी तक सामने नहीं आ सकी है और न ही इसका मुकम्मल इलाज, लेकिन इस दर्द की अलामत को कम करने में मदद के लिए मुतादित तजावीज सामने आई हैं, जिसमें कई अफराद पैरास्टामोल या सर दर्द की अदवियात खाकर आरजी तौर पर नजात हासिल करते हैं, या फिर कई अफराद कमरे में अंधेरा करके पूरी नींद करने की कोशिश करते हैं ताकि दर्द को कम किया जा सके। उम्मीद है सामीन आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे और हर किसी किस्म के जिस्मानी दर्द से अपने आप को महफूज रखेंगे, अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखेंगे। और जब भी आपको किसी ऐसी अलामत के बारे में पता चले जो आपके जिस्म से जाहिर हो रही है, उसका जल्द से जल्द इलाज करें, एक अच्छे से डॉक्टर को रजू करें और अपने आप को महफूज करें। समीन आपसे बात करते करते पता ही नहीं चला कि प्रोग्राम का दौरान या इख्तिताम पजीर हो रहा है, लेकिन स्टूडियो की घड़ी हमें इशारा दे रही है कि आज के इस प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर हो रहा है। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में आपके रूबरू फिर हाजिर होंगे एक नए

0: आवाजों के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।
1: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
2: बदलो बदलो आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: चिनार की छांव तले किताबों का एक खूबसूरत जहां आपका इंतजार कर रहा है। आइए तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल में, जहां मिलेंगी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के 200 से अधिक बुक स्टॉल्स, साथ ही क्रिएटिव वर्कशॉप्स बच्चों के लिए, लिटरेरी सेशंस, डिजिटल रीडिंग कॉर्नर और कल्चरल परफॉर्मेंसेस का लुत्फ उठाइए। 18 से 26 जुलाई SKICC श्रीनगर। चिनार बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर। टुगेदर वी रीड, टुगेदर वी लीड।
5: समीना आप समाप्त कर रहे थे प्रोग्राम बज्म निस्वा, पेशकश समीना शाह। ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 MHz पर। समीना अब हम आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी खबरों के बुलेटिन नष्ट करेंगे, जरा सा इंतजार कीजिए।
6: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 सफलतापूर्वक आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। इसे हैदराबाद की निजी कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने बनाया है। विक्रम 1 का यह प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस रॉकेट का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉ विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम 1 मिशन को भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि रॉकेट तेज और मांग के अनुरूप प्रक्षेपण सुविधा उपलब्ध कराएगा। प्रधानमंत्री ने स्काईरूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं।
7: उन्होंने कहा कि ये मिशन देश के युवाओं की प्रतिभा, मेहनत और नए विचारों को दिखाता है। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में नए अवसर सृजित होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि भारत अपने रुख पर दृढ़ता के साथ कायम है। नई दिल्ली में आज फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
8: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं, बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
7: श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इस नेतृत्व को देखा है और यह तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। श्री सिंह ने कहा कि इस अभियान में आकाश तीर, आकाश मिसाइल प्रणाली और ब्रह्मोस सहित कई अन्य अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों का उपयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रूपये से अधिक की लागत आएगी। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलो

0: ग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में दो अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने करीब 4,25,00,000 रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। ये कार्रवाई राज्य सरकार के नशे से दूरी है जरूरी अभियान के अंतर्गत चलाए जा रहे विशेष अभियान का हिस्सा है। पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यूफी के खिलाफ पहला सेट 21-19 से जीता। दूसरे सेट में चेन यूफी ने चोट के कारण मुकाबले से हटने का निर्णय लिया। फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। महिला सिंगल्स के फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा। मौसम विभाग ने उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कल तक मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। India's first privately developed orbital rocket, Vikram 1, under Mission Agaman, has successfully reached orbit after completing its final burn and injecting payloads into a 450-kilometer orbit. The liftoff took place at 12.05 p.m. from Satish Dhawan Space Center at Sriharikota in Andhra Pradesh. The milestone makes India the third country in the world to achieve private orbital launch capability. Prime Minister Narendra Modi congratulated Skyroot Aerospace for the achievement. Mr. Modi spoke to Team Skyroot by phone and lauded the historic space feat. The Prime Minister also invited Team Vikram 1 to meet him.
2: Dhawan, Bharat, aur puri team, bahut bahut badhai. Do kaam kiye hai. Ek to aasman mein naye paudhe gaad diye hai aur dusra zameen mein bhi us roots ko aapne majbooti di hai jo desh ke naujawanon ko आगे आने की प्रेरणा देगी और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: Named after Dr. Vikram Sarabhai, the father of the Indian space program, Vikram 1 is intended to provide cost-effective and flexible launch services for small satellites. Its successful orbital mission marks a significant milestone for India's private space sector, reflecting the growing role of private industry following the space sector reforms that opened launch activities to non-government companies. Defence Minister Rajnath Singh has said that for India, zero tolerance against terrorism is not merely a statement but a firm line of action. Speaking at the forces' first conclave in New Delhi today, Mr. Singh said, India will strike terrorists not only at its doorstep but if necessary by entering their hideouts. He added that the entire world witnessed this during Operation Sindoor and it was a remarkable example of technological warfare.
3: Operation Sindoor apne aap mein technological warfare ka
4: Operation Sindoor was in itself a fantastic example of technological warfare. In this operation, systems like the Akash missile system and advanced missile systems like BrahMos along with various latest equipment were used. This has proven that our armed forces understand the changes taking place and are also using them with confidence.
3: Aur use aatmavishwas ke sath uska upyog bhi kar rahi hai.
1: Union Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari and Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis will jointly lay the foundation stone for three major national highway projects worth over 16,700 crore rupees in Pune today. The projects are expected to enhance connectivity, reduce travel time and traffic congestion, and boost industrial and economic growth in the Pune region. The government has convened an all-party meeting tomorrow ahead of the monsoon session of the parliament beginning on

जय हिंद फौज भाइयों। फौज भाइयों, पहली नशस्त के प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप बखैरत होंगे। और आइए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं सफ़र फिल्म के नगमे से। इंदिवर के बोल है कल्याण जी, आनंद जी की मौसीकी है और इस नगमे को गाया है किशोर ने।

फौजी भाइयों, ये है हसीना मान जाई, एक फिल्म का नगमा, अख्तर रोमानी के बोल हैं, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं।

हसीना मान जाएगी। जी हाँ फौजी भाइयों, आपने इस फिल्म से मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में ये नगमा सुना। अख्तर मान रोमानी के बोल थे और कल्याण जी आनंद जी की मौसीकी थी। और अगला गीत आपको सुनवाते हैं, ये है जयदेव का लिखा हुआ, गरौंडा फिल्म से भूपेंद्र की आवाज़ में।

0: फौज भाइयों, ये था गुलजार का लिखा गीत, जयदेव की मौसीकी में भूपेंद्र की आवाज़ थी और फिल्म का नाम था गरुंडा। आपको बताते चले कि आप इस वक्त आकाशवाणी श्रीनगर से आपका मनपसंद प्रोग्राम सुन रहे हैं फौजी भाइयों के लिए, और आप हमें सुन सकते हैं DTH और ऑल इंडिया रेडियो की मोबाइल ऐप पर। फौज भाइयों, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे।
1: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुँचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
0: फौज भाइयों, ब्रेक के बाद आपका प्रोग्राम में एक बार फिर से खैर मकदम करते हैं और आपको सुनवाते हैं प्रोग्राम का अगला गीत। इसे हमने क्यों किया है फिल्म प्यार का मौसम से। मजरूह के बोल है, आरी बर्मन की मौसीकी है और आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की।

0: आज तू क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के

दोस्तों, ये था जहरीला इंसान फिल्म का नगमा किशोर कुमार की आवाज़ में। आइए अब एक और गीत आपको सुनवाते हैं। ये हसरत जौहरी का लिखा हुआ गीत शंकर जयकिशन की मौसिकी है। फिल्म का नाम है छोटी सी मुलाकात और इस नगमे को गाया है मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर ने।

तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या।

जी दोस्तों, ये था छोटी सी मुलाकात फिल्म का नगमा। हसरत जयपुरी के बोलते शंकर जयकिशन की मौसीकी थी और मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ें थी। ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू और अंग्रेज़ी खबरों के बुलेटिन नष्ट करेंगे, ज़रा सा इंतज़ार कीजिए।

0: حبيب الرحمن. आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज से रॉकेट विक्रम 1 ने कामयाबी के साथ उड़ान भरी और इसे पहली बार निजी शोबे ने तैयार किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस कामयाबी के लिए इस प्रोजेक्ट से वाबस्ता टीम को मुबारकबाद दी है और कहा है कि यह भारत के खलाई सफर में एक दूरस और तारीखी तब्दीली लाएगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की पॉलिसी की महज कोई बयान नहीं बल्कि ये सख्त कार्रवाई का अज़्म मुसम्मम है। भारत के मौसमियात के महकमे ने मगरबी बंगाल के ज़ैली हिमालयी इलाके और सिक्किम में कल तक बहुत तेज़ बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और पीवी सिंधु जापान के शहर टोक्यो में जारी बैडमिंटन के ख्वातीन के सिंगल्स के फाइनल में पहुँच गई हैं। अब खबरें तफसील से। मिशन आगमन के तहत भारत का पहला निजी तौर पर तैयार करदा मदार में जाने वाला रॉकेट विक्रम 1 इंजन का आखिरी मरहला मुकम्मल करने और 450 किलोमीटर बुलंद मदार में पेलोड्स पहुंचाने के बाद कामयाबी के साथ मदार में दाखिल हो गया। इस रॉकेट को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में वाक़ सतीश धवन खलाई मरकज से आज दोपहर 12:05 पर भेजा गया। इस कामयाबी के साथ भारत निजी शोबे के जरिए मदार में रॉकेट लॉन्च करने की सलाहियत हासिल करने वाला दुनिया का तीसरा मुल्क बन गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले निजी तौर पर तैयार कर द विक्रम 1 की कामयाबी पर स्काई रूट्स एरोस्पेस की टीम को टेलीफोन के जरिए मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि यह तारीखी कामयाबी मुल्क के नौजवानों को आगे बढ़ने और इख्तरा में अपने रोल अदा करने के लिए हौसला अफजाई करेगी। वजीर आजम ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि स्काई रूट्स की टीम में ज्यादातर नौजवान माहिरीन शामिल हैं। उन्होंने विक्रम 1 की टीम को मुलाकात के लिए मदऊ भी किया।
1: भारत और पूरी टीम बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: वजीर आजम ने मजीद कहा कि यह कामयाबी मुल्क के बेशुमार नौजवानों को बड़े ख्वाब देखने और बेखौफ होकर नई इजादात करने की तरगीब देगी। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी भारत के पहले निजी तौर पर तैयार करदा रॉकेट विक्रम 1 की कामयाब लॉन्च पर स्काई रूट की टीम को मुबारकबाद दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि यह मिशन भारत के तेजी से तरक्की करते हुए निजी खलाई शोबे के लिए एक अहम संगमील है। उन्होंने कहा कि यह कामयाबी खलाई टेक्नोलॉजी में मुल्क की बढ़ती हुई सलाहियत और फरोग पाती हुई खलाई मईशत की अक्कासी करती है। विक्रम 1 को हैदराबाद में वाक़ खलाई कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने डिज़ाइन और तैयार किया है।

0: मिशन आगमन के तहत तैयार किया गया यह रॉकेट कम लागत और पायदार अंदाज में छोटे सैटेलाइट्स को खला में भेजने के लिए बनाया गया है। भारत के खलाई प्रोग्राम के बानी डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखे गए इस रॉकेट में ठोस ईंधन पर मबनी तीन मराहिल हैं, जबकि मदार में एडजस्टमेंट मॉड्यूल में रकीक ईंधन से चलने वाला रमन इंजन नसब है, जो रॉकेट को दुरुस्त मदार में दाखिल करने और मदार में मतलूबा तब्दीलियां अंजाम देने में मदद फराहम करता है। यह रॉकेट जमीन की सतह से तकरीबन 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर की बुलंदी पर वाके मदार में पेलोड्स पहुंचाने की सलाहियत रखता है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की पॉलिसी सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक वाजह, दो टोक और मजबूत मौकफ है। आज नई दिल्ली में मुनाकिदा फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि भारत दहशतगर्दों को सिर्फ अपनी सरहदों पर नहीं बल्कि ज़रूरत पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी निशाना बनाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसका बखूबी मुशाहिदा किया, जो जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी जंग की एक नुमाया मिसाल थी।
1: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
0: उन्होंने बताया कि हुकूमत ने न सिर्फ भारत की दिफाई तैयारियों को मजबूत बनाने बल्कि दिफाई ज़रूरियात के लिए दरामदात पर इन्हिसार कम करने का भी अज़्म किया है। वज़ीर मौसूफ ने कहा है कि मुसल्लह अफवाज की जदीदकारी के लिए मुख्तस बजट का 75% हिस्सा भारतीय सनद से दिफाई साजो सामान की खरीदारी के लिए महफूज रखा गया है।
1: नई डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के माध्यम से बाई इंडियन आईडीडीएम जैसी व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी गई। सेनाओं के आधुनिकरण के लिए निर्धारित बजट का 75% भाग भारतीय उद्योगों से खरीद के लिए सुरक्षित किया गया। इस साल हम नया डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर लेकर आ रहे हैं, जिसके कारण देश में डिफेंस प्रोडक्शन को एक नई रफ्तार मिलेगी और एक नई ताकत भी मिलेगी।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सरकार ने पार्लियामेंट का मानसून इजलास शुरू होने से पहले कल सभी पार्टियों की मीटिंग बुलाई है। इजलास पीर से शुरू होगा। मीटिंग के दौरान सरकार सभी सियासी जमातों का ताउन हासिल करने की कोशिश करेगी ताकि दोनों ऐवानों की कार्रवाई खुशुसलूबी से चलाई जा सके। मानसून इजलास पीर से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक जारी रहेगा। इजलास के दौरान कई अहम कानून बहसो मुबाहसे और मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने आज वर्चुअल तरीके पर नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस तरह उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के दरमियान रेल राब्ता बढ़ जाने का एक नया दौर शुरू हो गया है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए रेलवे के वजीर जनाब वैष्णव ने कहा कि रेलगाड़ी हफ्ते में 2 बार चला करेगी और उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल खित्तों के दरमियान भी राब्ते की सहूलत फराहम होगी।
2: ये आज की गाड़ी है जो कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ेगी। इसका ये एक नया सेतु बनेगी कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में, और इसके लिए प्रयास लगातार होता रहा है। और आज इन प्रयासों का एक जो फल निकला है वो ये है कि आज कम से कम हफ्ते में 2 दिन ये गाड़ी स्टार्ट हो पा रही है। बहुत अच्छी बात है, कुमाऊं के लोग आराम से गढ़वाल जा पाएंगे, देहरादून कैपिटल तक जा पाएंगे।
0: अक्वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक से मुतालिक इदारे ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में फैली हुई बेचैनी पर तश्वीश का इजहार किया है। उसने मुजाहिरीन और हिफाजती दस्तों के अहलकारों के मारे जाने की तफ्तीश का भी मुतालबा किया है। इंसानी हकूक से मुतालिक अक्वामे मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर वोल्कर तुर्क ने पाकिस्तान के हुक्काम पर जोर दिया है कि वो तहम्मुल से काम लें, बुनियादी हकूक का तहफ्फुज करें और इलाकाई इंतखाबात से पहले तशद्दुद के वाकयात की जिम्मेदारी तय करें। वहाँ इस महीने के आखिर में इलाकाई इंतखाबात होने हैं। भारत के मौसमियात के महकमे ने मगरबी बंगाल के ज़ैली हिमालयी इलाके और सिक्किम में कल तक बहुत तेज़ बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। उसने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कल तक कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश और बाज में नहायत शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। मौसमियात के महकमे के मुताबिक आज बिहार, मध्य प्रदेश, मशरक़ी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरला, माहे, उड़ीसा और शिमाल मशरक़ी रियासतों में तेज़ बारिश होने की पेशगोई की है। बैडमिंटन में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी और ओलंपिक में 2 मरतबा तमगा जीतने वाली पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन के खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल

0: फाइनल में चौथे नंबर की चीनी खिलाड़ी चिन युफेई मैच के दूसरे सेट के दौरान जख्मी होने के बाद रिटायर हो गई, जिसके बाद पीवी सिंधु को फातह करार दे दिया गया। कल फाइनल में सिंधु का मुकाबला जापान के खिलाड़ी अकाने यामागुची से होगा। फीफा आलमी कप में तीसरे मकाम के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस और इंग्लैंड का मुकाबला होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 2:30 बजे शुरू होगा। सेमीफाइनल में फ्रांस स्पेन से हार गया था, जबकि दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से शिकस्त दी थी। आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा से सतीश धवन खलाई मरकज से रॉकेट विक्रम 1 ने कामयाबी के साथ उड़ान भरी और इसे पहली बार निजी शोभे ने तैयार किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस कामयाबी के लिए इस प्रोजेक्ट से वाबस्ता टीम को मुबारकबाद दी है और कहा है कि यह भारत के खलाई सफर में एक दूरदर्शी और तारीखी तब्दीली लाएगा। वजीर दफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की पॉलिसी महज कोई बयान नहीं, बल्कि ये सख्त कार्रवाई का अजम मुसम्मम है। और पीवी सिंधु जापान के शहर टोक्यो में जारी बैडमिंटन के खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashwani and I'm Shagun Chopra with the midday news. The headlines. India's first privately developed orbital rocket Vikram 1 launched successfully from Satish Dhawan Space Center at Sriharikota. Prime Minister Narendra Modi congratulates the Skyroot Aerospace team, calls it a defining moment in India's space journey. Defence Minister Rajnath Singh says India's zero tolerance against terrorism is not merely a statement but a firm line of action. Red colour warning issued for very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. And in badminton, PV Sindhu storms into women's singles final of Japan Open in Tokyo. And now the news in detail. India's first privately developed orbital rocket Vikram 1 under Mission Agaman has successfully reached orbit after completing its final burn and injecting payloads into a 450-kilometer orbit. The liftoff took place at 12.05 p.m. from the Satish Dhawan Space Center at Sriharikota in Andhra Pradesh.
2: 2-1-0.
3: And we have liftoff of Vikram 1, India's first private orbital launch
2: lift
3: vehicle.
2: Off, normal.
3: Vikram 1 ne apni udan bhari pratham charan ka prajwalan.
1: Our correspondent reports that the milestone makes India the third country in the world to achieve private orbital launch capability. Developed under Mission Agaman, the rocket is intended to provide cost-effective and flexible launch services for small satellites. Named after Dr. Vikram Sarabhai, the father of the Indian space program, Vikram 1 features three solid propellant stages and a liquid-fueled Raman engine in its orbital adjustment module for precise orbital insertion and maneuvers. It is capable of placing payloads into low Earth orbit, a report.
4: Mission Agaman marks the first successful launch of an orbital class rocket, fully designed, developed and launched by an Indian private company from Indian soil. Mr. Pawan Kumar thanked the Prime Minister for his leadership and said the government's space sector reforms, along with the support of ISRO and InSpace, had made the achievement possible. The mission is expected to strengthen India's position in the global small satellite launch market while advancing the objectives of Make in India and Atmanirbhar Bharat. Allu Murli, Akashwani News, Vijayawada.
1: Prime Minister Narendra Modi congratulated the Skyroot Aerospace team over a telephone call after India's first privately developed orbital rocket Vikram 1 successfully reached orbit. Mr. Modi said successful launch of Vikram 1 under Mission Agaman is a major milestone in India's journey towards self-reliance in the space sector. Mr. Modi also expressed happiness that the Skyroot team comprises mostly young professionals. The Prime Minister also invited team Vikram 1 to meet him. The Prime Minister said the historic achievement will inspire the youth of the country to come forward and contribute to innovation.
5: जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की मैं आपको आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत

जी दोस्तों, गुजारिश ट्रैक आप सुन रहे थे फिल्म गजनी से। प्रसून जोशी के बोल थे, एआर रहमान की मौसीकी थी और जावेद अली की आवाज़ थी। और अब अगला गीत आपको सुनवाते हैं, यह है इरशाद कामिल का लिखा हुआ गीत, प्रीतम की मौसीकी है, मोहित चौहान की आवाज़ है और फिल्म है जब वी मेट।

नीरज श्रीधर और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में ये था इरशाद कामिल का लिखा गीत, प्रीतम की मौसीकी थी और फिल्म का नाम था लव आजकल। ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे अगले ऐलान का इंतज़ार कीजिए। ये छ आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव 67.8 मीटर तो FM 73.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय वल्यू छकर तो बोजो फनकार छ अली मोहम्मद शेख तीन सती ये मनुष्य बुजुत कला में अहद सरगर।

Andari vayam paa

Murus tam hasdaran var. Hoklar Murus tam hasdaran.

الهان بردا وطيري روح بيس ميديس ميستار

জোশ করতে বস করা রক্ত দাও জোশ করতে

Raj Mustafa, Satan Shah.

हमारी आवाज आप तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है। मीडियम वेव 208.81 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय सुपहर के 3 बज रहे हैं। पेश है प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए।

जय हिंद फौज भाइयों। फौज भाइयों, दूसरी नशस्त का प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आपका प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं और आपको बताते चले कि आज प्रोग्राम में खूबसूरत से नगमे आपको सुनवाएंगे और फिल्मी दुनिया से कुछ खबरें आप तक पहुंचाएंगे। फ़िलहाल आप प्रोग्राम का पहला नगमा सुनिए। ये है फिल्म 1942 अ लव स्टोरी से जावेद अख्तर के आवाज़ कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ है, आर डी बर्मन की मौसिकी और जावेद अख्तर का लिखा हुआ ये गीत है।

जी फौजी भाइयों, ये था सिंगिस किंग फिल्म का नगमा। मयूर पुरी के बोल थे, प्रीतम के मौसीकी थी, राहत फतेह अली खान, श्रेया घोषाल और साथियों की आवाज़ें थी। और अब वादे के मुताबिक आपके साथ फिल्मी दुनिया की कुछ खबर आपके साथ शेयर करेंगे। और खबर है कि अदाकारा तमन्ना भाटिया ने अपनी इंतहाई मुतवक्का हॉरर फिल्म रागिनी थी की शूटिंग शुरू कर दी है। बालाजी मोशन पिक्चर्स की मकबूल रागिनी फ्रेंचाइजी की इस फिल्म की हिदायतकारी सुशांक घोष कर रहे हैं। तमन्ना ने सोशल मीडिया पर क्लैपर बोर्ड की तस्वीर शेयर करते हुए इस बात की मालूमात दी, जिसमें वाजह हो गया कि फिल्म की शूटिंग 15 जुलाई को शुरू हो चुकी है। फिल्म का पहला शेड्यूल लंदन में मुकम्मल किया जाएगा, जबकि शूटिंग आने वाले महीनों में दीगर मकामात पर होगी। जबकि फिल्म की कहानी और दीगर कास्ट मेम्बरान अभी तक खुफिया रखे गए हैं, लेकिन प्रोड्यूसर का दावा है कि रागिनी 3 में हॉरर, सस्पेंस और तफरी का वही इम्तिजाज देखने को मिलेगा जिसने फ्रेंचाइजी को नाजरीन में मकबूल बनाया। रागिनी 3 अगले साल यानी 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज़ की जाएगी। इस फिल्म के अलावा तमन्ना भाटिया अदाकार सिद्धार्थ मल्होत्रा के मते मुकाबल 1 में भी नजर आएंगे, जो 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

फौज भाइयों, ये था जावेद अख्तर का लिखा हुआ गीत। संजीव दर्शन की मौसीकी थी, अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजें थी, और फिल्म का नाम था हमारा दिल आपके पास है।

जी फौजी भाइयों, आपने कविता कृष्णमूर्ति के आवाज में जावेद अख्तर का लिखा हुआ गीत सुना। फिल्म का नाम था जुबैदा और मौसीकी इस नगमे के लिए तैयार की थी ए आर रहमान ने। और आलमी शोहरत याफ्ता मौसीकार ए आर रहमान ने वॉशिंगटन में वुल्फ ट्रैम्प में नेशनल सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के साथ एक यादगार मौसीकी प्रोग्राम पेश किया, जहां हाजरीन ने इनकी शानदार पेशकश पर खड़े होकर भरपूर दाद दी। अमेरिका की हालिया 250 साल तकरीबात के फौरन बाद मनक़द होने वाले इस खसूसी प्रोग्राम में हिंदुस्तानी क्लासिकी मौसीकी, मगरबी सिम्फनी दोनों और जदीद मौसीकी को एक मुनफरद अंदाज में पेश किया गया। ये प्रोग्राम गुज़श्ता 3 दहाइयों के दौरान ए आर रहमान के मुनफरद मौसीकी के सफ़र की झलक पेश करता है।

जी फौजी भाइयों, ये था एआर रहमान की मौसीकी में गुलजार का लिखा गीत। फिल्म का नाम था जब तक हिजां और इस नगमे को आवाज़ें दी थी श्रेया घोषाल और मोहित चौहान ने। और आलमी स्टारर प्रियंका चोपड़ा फिल्म वाराणसी के साथ हिंदुस्तानी सिनेमा में वापस आ गई है। ये एक हिंदुस्तानी फिल्म है जो आलमी सतह पर बनाई जा रही है। एस राजमौली इसी हिकमत अमली पर चल रहे हैं जो इनकी फिल्म RRR की थी। ये फिल्म अगले साल अप्रैल में रिलीज की जाएगी। फिल्म बनाने वाले सितंबर अक्टूबर तक फिल्म को मुकम्मल करने का भी मंसूबा बना रहे हैं। फिल्म में महेश बाबू मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं जबकि प्रियंका चोपड़ा खातून मरकजी किरदार अदा कर रही हैं। पृथ्वीराज सुकुमारन विलन का किरदार अदा कर रहे हैं। वो पहले ही फिल्म के बारे में अहम अपडेट दे चुके हैं। अब प्रियंका ने अपने किरदार के बारे में तफसीलात बताते हुए कहा कि मैंने इसमें कुछ हैरत अंगेज सिल्वर मोशन जंप्स किए। मैं इसके बारे में बस इतना ही कह सकती हूँ कि हाल ही में ये बात सामने आई थी कि महेश बाबू वक्फे पर है और जल्द ही वापस आएंगे और फिर अगले शेड्यूल पर काम शुरू किया जाएगा। तहम SS राजमौली अगले शेड्यूल पर मुसलसल काम कर रहे हैं। दरियासना प्रियंका ने राजमौली के साथ काम करने का अपना तजुर्बा बताया। गुफ्तगु के दौरान निक जोन्स ने प्रियंका से फिल्म वाराणसी के हवाले से बात की और अदाकारा से कहा कि मैं तकरीबन 14 माह से इस पर काम कर रही हूँ। प्रियंका चोपड़ा ने कहा, SS राजमौली ने फिल्में बनाने में अपना वक्त निकालने के लिए जाने जाते हैं। ये एक महाकाव्य एडवेंचर है जो दुनिया भर में और मुख्तलिफ इदारों अदवार में होता है। इसमें कुछ वक्त लगता है। मैंने इसमें कुछ हैरत अंगेज सिल्वर मोशन जंप्स किए हैं। मैं इसके बारे में बस इतना कह सकती हूँ। प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में कहा कि ये फिल्म इससे पहले की किसी भी चीज़ से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है।

What about you? ये था बाजीराव मस्तानी फिल्म का नगमा. ए एम तुराज नासिर फराज का लिखा हुआ ये गीत था. शैल प्रतीश और नितेश शंकर ने इसकी मौसीकी तैयार की थी और आवाज़ थी श्रेया घोषाल और मोहित चौहान की.

0: खबरों का बुलेटिन लेकर मैं सुहेल भट्ट। पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। मिशन आगमन के तहत भारत का पहला इंफरादी तौर तैयार करदा विक्रम एक नामी ऑर्बिटल रॉकेट कामयाबी के साथ मदार में दाखिल। वजीर अजम ने अमले को दी मुबारकबाद। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर को इल्म, कल्चर और तख्लीकियत का कौमी हब बनाने का दोहराया आजम। दहशत पसंदी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस भारत के लिए महज एक बयान नहीं बल्कि कार्रवाई करने का अज़्म मुसम्मम, वजीर दिफा राजनाथ सिंह। और पार्लियामेंट के मानसून इजलास से पहले हुकूमत ने कल तमाम पार्टियों की मीटिंग की तलब। अब खबरें तफसील के साथ। मिशन आगमन के तहत भारत का पहला इंफरादी तौर तैयार करदा विक्रम एक नामी ऑर्बिटल रॉकेट आज कामयाबी के साथ मदार में दाखिल हुआ है। ये रॉकेट पेलोड से लैस आज सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से दिन के 12:05 पर खला की ओर रवाना किया गया। इस संगमील को पार करते ही भारत दुनिया में प्राइवेट ऑर्बिटल लॉन्च कैपेबिलिटी की सलाहियत हासिल करने वाला तीसरा मुल्क बन गया है। इस कामयाबी पर वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस को इस हसूलियाबी पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने टेलीफोन के जरिए स्काई रूट के अमले के साथ बात करते हुए उन्हें अपने साथ मुलाकात के लिए मदु किया।
1: भारत और पूरी टीम बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी स्काई रूट के माहिरीन को मुबारकबाद दी है। वाजह रहे इस रॉकेट का नाम विक्रम एक भारत के खलाई प्रोग्राम के बानी डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर को इल्म, कल्चर, तख्लीकियत और इख्तिरायत का कौमी मरकज बनाने के सरकार के अज़्म को दोहराया है। आज SKICC श्रीनगर में चिनार बुक फेस्टिवल का इफ्तिताह करने के बाद खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि यह फेस्टिवल सिर्फ एक तकरीब नहीं बल्कि कुतुब बीनों, कलमकारों और दानिश्वरों के लिए एक तहरीक है। मनोज सिन्हा ने कहा कि यह बुक फेस्टिवल नौजवानों को रोजाना मुताला करने, जबानों को तहफ्फुज़ देने, नीज अदब को समाज में अकदार और गुनागुनियत को वकार बख्शने की तरगीब फराहम करेगा। उन्होंने नेशनल बुक ट्रस्ट और दीगर मुंतजमीन को यह फेस्टिवल मुनाकिद करने के लिए मुबारकबाद दी। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू, नेशनल बुक ट्रस्ट के चेयरमैन प्रोफेसर मिलिंद सुधाकर मराठे, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद रक्षा अंद्राबी और कई दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि दहशत पसंदी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस भारत के लिए महज एक बयान नहीं बल्कि कार्रवाई करने का एक अज़्म मुसम्मम है। नई दिल्ली में आज फोर्सेस फर्स्ट कंक्लेव से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारत दहशत पसंदों के खिलाफ न सिर्फ उनकी दहलीज पर कार्रवाई करेगा बल्कि जरूरत पड़ने पर उनकी कमीनगाहों में भी दाखिल होगा। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर का मुशाहिदा किया और ये टेक्नोलॉजी पर मबनी जंग की नुमाया मिसाल थी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों के दौरान नरेंद्र मोदी सरबराही वाली हुकूमत ने दिफाई सेक्टर को मजबूत करने के लिए बेमिसाल काम किया।
2: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
0: लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जखेनी उधमपुर में एक यात्रा बस को पेश आए हादसे के बाद सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर उधमपुर मिंगा शेरपा और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अफसरान को हिदायत दी कि वो जख्मियों को बेहतर से बेहतर तिबी सहूलियात फराहम करें। उन्होंने हादसे में जख्मी अफराद की फौरी सेहतयाबी के लिए दुआ की है। वाजह रहे आज सुबह यात्रा काफिले में शामिल एक गाड़ी को हादसा पेश आया जिसमें उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले 5 यात्री और गांधरबल से ताल्लुक रखने वाला ड्राइवर जख्मी हुआ है। सभी जख्मी अफराद को GMC उधमपुर मुंतकिल किया गया।

0: मीडियम वेव 200.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब हमारे यहाँ से उर्दू खबरें नश होंगी।
1: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। सुपहर के 3:50 हुए हैं।

ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय 4 बज चुके हैं, लीजिए समाप्त कीजिए आज का पहाड़ी प्रोग्राम।

आकाशवाणी केन्द्र श्रीनगर थी आई दा पहाड़ी प्रोग्राम कहन का मैं तुस्ता मेजबान शब्बीर अहमद शमस तुस्ती खिदमत बिच हाजिर हाँ और सारिया को अदब ताया ताजीम नाल अस्सलाम अलैकुम अर्ज करदा और उम्मीद है जी तुस सारे खैर खरीद नाल होसो। सामीन अस जान दे हैं जी तुसन को अपने इस मनपसंद प्रोग्राम की अड़ीक रही है। अस भी कोशिश करते हैं जी इस प्रोग्राम बिच तुसते मनपसंद की गलबात हो गीत हो सैफल मालूक जी कुछ भी तुसी सुनना चाहते हो वह असी पेश कर। सामीन दरअसल एक आपसी मुहब्बत दोस्ती और एक दिली लगाओ जिहड़ा पैदा हो गया तो होंदा है। दरअसल इदारा यह तुसदा इदारा है, एक आवाम का इदारा है, इस भी तुसदी गल होंदी है। बल्कि असीं कोशिश करदे हां जे सरकारी तरफों जिहड़ी स्कीम हो है जिहड़े फायदे लोकां तिकर पहुंचने वाले होन वह असीं तुसां तिकर पहुंचावां तां जे तुसीं उन्हां थीं फायदा चाहो। सरकार सुन महकमे बढ़ाए दिन, अफसर बढ़ाए दिन, जिम्मेदार बढ़ाए दिन, उसी वास्ते होने जे तुसते कम जड़े वो हल होन, तुसते मसाइल जड़े वो हल होन और तुसियां मुश्किलां दूर होन, तुसों को हर लिहाज नाल फायदा पहुंचे। तसामीन गल्लां असीं होर भी करसां तां आओ पहलियां सुनदे हां गुलाम हसन तबस्सुम दी आवाज़ बिच एक गीत।

ना आसन सच से इंसान सदा थे लंद थी या दई दिशा के इंसान से मिस इंफॉर्मेशन फैले वाली कोशिश थी के सो मामलटी पई है कि सो औलाद लुख्त जिगर रोज मच गई हो नोट हो गो वो इकबाल कोई लोस्टी जन आयला जो रस का दिनी हो चपी हो बाई क्यों आदि गायला सीन अलग से कहते हैं हंसता वस्ता हजू साइकिल जो तो पर जो कोई फिर असल बस कंटिन्यू असल लेक्टर हो चुन चुन एक चुन को वो फिर रिश्ता सो कचा गुस कहते हैं इस्लाम में जो कि अगर चुन तो नमाज से आता सा चुन से गेंदा भी सो कोई रकवे आई नहीं सच में नमाज तो फूटी अगर बस सचा के बेचिन तो मामाल टिक पसी वो चीज़ हो जो बड़ो एहतियात खास करके ऐसा हो रहा कि पति ने दूफे बरी फिलहाल बस फकोन उसकी अदा हादसा पेश गणी पर शायद पर ही एक निरल वाका बोले सस पत्न बस फकी सुन टुकड़ी हुई हादसा बोलो तो वैसे जो मामाल ही एक एक बड़ी जिम्मेदारी मामाल जी ही किस फकोन बच सो कदा कर्म मशगूल आज योकास सस भाई पाई है शुन कि मैं चुनो गुण हूँ जोक थी हूँ खास करके अदा चुन के सनुटे लहा वाकई हो जो मुझे भरपूर ख्याल छोड़ के कत कोई वही हूँ लाबल हूँ बड़ा बस फकोन उसको हमेशा भी फकास एक चीज़ फायदा गा सो टूरिज्म बड़ा बेचे बस फायदा गो साथ साथ ही वह चीज़ें नुकसान ही गाँस बड़ उस इंसान से सीखे वो जो मैं गायनों फिर पतो भी वीडियो बने सोशल मीडिया जो अपलोड तो बाकी कोई कोई चुनस पशे ना महल चुनस फके ना वे वह चीज़ें इंस्पायर में नचुनो कोई हसन जल्दी कोई भी चीज़ कापी थी तो वैसे कि भी जे चुनस डिवाइन कुछ दे ना समझ जवान तो वैसे कि पशी असन फिर बदकिस्मती वाका हूँ दू चुन वाला असल एक गे तो वापस आल ही नहीं अगर ससी लाश लें तो वह चीज़ असल गौर फिक्र जरूरत थी मामा गौर फिक्र जरूरत थी खास करके वे एरिया कौन सा वही बहाव कोई हूँ कंप्लीट किशन उस अलग दरिया के कौन सी तेज रफ्तारी ही चलो कुछ चिमफुट बदसदाग वाकई पर चिमफुट बद कोई हादसा बल हूँ लगभग लगभग शल गजे कदा हादसा आसन के सी रेड बाड़ी वे बिल्कुल न ले चली चलो अल्लाह ताला लख लख शुक्र हूँ वे एक नौजवान चुन बाल असल बसी लाश ले लाश लाश वजू ले दे सर कोई है मेडिकल फॉर्मेलिटीज़ वगैरह बाकी एडमिनिस्ट्रेशन से पूरे थे इस पत्न कोई भी लाश नहीं लगा कि नोट दही अल्लाह ताला शुक्र हूँ तमाम इलाके बड़ा खुश हाँ कि अदा चीज़ अदा कि वैसी लाश लेते थे अलबत्त गमजदा फैमिली सीन अला बुट हाँ बेग वैसे फैमिली कोई गमा जहाँ बराबर शरीक नदी समीन बस एक फिर जी एक गायक पर जो बड़ा प्रोग्राम मुफ्त हो

0: अभी आप समाप्त कर रहे थे शीना प्रोग्राम पेशकश समीना शाह। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। 5 बज चुके हैं। एक वक्फे के बाद आप सुनेंगे आज का गोजरी प्रोग्राम।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

आकाशवाणी श्रीनगर ते गोजरी प्रोग्राम सुनने वाला सजना मेहरबाना है खिदमत में थारा मेज़बान अल्ताफ निज़ामी की तरफों अस्सलाम वालेकुम सजनों, उम्मीद करूँ जो तुम खैर सुख नाल होवेगा। तो दुआ है जे रब मेहरबान तमना सदा सलामत रखे सुखी रही। तो इस तरह यू मारो दोस्ती जी है या मारी हवा जुड़िया रही हम थारे नाल जुड़िया रहा। तो तम अपनी आरा अपनी तजावीज़ मारा प्रोग्राम का हवाला संग टोर सकें। तो हमारी कोशिश होवे कि बेहतर दो बेहतर प्रोग्राम थारी खिदमत में पेश किया जा सके। किसी भी काम में डिसिप्लिन जेड़ो है ना वो बड़ी अहमियत रखे है। तो नज़म व ज़ब्त का जितना असबाब हो भी इंसान ने कोशिश करनी लोड़ी है कि वो उन्होंने समझे तो उनके ऊपर अमल भी करे। सजनों, जिंदगी छड़ी जज्बाती इरादा या वेलों का हौसला वो ना नहीं बल्कि एक बराबर हिम्मत जदोजहद ते बका की जंग हो ना है जिंदगी। एक मशहूर अतालवी फलसफी का लफ्ज़ा में कदे हम देखा वो कह के नज़्म ज़ब्त कोई सादो जो अखलाकी या नफसियाती तसव्वुर नहीं बल्कन वो ताकतवर हथियार है जो अपना ज़िंदगी का मैदान में कामयाबी ते फतह की जमानत दे है। इस बारे जब हम गल करा तो कुछ मोटी मोटी गल अंदर ध्यान होना जरूरी है। जिस तरह जे डिसिप्लिन छड़ो हौसलो ही नहीं बल्कि बका की जंग है। आम तौर पर समझा जे डिसिप्लिन छड़ो ख्वाहिश या इरादा संग जुड़े वो है। जबकि सदाकत क्या है जे डिसिप्लिन इंसान की दाखली जंगों ना है और यह लड़ाई उन ताकतों के खिलाफ है जिड़ी एक इंसान ना कमज़ोर सुस्त काहल तबेरा जिड़ी ये बना छोड़ी। बगैर डिसिप्लिन या नज़्म ज़ब्त थारी जहानत तारी सलाहियत नाले हुनर बेमकसद ते बेमानू है। गलबात को सिलसिलो जारी रखांगा। प्रोग्राम को आगाज़ कर दिया गीत के नाल मास्टर करतार चंद ते संगियां की आवाज़ में।

जी सजनों, तम प्रोग्राम का शुरू में समाज फरमा रहा था यो खूबसूरत जो गीत मास्टर करतार चंद ते उनका संगिया की आवाज़ में। सजनों, नज्म शब्द जहन पर हुक्मरानी को ना है, यानी के तमना अपना जहन को अपना दिल को गुलाम नहीं बनना, बल्कि अपना दस्तूर के नाल, अपना बनाया गया तरतीब शुदा डिसिप्लिन के नाल तमना कोई जड़ो है वो कंप्रोमाइज नहीं कर रहा। जिंदगी कदे भी ताकत ना खाली तख्त नहीं छोड़ती, जे तम अपना जेन ते जुस्सा पर किसी शहजादा की तरह हुक्मरानी नहीं करन लगा तो थारो डर खौफ ख्वाहिशात ते कमजोरियां पर जाबर हो जाएगो। इत कोई बिचलो रस्तो नहीं। दूजी गल यह है जे तम शहजादा नालों जिंदगी का तख्त पर बैठ के राज करेंगा या फिर ख्वाहिशां का कैदी बन गए गुलामी की जिंदगी कटेंगा, फैसलो अपने हाथ है। ते अगे ए थारी खिदमत मां पेश कर दें रंजीत थॉमस की आवाज़ मां या सौगात।

जी सजनो, रंजीत थॉमस की आवाज़ में तम सुन रहा था या खूबसूरत जी सौगात। तो सजनो, डिसिप्लिन असल में एक मजबूत एक इरादा को ना है। तो यो न टूटन आलो वो किलो है जो इंसान ना जिंदगी दियाँ अफरा तफरियाँ तें, बेमकसद ख्वाहिशां तें, तो बारला मुकाबला तें बचा के रखे। जब कोई इंसान डिसिप्लिन ना अपनी जिंदगी को हिस्सों बना लें तो कोई भी तूफान, कोई भी औखत, कोई भी परेशानी, तो कोई भी हादसों उसने जहनी तौर पर कमज़ोर नहीं कर सकते। डिसिप्लिन एक इंसान का जहन पर सुकून, साफ ते ताकतवर जो है वो उसने बना छोड़े। तो चुकन्नू रहनू है तो हिकमत अमली संग असल डिसिप्लिन जो है उसने फॉलो करनू है। तो सच्ची कामयाबी हासिल करने वास्ते जरूरी है जे डिसिप्लिन ना एक हमेशा वास्ते सोहनी हिकमत अमली संग अपना लियो जाए। आराम बख्श तो पुरसकून घड़ियाँ में अपना आप ना औखतों का मुकाबला वास्ते तैयार करनो लोड़िए, क्योंकि जब तूफान सिर पर आ जाए तब तैयारी जी वह नहीं हो सकती। तैयारी करते वेले हर रोज़ अपनो हिसाब लेनो लोड़िए।

अपना क्योंकि ग्रेबान में टटोलनू लोड़िए आने वाला वेला में गुजरी जी गुजरिया वेला की जी गलती है वे आने वाला वेला में ना होवे उन्होंने सबक सीखना है तो अपनी राह जी है वह साफ करनी है और फिर वे राह साफ कर गए तम कामयाबी का रास्ता पर चल सकें तो हिकमत अमली इंसान ना नाकाम होने से महफूज रखे। सज्जनों अगे थारी खिदमत में पेश कर दें अब्दुल गफूर की आवाज़ में यह सौगात।

जी सजनो, अब्दुल गफूर की आवाज़ में तमसमात फरमा रहा था एक खूबसूरत जी सौगात। तो सजनों, जो डिसिप्लिन है ये जज्बात को मोहताज बनने की लोड़ नहीं होती, बल्कि हिकमत अमली के तहत चलनो लोड़िए। क्योंकि डिसिप्लिन जज्बात या जिस्मानी थकन ना भुल गए असूलों पर अमल करने को ना है। डिसिप्लिन भी हिकमत अमली को संगी होवे, इस गलों उनको लिहाज जरूरी है। तो डिसिप्लिन तो हिकमत अमली यो वो रस्तो है जिस पर चल गया इंसान बड़ी ते बड़ी कामयाबी हासिल कर सके। ते नाकामी इंसान वास्ते तकलीफ दे होनी चाहिए, उसना उसते सीखनी चाहिए, और ता जे मुस्तकबिल माँ या मुस्तकबिल करीब माँ वे दोबारा उस ते गलती सरजद ना हुई, उन्होंने सीख के बेहतरीन राह तश्कील देनी चाहिए। हकीकी डिसिप्लिन वास्ते जरूरी है जे उसकी खिलाफ वर्जी का वाजिया नतज जड़ाई वे नाकामी ते तकलीफ बख्श हो सके। जद इंसान अपना असूलों ते पिछे हट जाए तद उस गल का मंदा असरात जड़ाई वे दिसन लग पोवी। यो ही दर्दनाक एहसास इंसान ना अगे गलतियां ते महफूज रखे। दिमागी नज़्म ज़ब्त कामयाबी वास्ते मुझ जरूरी है। तय लोकगीत पेश है इकबाल मलंगामी की आवाज़ में।

जी सजनों, इकबाल मलंगामी की आवाज़ मतम लोकगीत से मात फरमा रहा था। सजनों, नज़्म ज़ब्त को मतलब है जो ज़िंदगी का हर मैदान माँ तरतीब ते तंजीम, मतलब वेला की पाबंदी, असूलों की पासदारी ते अपना फर्ज जिम्मेदारी संग निभाणो भी इस डिसिप्लिन में शामिल है। यो एक अजो असूल है जो हमना सुस्ती काली ते थकावट नाले बेनज़मी ते बचावे, चाहे फिर तालीमी मैदान होवे, दफ्तरी काम होवी या घरेलू जिम्मेदारी, हर शोभा में डिसिप्लिन की अहमियत मनी जा सके। ऐ जे कदे हम कुदरत का निज़ाम दर सोच दुड़ावा, दियों को निगलनो ते डुबनो, मौसमा की तब्दीली ते देखो तम के दरियावा ते समुद्रा में लहरों की रवानी, सारो कुछ एक मुकर्रा वेला के निज़ाम के तहत चले। ते जे कदे फितरत इस नज़्म ज़ब्त की पाबंदी न होती तो फिर दुनिया में बेतरतीबी ते उथल पुथल मच जाती है। इसे तरह जे एक पढ़ने वालों बच्चो वेला सिर स्कूल ना जाए, अपनी पढ़ाई जारी ना रखे ते वेला की पूरी तरह कदर ना करे तो वो कामयाब नहीं बन सकते। इसे तरह एक फौजी भी फौज में डिसिप्लिन को पूरा पूरा मुजाहरो करे, ते इसे तरह एक माशरो भी उसे वेले तरक्की करे जद उसका लोग कानून अखलाक ते असूलों को एहतराम करें। तो इस करके डिसिप्लिन ना समझन इसके ऊपर अमल करने की डाढ़ी लोड़ है। ते बैत पेश कर दें मोहम्मद यूसुफ की आवाज़ में।

जी सजनो, मोहम्मद यूसुफ की आवाज़ मातम बैत से मात फरमा रहा था। तो सजनो, डिसिप्लिन ज़बरदस्ती नहीं आतो किसे माँ, बल्कि इसना अपने अंदर पैदा करनो पे। यो खुददारी नाले खुद एहतसाबी को ना है, लिहाजा हमारा वास्ते ज़रूरी हो जाए जे हम अपनी हर रोज़ की जिंदगी माँ डिसिप्लिन शामिल करा, वेला की कदर करा और अपने संग की योग्य वादो जेड़ो वो निभावा, दूजा का हक हकूक को ख्याल रखा। सजनों, डिसिप्लिन वह लोह है जिड़ी हमना अंधेरा ते कड गए मंजिल आली बखी ले चल है। लिहाजा हर फर्द ना अपने संग डिसिप्लिन ना अपनी जिंदगी को हिस्सों बना लेना चाहिए और इस चीज़ को ऐद भी करना चाहिए, ते फिर ताजे एक चंगा बेहतर निज़ाम, एक बेहतर माशरा, ते एक बेहतर अफराद की तामीर व तश्कील जड़ी है वह मुमकिन बन सके। तो सजनों, अगर सुन लिया गीत अनीसा करीम की आवाज़ में।

आप समाप्त कर रहे थे गोजरी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं वसीम फारूक। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर।

यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है, मीडियम वेव के अलावा एफएम 2 पर। 5:50 हो रहे हैं। आइए अब गोजरी खबरों का बुलेटिन सुनते हैं। गोजरी खबरों के फौरन बाद आप आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में खबरें सुनेंगे। पहले खबरें गोजरी में।

0: ऑर्बिटल लॉन्च कैपेबिलिटी की सलाहियत हासिल करने वाला तीजा मुल्क बन गया है। इस कामयाबी पर नायब सदर सी पी राधा कृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, लोकसभा का स्पीकर ओम बिरला, वजीर दाखिला अमित शाह, साइंस और टेक्नोलॉजी का वजीर वजीर मुमलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्काई रूट एरोस्पेस ना मुबारकबाद दी है। वजीर आजम ने टेलीफोन के जरिए स्काई रूट का अमला ना गल करता हुआ उन अपनी मुलाकात वास्ते सदे हुए है।
1: जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी, और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: साइंस और टेक्नोलॉजी का मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी स्काई रूट का माहरीन ने मुबारकबाद दी है। याद रहे इस रॉकेट को नाम विक्रम 1 भारत का फ्लाई प्रोग्राम का बानी डॉक्टर विक्रम साराभाई का नाम रखा गया है। इसी दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने स्काई रूट एरोस्पेस अमला ना विक्रम 1 नामी ऑर्बिटल रॉकेट ना कामयाबी के नाल मदार में दाखिल कर मुबारकबाद दी है। अपना एक सोशल मीडिया पैगाम में एलजी ने कहो जे यो मुल्क वास्ते फखर को वेलो है, ते यह कामयाबी वजीर आजम नरेंद्र मोदी का विजन की इक्कासी करे। उन्होंने उम्मीद जाहिर की जे आज की इस कामयाबी का जरिया नौजवानों ना साइंस और इख्तराकारी का शोभा में अपनो किरदार अदा करने में तरगीब देगू। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर ना इलम कल्चर तखलीक ते इख्तरा को कौमी मरकज बनाने का सरकार का अजम ना दुराया है। आज SKICC श्रीनगर में चनार बुक फेस्टिवल को इफ्ताह करने के बाद खिताब करता हुआ उन्होंने कहो जे यो फेस्टिवल सिर्फ एक तकरीब नहीं बल्कि पढ़ने वाला कलमकारा और दानश्वरों वास्ते एक तहरीक है। मनोज सिन्हा ने कहो जे यो बुक फेस्टिवल नौजवानों ना रोजाना मुतालो करन, जबाना ना तहफ़ देन, अदब ना समाज में कदर वकार फराम करेगो। उन्होंने नेशनल बुक ट्रस्ट ते दूजा मुंतजमीना ना यो फेस्टिवल मनकद करान वास्ते मुबारकबाद दी है।
2: चिनार बुक फेस्टिवल सिर्फ किताबों की प्रदर्शनी तक सीमित नहीं है, बल्कि मैं कह सकता हूँ कि आज विचारों, विमर्शों और ज्ञान संवाद का एक सशक्त मंच केवल जम्मू कश्मीर में नहीं राष्ट्रीय स्तर पर बन गया है। अब इसकी पहचान केवल स्टॉल्स, किताबों के लॉन्च तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नए विचारों को जन्म देने, संवाद को प्रोत्साहित करने और हमारे विद्यार्थी और युवाओं को सशक्त बनाने का माध्यम भी बनता जा रहा है। मैं मानता हूं कि भाषा एक सेहत की तरह होती है। जब कोई बच्चा अपनी मातृभाषा में पढ़ता है तब वो वास्तव में अपनी जड़ों से जुड़ता है। जब वही बच्चा दूसरी भाषा सीखता है और पढ़ता है तब उसके सामने दुनिया के दरवाजे खुलते हैं।
0: इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू, नेशनल बुक ट्रस्ट का चेयरमैन प्रोफेसर मिलिंद सदाकर मराठे, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ते कई दूजी अहम शख्सियात भी मौजूद थी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है जे दहशत पसंदी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस भारत वास्ते महज एक बयान नहीं बल्कि कार्रवाई करने को एक पुख्तो इरादो है। नवी दिल्ली में आज फोर्सेस फर्स्ट कनक्लेव नाल खिताब करता हुआ उन्होंने भारत दहशत पसंदों के खिलाफ न सिर्फ उनका बेड़ावर कार्रवाई करेगा बल्कि जरूरत पड़ने पर उनकी कमीन गया में भी दाखिल वेगो। उन्होंने कहो जे पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर को मुशाहदो कियो ते यह टेक्नोलॉजी पर मबनी जंग की नुमाया मिसाल थी। उन्होंने कहो जे पिछला 12 साल के दौरान नरेंद्र मोदी की सरबराही वाली हुकूमत ने दफाई सेक्टर ना मजबूत करने वास्ते बेमिसाल काम कियो है।
3: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
0: लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जखेनी उधमपुर

0: एक यात्रा गड्डी ने पेश आया हादसा के बाद सूरत हाल को जायजो लियो। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर उधमपुर मंगा शेरपा ते गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का अफसर ने हदायत दी जे वे जख्मियों ने बेहतर तो बेहतर तिबी सहूलियात फराहम करें। उन्होंने हादसा में जख्मी बंदा की फौरी सेहतयाबी की दुआ की है। याद रहे जे आज सवेरे यात्रा काफिला में शामिल एक गड्डी ने हादसों पेश आयो जिसमें उत्तर प्रदेश का बसनीक पांच यात्री ते गांधरबल को बसनीक ड्राइवर जख्मी हुए। तमाम जख्मी बंदा ना जीएमसी उधमपुर टोर गयो है जित वे जेरे इलाज हैं। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा दुआ रवायती रस्ता पहलगाम और बालताल तू खुशसलूबी नाल जारी है। आज शाम 5 बजे तक 15,419 यात्रियों ने पवित्र गुफा का दर्शन किया जबकि मजमूई तौर 3,75,000 तो ज्यादा यात्रियों ने गुफा में हाजिरी दी। इंगा 3,632 यात्रियों पर मुश्तमिल 17वां काफलो आज वादी पहुंच गयो। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पावर ग्रिड का साबक चेयरमैन ते मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह का फौत होने पर दुख ते सदमा को जाहिर कियो है। अपना ताजीती पैगाम में मनोज सिन्हा ने कहो जे आ जहानी ने मुल्क का बिजली निजाम ना मुस्तहकम करन ते बुनियादी ढांचा ना बादो देन में अहम रोल अदा कियो है। उन्होंने सोगवार कुंभा के नाल ताजियत को जाहिर कियो है। वजीर तालीम सकीना ईतू ने कहो है जे तालीमी अदारों वास्ते जारी गरमाई छुट्टियों में वादा को हतमी फैसलो वादी में मौसमी हालात को जायजो लेन के बाद ही कियो जाएगो। उन्होंने कहो जे तालिब इलमों की भलाई बेहतरी को फैसलो लियो जाएगो। दमाल हाजीपुरा में आज मीडिया नुमाइंदा के नाल गल करता हुआ उन्होंने कहो जे इंतजामिया मौसमी हालात है दूजा पहलुओं पर नजर रखा हुआ है।
1: कश्मीर का भी मौसम बिल्कुल चेंज हो चुका है। इतनी गर्मी हम पहले नहीं देखते थे लेकिन कल से बहुत ज्यादा गर्मी है। अभी तो फिलहाल कल तक तो फिलहाल स्कूल बंद है तो अब हम फैसला करेंगे इंशाल्लाह छुट्टी के लिए आगे बढ़ानी है क्या भी डिसीजन लेना है वो डिसीजन लिया जाएगा जिससे हमारे बच्चे सेफ रहे।
0: इसी दौरान मौसूफा ने डी के मार्ग इलाका में किसानों वास्ते MIDH स्कीम के तहत मुनक्दा एक बेदारी कैंप को इफ्ता कियो। उन्होंने उत नवी हॉर्टिकल्चर इमारत को नींव बटो रखियो ते एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को भी इफ्ता कियो। मरकजी हुकूमत ने पार्लियामेंट का आने वाला मानसून अजलास तो पहला 19 जुलाई उतारना सियासी पार्टियों का फ्लोर लीडर्स की मीटिंग बुलाई है। मीटिंग के दौरान हुकूमत पार्लियामेंट का दुआ ऐवानों की कार्रवाई बेहतर तौर चलान वास्ते सियासी पार्टियों दुतावन तलब करेगी। याद रहे पार्लियामेंट को मानसून अजलास चलता महीने की 20 तारीख तो शुरू हो गए 13 अगस्त तक मुकेगो। तो इसके नाल गोजरी खबरों को यो बुलेटिन मुक गयो। दो इजाजत, रब रखो।

0: मुझे रेनू को।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद की निजी कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस ने किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में निजी क्षेत्र के पहले कक्षीय प्रक्षेपण यान विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण पर स्काई रूट एयरोस्पेस को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि से भारत की अंतरिक्ष यात्रा में नया अध्याय जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि यह निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
2: भारत और पूरी टीम बहुत बहुत बधाई।

0: जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस उपलब्धि पर स्काईरूट एयरोस्पेस को बधाई दी है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई और 10 घायल हो गए। यह हादसा रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुआ। सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई बल और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने के साथ बचाव अभियान में जुट गई। हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संसद का मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के जुमागाछा स्थित सीमा सुरक्षा बल शिविर का दौरा किया और बीएसएफ कर्मियों से बातचीत की। श्री शाह ने पौधा भी लगाया और प्रहरी सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने, जन्म और मृत्यु पंजीकरण तथा कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा पर भी चर्चा हुई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल मंत्री ने कहा कि यह रेलगाड़ी सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी। श्री वैष्णव ने बताया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा की गई। सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का पुरस्कार संजीव श्रीवास्तव को दिया जाएगा। गैर फीचर फिल्म श्रेणी में शिवपाल सिंह कांग को परात 41 डिग्री चया मगावर के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार मिलेगा। बेस्ट डायरेक्शन का पुरस्कार आनंद एल रॉय को स्टैचू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए दिया जाएगा। और खेलों में पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। दूसरे गेम में चेन यू फी की चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार देर रात 2:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी श्रीनगर शब्द 5 मिनट समय पेश बाय खतरे अजुक प्रोग्राम।

فهذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله.

چھو حالی دل ہر سات توہی زیری نظر سون.

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सब 6 करोड़ लोग 5 लक्षण तमाम मुफ्त इलाज हकदार वनिकाम 2 करोड़ इलाज सपद यम सरीब घरन इलाज पे सपदन वाली खर्च किन 2 लक्षण करोड़ हज बचत सपद अस करो आयुष्मान ऐप डाउनलोड तो बनयो आयुष्मान कार्ड जानकारी बापत करो 1-4-5-5-5 फोन नंबर पे रबित कई
1: बदलो बदलो आदत बदलो
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या
1: बदलो बदलो आदत बदलो अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें RBI कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए
3: चिनार की छांव तले किताबों का एक खूबसूरत जहां आपका इंतजार कर रहा है आइए तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल में जहां मिलेंगी इंग्लिश हिंदी उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के 200 से अधिक बुक स्टॉल्स साथ ही क्रिएटिव वर्कशॉप्स बच्चों के लिए लिटरेरी सेशंस डिजिटल रीडिंग कॉर्नर और कल्चरल परफॉर्मेंसेस का लुत्फ

0: आइए 18 से 26 जुलाई SKICC श्रीनगर चिनार बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद NCPUL एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर। टुगेदर वी रीड, टुगेदर वी लीड।
1: बिल्कुल इब्दास मज डॉक्टर साहब यम जन फरमान कि ये गाड़ फार्म सानि खा सठा फायद बख्श है तो मगर कत रोज अडवानी है तो यमो दी क्या माहिरान मशवर तरह प्रोग्राम किस हिस्स में पेश है।
2: अगर रेसवे बनाना सत खजर जेछर सतत फुट यानि कि तुत्ई उमे जी रेसवे अगर बनाओ चौदह बाई सतत कलकुलेट सू कोत सू नूत क्यों सह हार्डली गरल या डोड मरल गई सड़क वड़क हो थो जो मरल या त्रे मरल थो सड़क वड़क हे अख रेसवे बना पियर तुम बना चौदह फुट खजर जेचर थोन सतत फुट यानि कि चौदह बाई सतत बनान जी रेसवे अकिस रेसवे मन त्रेन त्रे सा गाड़ अगर पांच ग्राम आ दह ग्राम तुम्हें गरियस तथा अगर खर्च बेच फीड पे।

0: की मदद किससे मांगू?
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
2: 9018074333।
3: 9018074333।
4: आज आई मेन मेडिकल रिपोर्ट तो मैंने शरीर से विटामिन ई तो विटामिन बी कमी द्रामस।
5: तो क्या शक ने फोर्टिफाइड दूध तो फोर्टिफाइड तेलों का इस्तेमाल करान?
4: मगर ये फोर्टिफाइड आसान क्या छो?
5: फोर्टिफाइड दूध तो तेल छो बराबर मकदार त्रावने, विटामिन ए छो सानी इम्यूनिटी बढ़ावान तो विटामिन डी छो अड़जी मजबूत करान, दूध तो तेल छो बराबर मकदार।
4: मगर यह है सठा द्रोग?
5: हाँ ना ना सुई कमत मज मुशक ते सुई छो बेहतर पोषण दिवान।
6: पनुन तो पन्ने आयाली जिंदगी बनाई सेहत मंद, प्लस एफक निशान वोल फोर्टिफाइड फूड पानाइयो। बाजरस में दस्तियाब फोर्टिफाइड वसाइलन है जानकारी खतर करियो www.ffrc.fssai.gov.in/
7: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
8: चिनार की छांव तले किताबों का एक खूबसूरत जहां आपका इंतजार कर रहा है, आइए तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल में, जहां मिलेंगी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के 200 से अधिक बुक स्टॉल्स, साथ ही क्रिएटिव वर्कशॉप्स, बच्चों के लिए लिटरेरी सेशंस, डिजिटल रीडिंग कॉर्नर और कल्चरल परफॉर्मेंसेस का लुत्फ उठाइए। 18 से 26 जुलाई SKICC श्रीनगर। चिनार बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद NCPUL एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर। टुगेदर वी रीड, टुगेदर वी लीड।
9: शेरबीन अब आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर, FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज़ के अलावा आकाशवाणी कुप्पाड़ और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सामिन, जम्मू कश्मीर में इन दिनों शिद्दत की गर्मी जारी है। गर्मी के बाइस जहां नदी नालों में पानी की कमी है, वहीं खेतों के लिए सिंचाई के साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों में पीने के पानी की शदीद किल्लत पाई जा रही है। बाज इलाकों में धान की पनीरी के सूख जाने का भी अंदेशा है। इधर इन दिनों वादी के लोग भी गर्मी से राहत पाने की उम्मीद में मुख्तलिफ सियाहती मकामात का रुख कर रहे हैं। वादी के बेशतर लोग इन दिनों गुरेज, मड़वा, वड़वन, मत्सल, केरन जैसे दूर दराज इलाकों का रुख करके गर्मी से राहत पाने की कोशिश में हैं। इधर जम्मू खत्ते में मॉनसून के बावजूद शिद्दत की गर्मी पाई जा रही है और यहां पानी के साथ साथ बिजली की फराहमी असरअंदाज हो रही है। जम्मू में दिन के दौरान बेशतर बाजार खाली देखे जा रहे हैं, जबकि आम लोग भी दिन के दौरान घरों में बैठने को ही तरजीह दे रहे हैं। अलबत्ता बड़े बुजुर्गों और बच्चों के लिए बिना बिजली के घरों में ठहरना इंतहाई तकलीफ दे रहता है। एक रिपोर्ट जावेद मेहराब से।
10: जम्मू में बरसात के मौसम में गर्मी और उमस बढ़ने के साथ यहाँ बिजली का लोड भी बढ़ रहा है। बिजली गुल होने पर जहाँ लोगों के खूब पसीने छूट रहे हैं, वहीं लोगों को सख्त तकलीफ का सामना भी है। जानकारी के मुताबिक मौजूदा पीक लोड 1700 मेगावाट के आसपास चल रहा है। हालांकि पहले मौसमी बदलाव की वजह से लोड 1550 मेगावाट तक पहुंच गया था, अब गर्मी तेज उमस बढ़ने से 150 मेगावाट लोड बढ़ गया है। जानकारी के मुताबिक कई इलाकों में ट्रांसफार्मर फिर से जलने शुरू हो गए हैं। बिजली महकमे के 15 वर्कशॉप में हर रोज औसतन 20 से ज्यादा ट्रांसफार्मर मरम्मत के लिए आ रहे हैं। इन वर्कशॉप में दिन रात काम चल रहा है। बिजली कॉरपोरेशन के मुताबिक ट्रांसफार्मर खराब होने की बुनियादी वजह लोड सीलन और बिजली गिरना होता है। शहर और मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद होने से कमरों में रहना मुश्किल होता है, क्योंकि उमस 100 के करीब होती है और बुजुर्गों, नन्हे बच्चों के लिए सख्त गर्मी का मुकाबला करने की हिम्मत कम होती है। कई इलाकों में रात को बिजली बंद होने पर लोगों को छतों या घरों से बाहर गलियों में बिजली वापस आने का इंतजार भी करते देखा जा सकता है। दिन में 2 से 3 घंटे रोजाना कट लगता है। बिजली की इस कमी से पानी की कमी भी शहर में हर इलाके से आ रही है। यहाँ शहर में 24 घंटे में एक बार 30 से 45 मिनट तक ही पानी की सप्लाई रहती है। इसका भी कोई वक्त तय नहीं है और इस दौरान कई इलाकों में 2 से 3 दिन के बाद पानी की सप्लाई आती है। कई इलाकों में टैंकर सर्विस भी चलाई जा रही है और कई निजी टैंकर सर्विस पर डिपेंडेंट हैं और हफ्तों में हजारों रुपए खर्च कर पानी की कमी को पूरा कर रहे हैं। वहीं बिजली विभाग के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 80 प्लॉटों में 2200 से ज्यादा मीटर लगाए गए। इस वजह से भी लोड बढ़ गया।

0: गया है। महकमे के मुताबिक जहां खराब ट्रांसफार्मर्स को 4 घंटे में ठीक किया जाता था, अब ट्रांसफार्मर 8 घंटे में बनकर तैयार होता है। इस दौरान बिजली की कटौती और पानी की कमी को लेकर जानीपुर, लकड़ मंडी, सुंजवा और कई इलाकों में बिजली की कटौती और पानी की कमी को लेकर परेशान खवातीन और बच्चों ने सड़क पर महकमा बिजली और जल विभाग के खिलाफ एहतजाज भी किया। एहतजाज के दौरान ट्रांसपोर्ट भी ठप रहा। एहतजाज कर रहे लोगों का कहना था कि सख्त गर्मी और उमस में बिजली और पानी की कटौती रोजमर्रा की जिंदगी और कामकाज को असरअंदाज कर रही है। इस दौरान महकमे की तरफ से दिए गए भरोसे के बाद एहतजाज खत्म हुआ।
1: ये थे जम्मू से जावेद मेहराब। इस दौरान वादी में शिद्दत की गर्मी के बायस वालिदैन की तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा है कि स्कूलों के लिए गर्माई तातीलात में तौसी की जाए। वालिदैन के इस मुतालबे के रद्दमन में वजीर तालीम सकीना इत्तू ने कहा कि वादी में जारी शदीद गर्मी की लहर के पेश नजर स्कूलों की गर्मियों की तातीलात में तौसी के बारे में जल्द फैसला लिया जाएगा।
2: गर्मी तो बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप कहते हैं कि कश्मीर का भी मौसम अब बिल्कुल चेंज हो चुका है। इतनी गर्मी हम पहले नहीं देखते थे, लेकिन आज बहुत गर्मी है, कल से बहुत ज्यादा गर्मी है। अभी तो फिलहाल कल के लिए, कल तक तो फिलहाल स्कूल बंद है, तो अब हम फैसला करेंगे इंशाल्लाह छुट्टी के लिए आगे बढ़ानी है, क्या भी डिसीजन लेना है वो डिसीजन लिया जाएगा, जिससे हमारे बच्चे सेफ रहे, क्योंकि पढ़ाई से ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों।
1: वजीर तालीम तातीलात में इजाफे के हवाले से अपना रद्दअमल दे रही थी। सभी जम्मू कश्मीर में अगले चंद रोज के लिए मौसम में तब्दीली के आसार नमूदार हो चुके हैं। महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में 19 से 23 जुलाई तक शदीद बारिशों की पेशगोई करते हुए फ्लश फ्लड, लैंडस्लाइड्स और नशीबी इलाकों में पानी जमा होने का अंदेशा जाहिर किया है। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर बराए श्रीनगर डॉ मुख्तार अहमद के मुताबिक आज रात से चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि कल बाद दोपहर से 23 जुलाई तक बेशतर इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश और गरज चमक मुतवक्क है। अलबत्ता जम्मू, कठुआ, सांबा, राजौरी, डोडा, रामबन और किश्तवाड़ में कहीं कहीं शदीद और कहीं इंतहाई शदीद बारिश हो सकती है। रियासी और उधमपुर अजला में बाज मकामात पर मूसलाधार बारिश होने का भी इम्कान जाहिर किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि खराब मौसम के दौरान सैलाबी रेलों, लैंडस्लाइडिंग और मिट्टी के तूदे गिराने के साथ साथ दरियाओं और नदी नालों में पानी की सतह में इजाफा होने का इम्कान है।
3: बिल्कुल हॉट एंड ह्यूमिड वेदर है, खासकर पूरे वैली के अंदर और इसी तरह जम्मू डिवीजन के भी कुछ एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर काफी शिद्दत की गर्मी चल रही है। तो खासकर आज लेट नाइट और कल सुबह एक हैवी स्पेल के चांस है, खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर, और मॉर्निंग में कुछ एक डिस्ट्रिक्ट साउथ कश्मीर के अंदर भी जो है हल्की बारिशों के चांसेस हैं, और खासकर कल दोपहर के बाद यहाँ वैली के अंदर भी जो है बारिशों का सिलसिला शुरू होगा और हैवी बारिशों के चांसेस हैं, खासकर कल दोपहर के बाद कुछ एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और इसी तरह फिर कल लेट नाइट, परसों सुबह लेट नाइट और मॉर्निंग आवर्स में जो है ये एक्टिविटी रहने के चांस हैं टिल 23 जुलाई तक, और इस बीच हैवी बारिशों के भी चांसेस हैं यहाँ वैली के अंदर, जम्मू डिवीजन के अंदर आइसोलेटेड कुछ स्कैटर्ड हैवी टू वेरी हैवी, कुछ एक जगहों पर थोड़ा एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल के भी चांस हैं, मोर देन 200 मिलीमीटर ऑफ रेन 24 घंटों में, तो खासकर रियासी और डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के अंदर। तो बारिशों का जो मेन इम्पैक्ट है वो जम्मू डिवीजन के रहेगा और यहाँ वैली के अंदर भी जो है थोड़ा मॉडरेट टू हैवी शावर्स के चांसेस हैं, और डे टाइम में मौसम थोड़ा क्लाउडी बना रहेगा, बाद दोपहर खासकर लेट आफ्टरनून इवनिंग आवर्स में भी जो है ब्रीफ स्पेल ऑफ रेन, थंडर शावर या कुछ एक जगहों पे इंटेंस शावर्स के चांसेस हैं। ओवरऑल फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड, मडस्लाइड की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है, और लो लाइंग एरियाज के अंदर थोड़ा वाटर लॉगिंग कंडीशन, माइनर फ्लडिंग की भी पॉसिबिलिटी है, और उसके साथ साथ वाटर लेवल जो है काफी ज्यादा राइज होगा नदी नालों के अंदर, तो बिल्कुल एहतियात करने की जरूरत है टिल 23 जुलाई फॉरनून तक।
4: अब जो इस तरह का मौसम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, क्या कश्मीर वैली में इससे गर्मी से कुछ राहत मिलेगी?
3: गर्मी से बिल्कुल राहत मिलने के पूरे इम्कान है, खासकर कल से, कल भी खासकर आफ्टरनून के बाद बारिशों का एक्टिविटी शुरू होगा, मॉर्निंग आवर्स में भी थोड़ी सी बारिशों के चांस हैं खासकर साउथ कश्मीर एंड एडजॉइनिंग एरियाज के अंदर, तो गर्मी में काफी कमी देखी जा सकती है, और उसके साथ थोड़ा वाटर लॉगिंग कंडीशन, माइनर फ्लडिंग के भी चांस हैं खासकर लो लाइंग एरियाज के अंदर।
4: अभी जो आप लैंड स्लाइडिंग, मड स्लाइडिंग की बातें कर रहे हैं, ये किन किन डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा इसका इम्कान है, कहाँ ज्यादा एहतियात की जरूरत है?
3: बिल्कुल जम्मू के खासकर पीर पंचाल रेंज और पूरा जो चिनाब वैली है, और उसके साथ साथ यहाँ वैली के अंदर भी जो पहाड़ी इलाके हैं खासकर साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर या नॉर्थ कश्मीर के, तो हर जगह लैंड स्लाइड, मड स्लाइड के चांसेस हैं, और जम्मू डिवीजन में काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है फ्लैश फ्लड या इसी तरह क्लाउड बर्स्ट या क्लाउड बर्स्ट लाइक इवेंट, और टोरेंशियल रेन जो तेज बारिशें होती है बिल्कुल शॉर्ट पीरियड में, इस टाइप के भी बारिशों के भी चांसेस हैं खासकर जम्मू रीजन और अजमेर एरिया के अंदर।
4: क्योंकि अभी सयाद का सीजन है, लोग ज्यादा गुरेज, मड़वा, वड़वन, मत्सल, इसी तरह दूसरे जो

0: पहाड़ी एरियाज हैं वहाँ का रुख कर रहे हैं, उनके लिए किस तरह की एडवाइजरी होगी?
1: बिल्कुल, अभी फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड मौसम जो है बिल्कुल खराब है, और एहतियात करें, अननेसेसरी ट्रेवल ना करें, और पहाड़ी इलाकों के अंदर खासकर, और उसके साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन का एडवाइजरी है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट का एडवाइजरी है, और जो वेदर फोकस्ट और वार्निंग्स है उसको जो है पूरी तरह जो है फॉलो करें।
0: सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस डिस्ट्रिक्ट में आप देख रहे हैं?
1: जम्मू डिवीजन के खासकर पीर पंजाल रेंज, खासकर रियासी, राजौरी और साथ साथ में जो उधमपुर का जो एरिया है, और इसी तरह जम्मू के खासकर डोडा, किश्तवाड़, रामबन, इन जगहों पे भी जो है नेक्स्ट लेवल के, मतलब उसके बाद जो है सबसे ज्यादा खतरा इन डिस्ट्रिक्ट में है।
2: कल से 23 सितंबर तक मौसम में बदलाव, कहीं कहीं शदीद और कहीं इंतहाई शदीद बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर बराए श्रीनगर डॉक्टर मुख्तार अहमद का इजहार ख्याल। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने स्काई रूट एरोस्पेस के पहले कामयाब खलाई मिशन पर मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगाम में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस कामयाबी को मुल्क के लिए एक तारीखी और काबिल फख्र लम्हा करार दिया है। अब एक और मौजू, स्पीकर अब्दुलरहीम रात ने आज बड़गाम के पकरपुरा इलाके का दौरा करके हालिया आतिशजदगी से मुतासर खानदानों से मुलाकात की और उनके साथ इजहार हमदर्दी की। इस मौके पर स्पीकर ने जिला इंतजामिया को हिदायत दी कि तबाहशुदा मकानात और इमलाक का फौरी और जामे सर्वे मुकम्मल किया जाए ताकि मुतासरीन को बरवक्त इमदाद और मुआवजा दिया जा सके। उन्होंने बेघर खानदानों के लिए आरजी रिहायश स्कीमें, मुफ्त राशन और दीगर इमदादी सामान फौरी तौर फराहम करने का भी मशवरा दिया है। शेरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा।
3: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
4: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट दिल से बना।
5: चिनार की छांव तले किताबों का एक खूबसूरत जहां आपका इंतजार कर रहा है। आइए तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल में, जहां मिलेंगी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के 200 से अधिक बुक स्टॉल्स, साथ ही क्रिएटिव वर्कशॉप्स, बच्चों के लिए लिटरेरी सेशंस, डिजिटल रीडिंग कॉर्नर और कल्चरल परफॉर्मेंसेस का लुत्फ उठाइए। 18 से 26 जुलाई SKICC श्रीनगर। चिनार बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद NCPUL एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर। टुगेदर वी रीड, टुगेदर वी लीड।
2: शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। सामीन, SKICC श्रीनगर में आज चिनार बुक फेस्टिवल का बाजाब्ता तौर आगाज हुआ और इस सिलसिले में मुनक़दा तकरीब की सदारत जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की। चिनार बुक फेस्टिवल का इस साल तीसरा शुमार आया जिसमें मुल्क भर के पब्लिशर्स हिस्सा ले रहे हैं और यहां मुख्तलिफ मौजूआत पर लिखी गई किताबों के 200 के करीब स्टॉल कायम किए गए हैं। LG मनोज सिन्हा ने फेस्टिवल का आगाज करने के बाद हाजरीन से खिताब करते हुए नेशनल बुक ट्रस्ट की काविशों को सराहा जो वो मुख्तलिफ नुमाइशों के तहत कुतुबीनी के फरोग के लिए कर रहे हैं। उन्होंने किताबों की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि किताबें इंसान के बेहतरीन दोस्त हैं और इंसानी तारीख को महफूज करने, इल्म अदब साइंस के साथ साथ दीगर तमाम शोबों में हो रहे या होने वाले काम को किताबों की शक्ल में ही आइंदा नस्लों के लिए महफूज किया गया है या किया जा सकता है और यह अमल जारी रहेगा। मुकम्मल रिपोर्ट इमरान नायकू से।
6: SKICC श्रीनगर में आज तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल का शानदार आगाज हुआ जिसका इफ्तिताह जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि चिनार बुक फेस्टिवल महज एक अदबी तकरीब नहीं बल्कि कारीन, मुसन्निफीन और मुफक्करीन की एक मजबूत बरादरी तश्कील देने की तहरीक है जिसका मकसद जम्मू कश्मीर को इल्म, अदब, सकाफत और तख्लीकी सलाहियतों का कौमी मरकज बनाना है। अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि किताबें इंसान को सोचने, सवाल करने, अपनी राय पर नजरसानी करने और बेहतर इंसान बनने की तरगीब देती है। उन्होंने कहा कि कलम और तहरीर की ताकत का कोई न्यामुल बदल नहीं और जब तहरीर के साथ तख्लीक शामिल हो जाए तो वो मुआशरे की मुस्तकिल कुव्वत बन जाती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि मुख्तसर अरसे में चिनार बुक फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में एक मजबूत फिक्री तहरीक की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अब इसकी शनाख्त सिर्फ किताब

0: को लेकर अपना एहतजाज दर्ज किया और कुछ वक्त के लिए सड़क पर ट्रैफिक नकल व हमल रोक दी। मकामी लोग महकमा जल शक्ति से काफी नाला हैं और इल्जाम आयद कर रहे हैं कि वो महकमा 10,000 के करीब नफूस को पीने का पानी जरूरत के मुताबिक फराहम करने में नाकाम है। इस हवाले से एक मकामी बाशिंदे ने हमारे नुमाइंदे के साथ बात की।
1: सर, मसला ये था, हमारी जो वाटर सप्लाई स्कीम है वो 2018 में अप्रूव हुई, सर उसके बाद 2021 में उसकी इनॉग्रेशन हुई। 18 से लेके आज 8-9 साल हुए, 26 चल रहा था, आज तक वो फंक्शनल नहीं हुई। तो लोग तरस रहे पानी के लिए, आज देखो इतनी गर्मी है और जो नाला है, नाले कैमल, उसकी ड्रेजिंग हुई, जो हमारे कुएं शुए किसी को निकलता है घर में, मतलब वेल का पानी, वो भी खत्म हो गया। अब लोग मजबूर हो गए सड़कों पर आने के लिए। हमारी रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से, और लोग भी मिन्नतें कर रहे हैं, बहुत बार हमने प्रोटेस्ट भी किया, हमारी आवाज नहीं जा रही कहीं। हमारा MLA साहब मतलब तब ही नजर आता जब किसी की डेथ होती है, बस उन मौकों पर वो नजर आते हैं, जो डेवलपमेंट काम है उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। ग्राउंड लेवल पे लोग बहुत परेशान है। सरकार की तरफ से वो डी साहब, वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PHE, वो वहां नहीं था, उसने कुछ बंदे वहां भेजे, JE साहब भेजा और पता नहीं और कोई सुपरवाइजर साहब आया, उन्होंने बोला कि 15-20 दिन के अंदर अंदर हम काम शुरू करेंगे, उसकी टेंडरिंग हुई, अब हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है। मगर जो मतलब ठेकेदार ने पहले वो पाइप डाली थी, वो रोड सारा कुछ उसने खस्त किया, चलो अब रोड जो हुआ वो हुआ, पानी चलेगा, पानी नहीं चलता। उन्होंने बोला कि हम टैंकर भेजेंगे, लेकिन ये गुशी AB तकरीबन 10,000 आबादी है, तो 1-2 टैंकर क्या करेंगे वहाँ। तो उन्होंने बोला कि अब 10-15 दिन के अंदर अंदर हम काम शुरू करेंगे, एश्योरेंस दिया। तो हमने भी उनको बोला कि अगर फिर भी नहीं हुआ तो फिर हम मजबूर है।
0: गोशी विलगाम कुपवाड़ा के सारिफिन पानी को लेकर परेशान। अब एक और मौसम। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम जोन पटन के जेर एहतमाम पटन में एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें नौकरी से सबकदोश हुए असाजा को उनकी गिरा कदर खिदमात के एतराफ में खराज तहसीन पेश किया गया, जबकि नीट 2026 में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा समेत नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को भी एजाजात से नवाजा गया। तकरीब की सदारत जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के चेयरमैन शौकत अली बेग ने की, जबकि रुकन असम्बली पट्टन रियाज अहमद बेदार मेहमान खसूसी और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पट्टन के प्रिंसिपल मेहमान जी वकार के तौर तकरीब में शामिल थे। इस मौके पर शौकत अली बेग ने कहा कि असाजा माशरे की तामीर तरक्की में बुनियादी किरदार अदा करते रहे हैं, जबकि रिटायर्ड असाजा की खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने कामयाब तलबा को भी मुबारकबाद दी और बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद जाहिर की। इस मौके पर मेंबर असेंबली रियाज अहमद बेदार ने टीचर्स फोरम के इस तरह के इकदाम की सराहना की। तकरीब के दौरान रिटायर्ड असाजा को यादगारी तहाइफ और असनाद, जबकि नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को असनाद और इनामात से नवाजा गया। सबिन दोदरामा गांधरबल के मारूफ समाजी कारकुन मोहम्मद शफी लोन आज इंतकाल कर गए हैं। उनकी वफात पर कई अंजुमनों ने रंज का इजहार किया है। सबिन बाणीपुरा गुरेज के दरियाए किशनगंगा में बह जाने वाले 10 साल बच्चे की लाश 12 रोज बाद बरामद की गई है। हुकाम के मुताबिक बाबर बशीर साकिन तुलेल 6 जुलाई को तुलेल के शेखपुरा इलाके में नहाते हुए दरियाए किशनगंगा के तेज बहाव की जद में आकर लापता हुए थे। हुकाम ने बताया कि आज दोपहर कंजनवल डैम के करीब बच्चे की लाश बरामद हुई और उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। अब एक और मौजूद। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती कौंसिल कारगिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर मोहम्मद जाफर आखून को पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों और नज्म व जब्त की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में पार्टी की बुनियादी रुकनियत से 6 बरस के लिए खारिज कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुताबिक यह फैसला पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर की हिदायत पर लिया गया। इतलात के मुताबिक कारगिल में लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती कौंसिल के इंतखाबात के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान मुबैन इकदार की बारी बारी तकसीम के माहदे पर इख्तलाफात के बायस दोनों जमातों के तालुकात में कशीदगी पैदा हुई, जिसके बाद ये कार्रवाई अमल में लाई गई। इसके साथ ही शहरबीन के आज के मौजूद मुकम्मल हुआ। चाहते हैं अपने मेजबान और शहरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर। शहरबीन की निगरान समीना शाह को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।
2: शहरबीन आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए।
3: आप बिजनेस की तरक्की को लेकर हैं फिक्रमंद? अरे रेडियो पे दे इश्तिहार और बढ़ाएं अपना कारोबार। अब फिक्र की क्या बात जब है कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का साथ। जी हाँ, अपने कारोबार की उड़ान को दीजिए एक नई पहचान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، فون نمبر 9419000025۔
4: مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگز، جی ہاں، مون واٹر ٹنکیاں بنانے والے اب لائے ہیں مضبوط

0: मजबूत पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स, बस नाम ही काफी है मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स।
1: घर का AC हो या गीजर, वोल्टेज का हीरो सिर्फ एक BS वॉइस स्टेबलाइजर्स, पावर फ्लक्चुएशन सॉर्टेड, लॉन्ग लाइफ फॉर योर अप्लायंसेस गारंटीड। BS वॉइस, दैट्स बेस्ट सर्विस। कॉल नाउ 9419001960।
2: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
3: आज आई मैंने मेडिकल रिपोर्ट तो मैंने शरीर से विटामिन ई तो विटामिन बी कमी द्रामस।
4: तो क्या शकने फोर्टिफाइड दूध तो फोर्टिफाइड तेलों का इस्तेमाल करान?
3: मगर ये फोर्टिफाइड आसान क्या छो?
4: फोर्टिफाइड दूध तो तेल छो बराबर मकदार त्रावने, विटामिन ए सानी इम्यूनिटी बढ़ावान तो विटामिन डी अड़जे मजबूत करान, दूध तो तेल छो बराबर मकदार।
3: मगर यह है सठा द्रोग?
4: हाँ ना सुई कमत मज मुशक तेज सुई छु बेहतर पोषण दिवान।
5: पनुन तो पन्ने आयाले जिंदगी बनाई सेहत मंद, प्लस एफ निशान वोल फोर्टिफाइड फूड पान नयो बाजरस में दस्तियाब फोर्टिफाइड वसाइलन है जानकारी खतर करो www.ffrc.fssai.gov.in पर टाइप।
6: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन।
7: चिनार की छांव तले किताबों का एक खूबसूरत जहां आपका इंतजार कर रहा है, आइए तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल में, जहां मिलेंगी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के 200 से अधिक बुक स्टॉल्स, साथ ही क्रिएटिव वर्कशॉप्स, बच्चों के लिए लिटरेरी सेशंस, डिजिटल रीडिंग कॉर्नर और कल्चरल परफॉर्मेंसेस का लुत्फ उठाइए। 18 से 26 जुलाई SKICC श्रीनगर। चिनार बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद NCPUL एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर। टुगेदर वी रीड, टुगेदर वी lead.

आदाब, यह आकाशवाणी श्रीनगर है। शाम के 7:40 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं बिलाल वानी। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। मिशन आगमन के तहत भारत का पहला इन्फरादी तौर तैयार करदा विक्रम 1 नामी ऑर्बिटल रॉकेट कामयाबी के साथ मदार में दाखिल। मुल्क की आला क्यादत ने अमले को दी मुबारकबाद। एसकेएसईसी श्रीनगर में तीसरा चनार बुक फेस्टिवल शुरू। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर को कल्चर और तख्लीकियत का कौमी हब बनाने का दोहराया आज़म। दहशत पसंदी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस भारत के लिए महज एक बयान नहीं बल्कि कार्रवाई करने का अज़्म मुसम्मम, वजीर दिफा राजनाथ सिंह। और पार्लियामेंट के मानसून इजलास से पहले हुकूमत ने कल तमाम पार्टियों की मीटिंग की तलब। खबरें तफसील के साथ। मिशन आगमन के तहत भारत का पहला इन्फरादी तौर पर तैयार करदा विक्रम 1 नामी ऑर्बिटल रॉकेट आज कामयाबी के साथ मदार में दाखिल हुआ है। ये रॉकेट पेलोड से लैस आज सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से दिन के 12:05 पर खला की ओर रवाना किया गया। इस संगमील को पार करते ही भारत दुनिया में प्राइवेट ऑर्बिटल लॉन्च कैपेबिलिटी हासिल करने वाला तीसरा मुल्क बन गया है। इस कामयाबी पर नायब सदर सीपी राधाकृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, वजीर दाखिला अमित शाह और साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर मामलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्काई रूट एरोस्पेस को मुबारकबाद दी है। वजीर आजम ने टेलीफोन के जरिए स्काई रूट के अमले के साथ बात करते हुए उन्हें अपने साथ मुलाकात के लिए मधु किया है। दरियासा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने स्काई रूट एरोस्पेस अमले को विक्रम 1 नामी ऑर्बिटल रॉकेट को कामयाबी के साथ मदार में दाखिल करने पर मुबारकबाद दी है। अपने एक

सोशल मीडिया पैगाम में एलजी ने कहा कि मुल्क के लिए फख्र का लम्हा है और ये कामयाबी भारतीय खिलाई शोबे को इख्तरा के जरिए मजीद मुस्तकम करने के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के विजन की अकासी करता है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आज की इस कामयाबी के जरिए नौजवानों को साइंस और इख्तराकारी के शोबे में अपना किरदार अदा करने में तरगीब मिलेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर को इल्म, कल्चर, तख्लीकियत और इख्तराइयत का कौमी मरकज़ बनाने के सरकार के अज़म को दोहराया है। एसकेएसईसी श्रीनगर में आज चनार बुक फेस्टिवल का इफ्तिताह करने के बाद खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि फेस्टिवल सिर्फ एक तकरीब नहीं बल्कि कुतुबबीनों, कलमकारों और दानश्वरों के लिए एक तहरीक है। मनोज सिन्हा ने कहा कि यह बुक फेस्टिवल नौजवानों को रोजाना मुताला करने, जुबानों को तहफ़ देने, नीज अदब को समाज

0: कांस्टेबल में आज इंतकाल कर गए हैं। आकाशवाणी न्यूज के सरबराह अशफाक अहमद शाह और दीगर अमले ने गमजदा कुंबे के साथ ताजियत का इजहार किया है। बुलंद पाए वली कामिल हजरत बाबा दाऊद खाकी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक आज मनाया गया। इस सिलसिले में उनके आस्थान आलिया वाक़ कोहिमारान में दीनी मजालिस मुनक़िद हुई। इसी तरह कल ही हजरत शेख सैयद शाह नासिरुद्दीन बंगाली रहमतुल्लाह अलैह और हजरत सैयद कमालुद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स भी मनाए गए। मौसम। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 35.9 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 23.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 35 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलू आफ्ताब सुबह 5:33 और गुरुब आफ्ताब शाम 7:41 पर होगा। खास खास खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। मिशन आगमन के तहत भारत का पहला इनफरादी तौर तैयार करदा विक्रम 1 नामी ऑर्बिटल रॉकेट कामयाबी के साथ मदार में दाखिल। मुल्क की आला क्यादत ने अमले को दी मुबारकबाद। SKICC श्रीनगर में तीसरा चनार बुक फेस्टिवल शुरू। LG मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर को कल्चर और तख्लीकियत का कौमी हब बनाने का दोहराया आजम। दहशत पसंदी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस भारत के लिए महज एक बयान नहीं बल्कि कार्रवाई करने का अज़्म मुसम्मम वजीर दिफा राजनाथ सिंह। और पार्लियामेंट के मानसून इजलास से पहले हुकूमत ने कल तमाम पार्टियों की मीटिंग की तलब। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
1: सामिन आदाब, आज का तबसरा लेकर मैं सुहेल भट्ट हाजिर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से लिए गए कौमी सतह के मसाबकती इम्तहान UG नीट 2026 के हतमी नतायज का ऐलान किया गया है। लगभग 20 लाख उम्मीदवारों में से 11,21,000 से ज्यादा उम्मीदवार कामयाब करार दिए गए। काबिल जिक्र है कि नीट के ये इम्तहानात मुल्क की 13 जबानों में लिए गए। जाहिर किए गए नतायज ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मुस्तकिल मिजाजी, मुस्बत सोच, अंतक मेहनत और खानदानी तावुन की मदद से बड़े बड़े अहदाफ को हासिल किया जा सकता है। पंजाब के शहर लुधियाना से ताल्लुक रखने वाले आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पंशल बंसल ने मुश्तरका तौर पहली पोजीशन हासिल करके इस आला तरीन एजाज को हासिल किया। इस मसाबकती इम्तहान में UT जम्मू कश्मीर के कई उम्मीदवारों ने भी अपनी कारकर्दगी के झंडे गाड़ दिए। UT जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले दो उम्मीदवार हादिया निसार और जैदान वानी ने AAR यानी ऑल इंडिया रैंकिंग में बिलतरतीब 99वां और 124वां मकाम हासिल कर लिया। हादिया और जैदान ने 99.9931% नंबरात हासिल करके इस इम्तियाज पर कब्जा कर लिया। दोनों के लिए इस इम्तियाज ने मुल्क के आला तरीन मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के दरवाजे खोल दिए। एजेंसी की तरफ से जाहिर किए गए दूसरे आदद शुमार के मुताबिक कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्त में ऐसे उम्मीदवारों की तादाद 700 के करीब है जिन्होंने कुल 720 नंबरात में से 690 नंबरात हासिल करके अपनी मेहनत और काबिलियत का लोहा मनवा लिया जबकि 19 उम्मीदवारों ने 700 से ज्यादा नंबरात हासिल कर लिए हैं। फहरिस्त में 1,492 ऐसे उम्मीदवार भी हैं जिन्होंने नंबरात हासिल करने में 650 का हिस्सा और 101 ने 600 का हिस्सा पार कर लिया है। इम्तिहान में जहां मुल्क के कोने कोने से उम्मीदवार कामयाब करार पाए वहीं मुल्क की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश के 1,07,000 से ज्यादा जबकि सबसे छोटी रियासत लक्षद्वीप के 43 उम्मीदवार भी सुरखरो रहे। इस सिलसिले में इस वसीलरीज मुल्क में रह रहे तकरीबन हर जुमरे से मुतलिक तालिबानी उलूम ने अपनी मेहनत, लगन और लगातार कोशिशों को बरोए कर लाकर इस मुल्की सतह के मसाबकती इम्तिहान में कामयाबी हासिल करके अपने हम निशनों पर ये नाकाबिले तरदीद हकीकत वाजह कर दी कि अंतक मेहनत और बेलोस खदमत के जज्बे के पस मंजर में कुछ भी हासिल करना नामुमकिन नहीं। इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर इस आला सतही इम्तिहान में 5,12,000 OBC, 1,59,000 शेड्यूल कास्ट, 63,716 शेड्यूल ट्राइब और 95,026 समाज में मौशी तौर कमजोर तबकात से मुतलिक उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल करके न सिर्फ अपने खानदान का नाम रोशन कर दिया बल्कि मुल्क की खिदमत के लिए अपने आप को एक मकाम पर लाया। हमारे मुल्क में बिलउमूम और UT जम्मू कश्मीर में बिलखसूस नौजवानों के एक खास तबके में मायूसी घर कर लेती है। ऐसा इसलिए होता है कि कहीं कहीं उन्हें किसी समाजी मसले में नाकामी से वास्ता पड़ता है जिसको लेकर वो थक हार बैठकर जिंदगी से बेजार हो जाते हैं और मदहोशी में गुम होकर कुदरत के अनमोल तरीन तोहफे जिंदगी को जाया

जी दोस्तों, ये पोस्ट कार्ड हमें मौसूल हुआ है पोहरू जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से। आप हैं पोषण बनहोर, चंद्र किरण, प्रीति और छाया बनहोर। आपने लता मंगेशकर की आवाज में नगमा सुनना चाहा है। फिल्म का नाम है रानी रूपमती। इसी नगमे को आप सब दोस्त भी सुनना चाहते हैं। आप हैं जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार, आदर्श, सार्थिक और अलौकिक। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार और बानु प्रिया। राष्ट्रपाल गजपये, राधिका गजपये, बेबी अनिष्का और तन में आपने मेल भेजा है डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से। जज्जर हरियाणा से बिट्टू बाटिया, रीता और रजत और एक और नाम है मयंक। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से ये मेल हमें मौसूल हुआ है रशीद हुसैन, नौरीन, नसरीन, आसमा और मोहम्मद कैफ की जानिब से। आसमा परवीन और आमिना परवीन, आपने मेल भेजा है दिल्ली शहर से। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, और सरगोना छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति वर्मा और शिवांश वर्मा ने मेल भेजा है। सुनिए अपनी पसंद पर लता मंगेशकर की आवाज़ में नगमा। फिल्म का नाम है रानी रूपमती।

ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। आप इस वक्त समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम वादी की आवाज़, और वादी की आवाज़ के आज के शुमारे में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के पसंद किए हुए नगमे। ये पोस्टकार्ड हमें मौसूल हुआ है छत्रपति संभाजी नगर से। आप हैं राजेश सापले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। आपने सलमा आगा और मनहर उदास की आवाज़ में नगमा सुनना चाहा है। फिल्म का नाम है मीत मेरे मन के। इसी नगमे को आप सब दोस्तों ने भी सुनने की फरमाइश भेजी है। आप हैं गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्या, अभयनंद आर्या और परमानंद आर्या। राज एस डी अंसारी का मेल हमें मौसूल हुआ है सारिमपुर बक्सर से। आपके साथ हैं अस्मा खातून अंसारी और आपके सभी घर वाले। हिंगोली महाराष्ट्र से शाजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जामदाड़े। सिद्धेश्वर नगर वेतमाल से ये मेल आया है पंजाब रामटे के यशोधरा और श्रिया की जानब से। विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और तिरुपति साहू ने मेल भेजा है लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार और सोनम। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगिया, नमन डिंगिया और आपार। और कल्याण मुंबई से किशोर हिवराले, सुजाता और प्रतीक ने मेल भेजा है। ये रही आप सभी दोस्तों की फरमाइश पर सलमा आगा और मनहर उदास की आवाज़ों में नगमा। फिल्म का नाम है मीत मेरे मन के।

अब पेश है लता मंगेशकर की आवाज में नगमा, फिल्म का नाम है मेरी भाभी। पसंद करने वाले दोस्त हैं बरसुदा से भगवानी सेन, संतोषी सेन, चंद्र प्रकाश सेन, नेहा, जितेंद्र और चिराग सेन, दत्रेंगी बाटापारा से हीरामन वर्मा, पारसमनी वर्मा और नोखेलाल वर्मा, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराजा कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, ट्विंकल, डिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा, गांव नथाना पंजाब से मेल आया है हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता की जानब से गगनदीप थांडी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी वामिका और वानी। आपने मेल भेजा है गांव टोरावाल नौशारा पंजाब से, वाडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटो टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोरा, बुल्डाना महाराष्ट्र से अनमोल मनकार, शोभा ताई, दीपाली, शलोक कुमार और आपके सभी घरवाले, इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर और सुमेघ कुमार ने मेल भेजा है, और सूर्यानगर जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र, मोहिनी, कल्पित, बेबी कारवी और हिमाक्ष ने मेल भेजा है। सुनिए अपनी पसंद पर लता मंगेशकर की आवाज़ में नगमा, फिल्म का नाम है मेरी भाभी।

रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सब 6 करोड़ लोग 5 लक्षण तमाम मुफ्त इलाज हकदार वनुक तमाम 2 करोड़ इलाज सपुद यम से गरीब घरन इलाज पे सपदन वाली खर्च किन 2 लक्षण करोड़ हज बचत सपद अस करो आयुष्मान ऐप डाउनलोड तो बनयो आयुष्मान का जानकारी बापत करो 1-4-5-5-5 फोन नंबर पे रबित कई।
1: चिनार की छांव तले किताबों का एक खूबसूरत जहां आपका इंतजार कर रहा है, आइए तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल में, जहां मिलेंगी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के 200 से अधिक बुक स्टॉल्स, साथ ही क्रिएटिव वर्कशॉप्स, बच्चों के लिए लिटरेरी सेशंस, डिजिटल रीडिंग कॉर्नर और कल्चरल परफॉर्मेंसेस का लुत्फ उठाइए। 18-26 जुलाई SKICC श्रीनगर। चिनार बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद NCPUL and District Administration Srinagar. Together we read, together we lead.

हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है। मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। आठ बजकर 30 मिनट हो रहे हैं।

0: हैं, इसी तरह हम वॉलनट में भी करते हैं और उसमें हम कामयाब हो गए। दूसरे हमारे पास एक और प्रॉब्लम थी कि हमारे पास वेराइटीज नहीं थी, क्योंकि यहाँ से हमारा कैलिफोर्निया का वॉलनट, चाइना का वॉलनट और भी बहुत सारे न्यूजीलैंड का वॉलनट आ रहा है, उसको मुकाबला करने के लिए हमारे पास अच्छे वेराइटीज की जरूरत है। हमने बहुत सारी जरूम प्लाज आइडेंटिफाई किया, वही जरूम प्लाज हम ग्राफ्टिंग करते हैं और वो प्लांट मटीरियल हम फार्मर उसको देते हैं। इस सिलसिले में हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब और डायरेक्टर रिसोर्स साहब ने बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया है कि क्यों ना हम एक ऐसा सेंटर बनाएं जिस सेंटर में सिर्फ हम वॉलनट पे काम करें, क्योंकि अगर हम एप्पल की बात, वेटनरी की सेब की बात करें या वेटनरी की, हर एक जगह पर अपना अपना एक स्टेशन है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में वॉलनट का कोई स्टेशन नहीं है। अब पहली बार जम्मू कश्मीर में एक वॉलनट रिसर्च स्टेशन एस्टेब्लिश हो गया और यह डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में ही हो गया, यानी हंदवाड़ा कुलनगांव में यह हो गया। इसमें तकरीबन 150 से 200 कनाल है। यहाँ सिर्फ एक ही काम होगा, वो वॉलनट यानी अखरोट पे, अखरोट का जो नए दरख्त कैसे बनाते हैं, हम वहाँ यहाँ यूथ को ट्रेन करेंगे कि प्लांट मटीरियल कैसे बनाएंगे, यूथ को हम जो हमारे गवर्नमेंट की स्कीमें हैं वो क्या क्या है उनसे वो फायदा उठा सकते हैं। तीसरे और चीज है कि हमारा जो है हम कोल्ड स्टोर भी बनाने जा रहे हैं, यानी इससे पहले हम ये मानते थे कि कोल्ड स्टोर सिर्फ एप्पल के लिए है, लेकिन वॉलनट के लिए भी है, जो वॉलनट कर्नल जिसको हम ग्रेवी कहते हैं उसके लिए भी है। जब हमें मार्केट अच्छा होगा जब हम कोल्ड स्टोर से निकालेंगे, जब हमें देखेगा कि मार्केट डाउन है तो हम उसको कोल्ड स्टोर में सेफ रख सकते हैं। हमने जो ऐसे टेक्नोलॉजी यूज की है कि हमारे पास छोटी एक ऐसी मशीनरी आई है जो एक दिन में तकरीबन 8 से 10 क्विंटल वॉश कर सकते हैं, डिहेलिंग कर सकते हैं और उसके बाद ड्राई करेंगे, पैकिंग करेंगे और फार्मर को जहां मर्जी है वहां वो बेच सकता है। अब एक और चीज है कि हमारा यूथ जो है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है इस टाइम हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है कि आपको पता है कि 8 से 10 लाख हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है और हमारा जो गांव में जो यूथ है हमारा वो इस टाइम कोई ज्यादा काम इस पे जो एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा नहीं आ रहे हैं। हमने एक स्कीम शुरू कर दी है कि हम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करेंगे। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में क्या करेंगे, हम अपने एक यूथ को ट्रेन करेंगे कि प्लांट मटीरियल आप कैसे बनाएंगे, क्योंकि प्लांट मटीरियल की बहुत बड़ी डिमांड है जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल में, ड्राई फ्रूट का बहुत ज्यादा स्कोप है। इसके लिए हमें क्या करना है कि यूनिवर्सिटी या डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ज्यादा प्लांट मटेरियल नहीं बन पा रहा है जितनी हमारी डिमांड है। अब हमने ग्रुप 15 दिन की ट्रेनिंग, 20 दिन की ट्रेनिंग, 21 दिन की ट्रेनिंग हम कर रहे हैं। उसमें हम क्या कर रहे हैं कि ये जो नौजवान है हमारा उसको हम ट्रेन कर रहे हैं कि ये प्लांट मटीरियल कैसे, उसके बाद हम वो स्कीम दे रहे हैं, यानी कि हमारे डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के पास कई तरह की स्कीम है, 7 लाख 8 लाख 10 लाख रुपए की, जिसमें वो इंसेंटिव्स हम दे रहे हैं और उसके बाद वो अपने यूनिट खड़ा कर सकते हैं। ये हमारा एक बहुत बड़ा एक और प्लान है। तीसरा एक और प्लान है कि हम जो इम्पोर्ट वॉलनट आ रहा है इस टाइम ज्यादा कैलिफोर्निया से कि उसको कैसे करें, जैसे हमारे आलमंड में भी बहुत बड़ा आ रहा है, इसी तरह वॉलनट में भी शुरू हो गया है, वो चीज हम कैसे करें। अगर हम डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा की बात करें, जो वॉलनट यानी कर्नल है, करना जो है करना में पूरे वर्ल्ड में नंबर वन ग्री मानी जाती है, क्योंकि वहाँ ठंड इलाका है, ऐसा अल्लाह ताला ने ऐसा वहाँ निजाम बनाया है कि वहाँ का कर्नल पूरी दुनिया में मशहूर है। जब तक कर्नल का कर्नल कुपवाड़ा मार्केट में नहीं आ जाता, कर्नल का मार्केट नहीं बन पा रहा है, लेकिन वो जो वेराइटीज है, वो जो जर्मप्लाज्म है उसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो फॉरवर्ड उसको दे रहे हैं, उसके बाद हम उसको ऐसे पैकिंग ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे हम यहाँ से ज्यादा कंट्री उसको एक्सपोर्ट करेंगे। उसके बाद जो हमारा जो जर्म प्लाज्म है, ये वॉलनट वेराइटीज है, वो हम अपने फार्मर्स को दे देंगे, फार्मर अपने ऑर्चर्ड्स में लगाएंगे, क्योंकि इससे पहले एक चीज था कि 4 या 5 प्लांट 1 कुनाल में आते थे, लेकिन अब ये टाइम आ गया कि हम 15 से 20 प्लांट 1 कुनाल में अब आ जाते हैं और इसमें जो हार्वेस्टिंग है बिल्कुल हाथ से की जाती है, पेड़ पे चढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, उसको हम ग्राफ्टेड वॉलनट कहते हैं। वो ग्राफ्टेड वॉलनट हमारे पास अवेलेबल है, कोई भी अगर फार्मर चाहे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा का हो, डिस्ट्रिक्ट बारामूला या किसी और डिस्ट्रिक्ट का हो, वो हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, हम वो प्लांट मटेरियल उसको देंगे।
1: आपको वॉलनट मैन का खिताब दिया गया है,
0: जी,
1: तो आपने क्या सर कौन से अचीवमेंट्स थी आपकी जिनके बिना
0: जी सर क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वॉलनट जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो इटली में है, वहाँ के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट यहाँ पे आए थे, डॉक्टर एवन जेतू को मिला है, क्योंकि मैंने पीएचडी जो मेरा है पूरा पीएचडी प्रोग्राम मेरा वॉलनट में ही है और उसके बाद मैंने पिछले 15-20 साल से सिर्फ एक क्रॉप पे काम कर रहा हूँ, वो है वॉलनट क्रॉप है। मैं ये मानता हूँ कि अगर हमारा जम्मू कश्मीर का कोई फ्यूचर है हॉर्टिकल्चर में वो ड्राई फ्रूट है, उसमें वॉलनट नंबर वन है, क्योंकि ड्राई फ्रूट में हमारा इतना पेस्टिसाइड यूज नहीं होता है। अगर हम एप्पल की बात करें, हम 15 पेस्टिसाइड पे पहुंच गए, लेकिन वॉलनट में सबसे

0: इम्पोर्टेंट चीज है, या ऑर्गेनिक है, लेकिन हम इसको इतना आगे नहीं ले जा रहे हैं क्योंकि उसमें ऐसी न्यूट्रिशंस हैं जो इंसान के लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए मैंने जो सारा अपना प्लान डॉक्टर एम एन जेतू और इटली गवर्नमेंट को दिखाया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एनएचबी और बहुत सारी टीमें आई हैं, तो उन्होंने कहा कि आप एक ही क्रॉप पे काम कीजिए, आगे भी कर दीजिए। उन्होंने मुझे ये नाम दे दिया क्योंकि मैंने 5 वेराइटीज और 500 से ज्यादा जो जर्म प्लाज्म है वो अच्छी वेराइटीज मैंने तैयार की है, जो मैं फार्मर उसको दे रहा हूँ, और मैंने लाखों प्लांट्स आज तक फार्मर को दिया और फार्मर को अवेयर किया कि आप एप्पल तो कर रहे हैं लेकिन इसके साथ साथ आप वॉलनट भी कीजिए, क्योंकि वॉलनट बहुत ही कम लोग जो हमारे फार्मर है बहुत ही कम इंटरेस्ट दिखाई देते थे कि हम वॉलनट नहीं लगाएंगे, पता नहीं कितना बड़ा पेड़। लेकिन मैंने लोगों को अवेयर किया, मैं गाँव गाँव गया, हर जगह पे जहां मुझे मौका मिला मैंने लोगों को अवेयर किया कि आप एप्पल के साथ साथ वॉलनट प्लांटेशन भी कीजिए। अगर आपके पास 5 कुनाल लैंड है, 4 एप्पल पे लगाए, लेकिन कम से कम 1 कुनाल आप वॉलनट के लिए बचा के रख दिए। लेकिन इस टाइम अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, इसलिए मुझे मैन ऑफ वॉलनट का खिताब मिला है।
1: सर आपकी सर मैसेज क्या होगी कुपवाड़ा के जो कंडी बेल्ट के ऊपर वाले ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं जहाँ पे ज्यादातर लोग ना वॉलनट उगाते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है, वो किस तरफ फायदा उठाएं सर इस टेक्नोलॉजी का?
0: जो हमारा कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है ये बहुत ही अच्छा सूटेबल है वॉलनट प्लांटेशन के लिए, लेकिन हमारे फार्मर्स को अभी पता, हमारे फार्मर्स मेरे पास कभी भी आ सकते हैं, वो हमारा रिसर्च स्टेशन वॉलनट स्टेशन कोलंगाम में नजदीक में ही है। हम उनको सबसे पहले इस चीज के लिए तैयार करेंगे कि आप अच्छी वैरायटीज जो वॉलनट के हैं वो लगाइए, दूसरा वो ग्राफ्टेड वॉलनट लगाएंगे, सीड वाला वॉलनट वो नहीं लगाएंगे। उसके बाद हम उनको वो सारे स्कीम्स बताएंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वॉलनट पे के लिए। एक और एडवांटेज है हमारे डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में, ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम, इससे 10 लाख से लेके 50 लाख का जो है फाइनेंस मिलता है गवर्नमेंट, उसमें सब्सिडी भी है और बहुत ही कम लोगों को इस चीज का पता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में हमारा वॉलनट ही आता है, उसको दिया गया है कुपवाड़ा को, उसमें क्या क्या स्कीम्स हैं, अगर कोई प्रोसेसिंग यूनिट डालना चाहता है, कोई नर्सरी बनाना चाहता है, या कोई नया और हाईटेक ऑर्चर्ड बनाना चाहता है वॉलनट में, वो हमारे पास आ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनको सर्विस देंगे और अच्छी गाइडेंस करेंगे। मैं अपनी यूथ को बार बार कह रहा हूँ, क्या जैसे एप्पल में ए ग्रेड और बी ग्रेड एप्पल है, इसी तरह वॉलनट कर्नल्स में भी ए ग्रेड और बी ग्रेड। ए ग्रेड में तो मार्केट अच्छा है, बी ग्रेड में हम क्या कर सकते हैं, बी ग्रेड में हम इस टाइम आप देखिए पूरे वर्ल्ड में इस टाइम पीनट बटर चलती है, लेकिन अगर हम वॉलनट बटर चलाएंगे वो वॉलनट केक वो सबसे ज्यादा बेटर है क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसमें प्रोटीन 21% है, इसमें फैट कंटेंट 60% से एबो है, यानी हम इसको वैल्यू एडिशन के लिए बहुत ही अच्छा है हमारा वॉलनट बी ग्रेड है सी ग्रेड। इस टाइम तो कई आप देख रहे हैं कि वॉलनट केक बन रहे हैं, वॉलनट होनी बन रहा है, लेकिन इस तरह कमर्शियल नहीं, हम चाहते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से हम शुरू करें कि हम वॉलनट बटर बनाए, वॉलनट केक बनाए, वॉलनट कुकीज बनाए, जितने भी वॉलनट टॉफीज बनाए। मैं यूथ को और फार्मर्स को ये बताना चाहता हूँ कि ये नबार्ड का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हमारे पास, इसी उन्होंने इसीलिए भी हमने डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के लिए कि जो ये फैसिलिटीज है, चाहे मैनुअली वो साफ कर रहे हैं, चाहे मैनुअली वो कर्नल कर रहे हैं, वो हमारे पास आए, हम उनको वो सारी तरह की ट्रेनिंग देंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे, और 1 साल के बाद का जो काम है वो हम करेंगे, उनको सिर्फ मटीरियल हमारे स्टेशन पे लाना है, वो हम डिहेलिंग हो, ड्राइंग हो, पैकिंग हो, हम कभी आपको भी हम दावत देना चाहते हैं, आप भी आइए हमारे स्टेशन पे, क्या हम इस चीज के लिए ये कर रहे हैं कि ये जो हम कास्ट इनका लेबर कास्ट है इसको कम से कम हम कम करना चाहते हैं ताकि हमारे फार्मर्स को फायदा हो। एक और चीज हमने शुरू किया है क्यूआर कोडिंग। क्यूआर कोडिंग में हमें ये वॉलंटियर्स की क्या वैल्यू है, क्या डाटा है, ये हमने डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से पहली बार थ्रू आउट वर्ल्ड में पहली बार हमने डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से शुरू किया है और अपने स्टेशन से, और हम पूरे कश्मीर वैली में ये क्यूआर कोडिंग भी करेंगे।
1: तो सर वॉलनट फार्मर्स को रीच आउट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं?
0: हमें सबसे पहले हम शुरू एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हम रजिस्ट्रेशन ड्राइव शुरू करेंगे, जो भी फार्मर हमारे डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में वॉलनट से सिर्फ वॉलनट से काम कर रहे हैं हम उनके रजिस्ट्रेशन करेंगे, डाटा अपने पास रखेंगे, उनको ग्रुप वाइज यूनिवर्सिटी ले जाएंगे, शालीमार ले जाएंगे, ट्रेनिंग देंगे गांव में, हर एक जो भी इसमें फैसिलिटीज इस टाइम है वो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे 100% जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के वॉलनट ग्रोवर्स है उनके पास।
1: शुक्रिया सर,
0: थैंक यू वेरी मच।
2: सभी अखरोट के हाई डेंसिटी प्लांट मटेरियल की वजह से शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के काश्तकार काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। अब हर साल यहां हजारों पेड़ लगाए जाते हैं और इस वजह से जिले में अखरोट की पैदावार भी रफ्तार रफ्तार बढ़ रही है। हमारे नुमाइंदे रफीक अहमद ने एक प्रोग्रेसिव

0: फार्मर या तरक्की पसंद किसान मुख्तार अहमद से बात की तो उन्होंने कहा,
1: अभी हमारे आस पास जो पुराने दर थे हमारे वो शुदा हो चुके हैं, उनसे लोग गिरते हैं जो अखरोट के काम देते हैं। अब जो हमारी यूनिवर्सिटी ने बनाए हैं नए पौधे, वो एक साल ग्राफ्ट किया, दूसरे साल तीसरे साल वो फल देते ही देते हैं। और हमारे फार्म में यहाँ बहुत सारे अखरोट जो नॉर्मली यहाँ अखरोट से पुराने जमाने से, वो तो इतने बड़े आला किस्म के अखरोट हैं कि ऐसे अखरोट कहीं अमेरिका चाइना में भी नहीं मिलते हैं। उन अखरोट को तलाश करना है, सर्वे करने हैं, उन्हीं की ग्राफ्टिंग करनी चाहिए, हमें नए पौधे बनाने चाहिए, हमें पुराने दरों को आहिस्ता आहिस्ता उनको खत्म करना चाहिए, क्योंकि बहुत जो नुकसान होता है उनसे और जगह भी ज्यादा लेते हैं। ये जो बेल्ट है या लोला बेल्ट है, ये तो नेचुरली अखरोट के लिए बहुत बढ़िया आब हवा अखरोट के लिए बहुत बढ़िया है। हमारा अखरोट ज्यादा, इसकी डिमांड भी ज्यादा है और इस पर कोई खर्चा लगता नहीं है, इस पर दवाइयाँ छवाइयाँ लगती नहीं, ना इसको खाद डालने की जरूरत पड़ती है, ये तो 100% नेचुरली ग्रो हो जाता है। मेरी मैसेज ये है उन जिम्मेदारों से जिनके पास लैंड अवेलेबल है अखरोट के लिए, उनको जो है कि वो लेटेस्ट किस्म के अखरोट अपने यूनिवर्सिटी से कॉन्टेक्ट करके अच्छे किस्म के अखरोट दस्तयाब करके जिन्हें अच्छा अखरोट लगाए।

0: अठवाइयाँ लगती हैं, न इसको खाद डालने की जरूरत पड़ती है, ये तो 100% नेचुरली ग्रो हो जाता है। मेरी मैसेज ये है उन जिम्मेदारों से जिनके पास लैंड अवेलेबल है अखरोट के लिए, उनको जो है कि वो लेटेस्ट किस्म के अखरोट अपने यूनिट से कॉन्टेक्ट करके अच्छे किस्म के अखरोट दस्तयाब करके जमीन में अच्छा अखरोट लगाएं। पुराने अखरोट हमें आहिस्ता आहिस्ता से खत्म करने चाहिए, क्योंकि जमीन भी ज्यादा लेते हैं, अखरोट भी कम देते हैं।
1: इसके साथ ही जलनामा का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर हुआ। निगरानी आला अशफाक अहमद शाह, तरतीब व तहजीब कौश की कश्यप, रिकॉर्डिंग व एडिटिंग नसीर अहमद लॉन, तहरीर व आवाज शेख तजम्मुल, पेशकश रीजनल न्यूज यूनिट आकाशवाणी श्रीनगर।

0: हमारी आवाज़ अब तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है। मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 2 103.5 MHz पर। आठ बजकर 45 मिनट हो रहे हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी खबरों का बुलेटिन नश्र होगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी। अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु। प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ हुर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरान और अमेरिका का युद्ध तेज हुआ। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोर्गोहेन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा की गई। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
2: लेकिन आप चाहे मुझे NIA की तरफ से भेजिए, ID की तरफ से भेजिए या कश्मीर का CM बनाकर भेजिए, विल मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है। इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
1: ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।
3: राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नमीदास और रूपश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा। शाश्वत सचदेव और GV प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर और वैकुम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा काडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। कल की 2898 AD को भरपूर मनोरंजन वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। कैप्टन मिलर को राष्ट्रीय और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। श्रीकांत को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, मारन को सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म, लहरी को सर्वश्रेष्ठ उड़िया फिल्म, मिथ्या को सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म, सुनीता को सर्वश्रेष्ठ मणिपुरी फिल्म और ढोली को सर्वश्रेष्ठ गढ़वाली फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना UBT सांसदों के विलय को भी मंजूरी दी गई है। इन 6 सांसदों के

0: विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा कारखाने में भीषण आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह कारखाना रामोल गात्राड रोड पर है।
1: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी वस्त्राल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वालों के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। उन्होंने घोषणा की कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं और उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद की निजी कंपनी स्काई रूट एयरो स्पेस ने किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एयरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम 1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। यह अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने विक्रम 1 से जुड़ी पूरी टीम को बधाई दी है।
3: टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री
4: आज देश में पहली बार एक निजी रॉकेट ने सफलतापूर्वक एक सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है और इससे युवाओं में आर्थिक विकास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना बढ़ती है। वास्तव में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है।
3: इट्स ए वेरी वेरी सिग्निफिकेंट मोमेंट।
0: हुर्मुज जलडमरू मध्य पर संघर्ष बढ़ने के कारण अमरीका और ईरान ने आज हमले तेज कर दिए। कुवैत में हमलों से भारी तबाही होने की खबर है। वहां ईरान ने वाटर डिसैलिनेशन संयंत्र और एक तेल सुविधा केंद्र पर हमले किए। इन हमलों में कई लोग घायल हुए और बिजली उत्पत्ति बाधित हुई है। पिछले 2 दिन में डिसैलिनेशन संयंत्र पर यह दूसरा हमला था। पेयजल के लगभग 90% हिस्से का डिसैलिनेशन के जरिए आने के कारण देश में चिंताएं बढ़ गई है। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने ईरानी हमलों में महत्वपूर्ण नागरिक अवसंरचना को निशाना बनाए जाने की कड़ी निंदा की है। मंत्रालय ने ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। रूस पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों में 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 60 घायल हुए हैं। रूस के अधिकारियों ने बताया कि

रूस के प्रमुख ऑनलाइन रिटेलर के दो विशाल गोदामों पर यूक्रेन ने रात को ड्रोन हमले किए। एक गोदाम रूस के तांबो ओब्लास्ट क्षेत्र में और दूसरा मॉस्को में है। ओब्लास्ट क्षेत्र के कोटोवस्क में रात्रि पाली में काम करने वाले 7 श्रमिकों की मृत्यु हो गई और 25 घायल हो गए। वहीं मॉस्को के इलेक्ट्रोस्टल शहर में एक व्यक्ति मारा गया और 36 घायल हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पत्नी चिनम्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चिनम्मा अपनी विनम्रता और समाज सेवा के प्रति अटूट समर्पण के लिए जनप्रिय थीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दुख की घड़ी में उनकी संवेदनाएं श्री देवेगौड़ा और उनके पूरे परिवार के साथ हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चिनम्मा शांत स्वभाव, गरिमा और परिवार के प्रति अटूट समर्पण की प्रतीक थी। वे श्री देवेगौड़ा जी के लंबे सार्वजनिक सेवा काल में एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ी रहीं। श्री देवेगौड़ा एचडी कुमारस्वामी और पूरे शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कामना की कि ईश्वर उन्हें इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल मंत्री ने कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी। श्री वैष्णव ने बताया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तरी रेलवे ने जम्मू डिवीजन के कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम तत्काल प्रभाव से बदलकर शहीद कप्तान सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन कर दिया है। स्टेशन का नया अल्फा कोड MSKT होगा, जबकि अन्य सभी विवरण अपरिवर्तित रहेंगे। अनारक्षित टिकट प्रणाली और यात्री आरक्षण प्रणाली में स्टेशन MC सुनील कठुआ के रूप में दिखाई देगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस निर्णय की घोषणा की और कठुआ के लोगों को बधाई देते हुए इस कदम को शहीद के बलिदान और राष्ट्र के प्रति सेवा को श्रद्धांजलि बताया। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन को ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वज वाहक चुना गया है। दोनों दिग्गज एथलीट 23 जुलाई को उद्घाटन समारोह में 126 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व करते हुए तिरंगा लेकर मार्च करेंगी। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी ऊषा ने आज इसकी आधिकारिक घोषणा की। मीराबाई चानू लगभग एक दशक से भारत की अग्रणी भारोत्तोलक रही हैं। उन्होंने 2021 के टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता और उसके बाद 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य और 2023 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। यह मैच देर रात 2:30 बजे अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अर्जेंटीना और स्पेन कल रात न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में विश्व कप के फाइनल में आमने सामने होंगे। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। दूसरे गेम में चेन यू फी की चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र अड़ापा विजय अनुष्ठान आज शाम पुरी के श्री गुंडिचा मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न हो रहा है। यह वार्षिक रथ यात्रा के सबसे आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण समारोहों में से एक है। रथ यात्रा के सफल समापन के बाद कल पवित्र त्रिमूर्ति को वैदिक मंत्रों, भक्ति गीतों और सदियों पुराने मंदिर अनुष्ठानों के बीच पारंपरिक पहंडे जुलूस में उनके संबंधित रथों से श्री गुंडिचा मंदिर के गर्भगृह में ले जाया जा रहा है। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के गांग

0: एक क्षेत्र सिक्किम और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी। अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु। प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य पर अमेरिका और ईरान का युद्ध तेज हुआ। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 2 103.5 MHz पर। रात के 9 बज चुके हैं। समीना ये चंद फिल्मी नगमे सुनते हैं। आगाज में आपको सुनवाते हैं दो रास्ते फिल्म से नगमा। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसीकी और आनंद बख्शी का लिखा ये नगमा है।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले को सुन रहे थे आप यादों की बारात फिल्म से। अब आइए किशोर कुमार को सुनते हैं, फिल्म है ब्लैकमेल।

0: ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। बहत्तरवीं कौमी फिल्म अवार्ड्स का ऐलान कर दिया गया है। फिल्म आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड दिया जाएगा। ब्रह्मयुगम के लिए ममूती और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को मुश्तरका तौर पर बेहतरीन अदाकार का अवार्ड दिए जाने का ऐलान किया गया है। तृणमूल कांग्रेस की जो 20 सरकार ने पार्लियामेंट नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए थे, उन्हें लोकसभा में अलहदा ग्रुप के तौर पर बैठने के लिए स्पीकर की मंजूरी मिल गई है। अहमदाबाद में आतिशबाजी का सामान तैयार करने वाली फैक्ट्री में जबरदस्त आग लगने से 5 अफराद की मौत हो गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस वाक़े पर दुख का इजहार किया है। अब नए हुरमुस के मामले पर अमरीका और ईरान के दरमियान लड़ाई में तेजी आ गई है। अहम बुनियादी ढांचे और फौजी ठिकानों पर हमले किए गए हैं। ओलंपिक खेलों में तमगे जीतने वाली मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहीन ग्लासगो में होने वाले दौलत मुश्तरका खेलों की इफ्तिताही तकरीब में भारत की परचम बरदार खिलाड़ी होंगी। और फीफा वर्ल्ड कप में तीसरे मकाम के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। हिंदी फिल्म आर्टिकल 370 को 72वें कौमी फिल्म अवार्ड्स में बेहतरीन फिल्म का अवार्ड मिला है। आज शाम नई दिल्ली में कौमी फिल्म अवार्ड्स का ऐलान करते हुए फीचर फिल्म जुमरे की ज्यूरी के चेयरमैन जयराज ने कहा कि ममूती और कार्तिक आर्यन को उनकी फिल्मों ब्रह्मयुगम और चंदू चैंपियन के लिए बेहतरीन अदाकार के जुमरे में कौमी फिल्म अवार्ड मिला है। उन्होंने कहा कि फिल्म 370 में उनकी अदाकारी के लिए यामी गौतम को बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड दिया जाएगा। गैर फीचर फिल्म के ज्यूरी के चेयरमैन असीम कुमार सिन्हा ने कहा कि सुमेरा रॉय की हिदायतकारी में भंगार को बेहतरीन गैर फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। बेहतरीन मुख्तसर फिल्म मराठी में हमसफर रही। उन्होंने कहा कि बेहतरीन हिदायतकारी का अवार्ड स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए आनंद एल राय को दिया जाएगा। बेहतरीन फिल्म क्रिटिक अवार्ड संजीव श्रीवास्तव को दिया जाएगा। सिनेमा में बेहतरीन तहरीर के लिए के प्रदीप कुमार शेट्टी को उनकी कन्नड़ किताब के लिए अवार्ड दिया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
1: राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए बेहतरीन हिदायतकारी का अवार्ड दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सपोर्टिंग रोल के लिए बेहतरीन अदाकार का अवार्ड मिलेगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को बेहतरीन मौसीकार का अवार्ड मिलेगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना कथा कादू को बेहतरीन बच्चों की फिल्म का अवार्ड देने का ऐलान किया गया है। मजमुई तौर पर तफरीह फराहम करने के लिए काल्की 2898 एडी को बेहतरीन फीचर फिल्म करार दिया गया है। दिल्ली से दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने टीएमसी के उन 20 बागी अरकान पार्लियामेंट के लिए ऐवान में अलहदा से बैठने को मंजूरी दे दी है जो नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई में शामिल हुए थे। जनाब बिरला ने शिवसेना यूबीटी के 6 अरकान पार्लियामेंट के महाराष्ट्र के नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे की क्यादत वाली

0: सेना में जम किए जाने को भी मंजूरी दे दी है। छह अरकान पार्लियामेंट के शामिल होने के बाद पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी में शिवसेना के अरकान की तादाद 7 से बढ़कर 13 हो गई है। सरकार ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल कल सभी पार्टियों की मीटिंग तलब की है। ये इजलास पीर से शुरू हो रहा है। कल की मीटिंग के दौरान सरकार दोनों ऐवानों का कामकाज खुशउसलूबी के साथ चलाने के लिए सभी सियासी पार्टियों से तआवुन की अपील करेगी। पार्लियामेंट का मानसून इजलास अगले महीने की 13 तारीख तक जारी रहेगा। मिशन आगमन के तहत भारत का पहला निजी तौर पर तैयार करदा मदार में जाने वाला रॉकेट विक्रम 1 इंजन का आखिरी मरहला मुकम्मल करने के बाद और 450 किलोमीटर बुलंद मदार में पेलोड कामयाबी से पहुंचाने के बाद कामयाबी के साथ मदार में दाखिल हो गया है। इस रॉकेट को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में वाक़ सतीश धवन खलाई मरकज से आज 12:05 पर खला में भेजा गया। इस कामयाबी के साथ भारत निजी शोबे के जरिए मदार में रॉकेट लॉन्च करने की सलाहियत हासिल करने वाला दुनिया का तीसरा मुल्क बन गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस कामयाबी पर स्काई रूट एरोस्पेस को मुबारकबाद दी। उन्होंने फोन पर स्काई रूट की टीम से बात की और इस तारीखी खलाई कामयाबी को सराहा।
1: और पूरी टीम बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी इस कामयाबी पर टीम को मुबारकबाद दी है। गुजरात के शहर अहमदाबाद में रामोल गटराड रोड पर आतिशबाजी का सामान तैयार करने और इसे प्रोसेस करने के यूनिट में जबरदस्त आग लगने से 5 अफराद की मौत हो गई जबकि कई लोग जख्मी हुए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आग लगने के इस वाक़े में लोगों की अम्बात पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि मकामी इंतजामिया मुतासरा कारकुनों को हर मुमकिन इमदाद फराहम कर रही है। जनाब मोदी ने मरने वालों के लवाहिकीन के लिए वजीर आजम के कौमी इमदादी फंड से 2-2 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया है जबकि जख्मियों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भी अहमदाबाद में आतिशबाजी का सामान तैयार करने वाली फैक्ट्री के अलमनाक वाक़े पर ताजियत का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब अमित शाह ने कहा कि जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी सहूलत फराहम की जा रही है। मजीद तफसील हमारी नामा निगार से।
2: आतिशबाजी का सामान तैयार करने वाली फैक्ट्री में जबरदस्त आग लगने के अलमनाक वाक़े के तनाजुर में तेजी के साथ कार्रवाई करने वाली फोर्स के अहलकार फौरी तौर पर वहां पहुंच गए और आग के शोलों में घिरे हुए मकाम पर फंसे हुए और जख्मी होने वाले कारकुनों को बचाकर बाहर निकाला। हलाक होने वाले कारकुनों की लाशें भी बरामद कर ली गई हैं। जख्मियों को इलाज के लिए नजदीक के अस्पतालों में दाखिल करा दिया गया है। अहमदाबाद के फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पा लिया है। म्यूनिसिपल कमिश्नर और मेयर समेत आला ओहदेदारों ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए उस मकाम का दौरा किया। रियासत के वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने ताजियत का इजहार करते हुए मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 4-4 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया है जबकि जख्मियों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। पुलिस की इब्तदाई छानबीन से मालूम हुआ है कि आतिशबाजी का सामान तैयार करने वाली ये फैक्ट्री गैर कानूनी तौर पर चल रही थी। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
0: आंध्र प्रदेश में पोलावरम जिले के गोला गुडयम गांव के नजदीक 5 माहीगीरों के गोदावरी दरिया में डूबने से मौत हो गई। मालूम हुआ है कि ये माहीगीर मछलियां पकड़ने के लिए दरिया में गए थे कि पानी के तेज बहाव में बह गए। 5 माहीगीरों की लाशें दरिया से बाहर निकाल ली गई हैं। हुक्काम ने बताया कि ये सभी एक ही गांव के रहने वाले थे और इनमें से 3 खवातीन थीं। इस वाक़े की वजूहात का पता लगाने के लिए तहकीकात शुरू की गई है। रियासत के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने इस वाक़े पर दुख का इजहार किया है और सोगवार कुनबों से ताजियत जाहिर की है। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल वसीले से रामनगर देहरादून एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर

0: रवाना किया जो रामनगर को देहरादून से मरबूत करने वाली पहली बराह रास्त एक्सप्रेस ट्रेन है। इस नई ट्रेन की शुरुआत से उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल खित्तों के दरमियान रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने की खातिर अवाम की देरीना मांग पूरी हो गई है। लोगों से खिताब करते हुए जनाब वैष्णो ने कहा कि रामनगर देहरादून एक्सप्रेस दोनों खित्तों के दरमियान रेल कनेक्टिविटी को मुस्तहकम करेगी।
1: कुमाऊं और गढ़वाल उत्तराखंड के दो बहुत ही मजबूत पोल्स हैं। इन दोनों पिलर्स को जोड़ने वाली ये आज की गाड़ी है जो कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ेगी। इसका ये एक नया सेतु बनेगी कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में, और इसके लिए प्रयास लगातार होता रहा है। और आज इन प्रयासों का एक जो फल निकला है वो ये है कि आज कम से कम हफ्ते में 2 दिन ये गाड़ी स्टार्ट हो पा रही है। बहुत अच्छी बात है, कुमाऊं के लोग आराम से गढ़वाल जा पाएंगे, देहरादून कैपिटल तक जा पाएंगे और कई तरह के जो काम राजधानी में ही होते हैं वो सब यहाँ पर कर पाएंगे।
0: शिमाली रेलवे ने जम्मू डिवीजन में कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन बाजाब्ता तौर पर रखने का ऐलान किया है। इसका इतलाक फौरी तौर पर होगा। आकाशवाणी जम्मू के नामा निगार ने बताया कि इस सिलसिले में जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया है कि मस्कूरा स्टेशन का नया अल्फा कोड MSKT होगा, जो पहले के कोड KTHU की जगह लेगा। दीगर कोई तब्दीली नहीं की गई है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज मगरबी बंगाल में सिलीगुड़ी में जुमा गाज के मकाम पर सरहदी हिफाजती फोर्स BSF कैंप का दौरा किया और BSF के अहलकारों के साथ गुफ्तगू की। जनाब अमित शाह ने पौधे भी लगाए और प्रहारी सम्मेलन में शिरकत की। सरहदी इलाकों को मुस्तहकम करने, पैदाइश और मौत के रजिस्ट्रेशन, नीज अमन कानून की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने आज साबिक वजीर अजम HD देवेगौड़ा की अहलिया चेनम्मा के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि चेनम्मा को उनकी इनकिसारी और माशरे की खिदमत के उनके जज्बे के लिए याद किया जाएगा। वजीर अजम ने मजीद कहा कि दुख की इस घड़ी में वो जनाब देवेगौड़ा और उनके पूरे कुनबे के साथ हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी ताजियत का इजहार करते हुए कहा कि चेनम्मा अपने कुनबे के लिए मजबूती, वक़ार और पुख्ता अजम की अलामत थीं। अमले अवामी शिकायत और पेंशन के महकमे के वजीर ममलिकत डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि शिकायत के इजाले के तहत शिकायतों को निपटाने से आगे कार्रवाई की जानी चाहिए और पेंशन याफ्ता अफराद की तशवीश और उनकी उमंगों पर तवज्जो मरकूज की जानी चाहिए। डॉ सिंह ने कहा कि पेंशन से मुतालिक तनाजियात इंतजामी तरीके से हल किए जाने चाहिए ताकि पेंशन याफ्ता अफराद को अदालतों से रुजू करने पर मजबूर न होना पड़े। उन्होंने ये बात आज नई दिल्ली में पेंशन मुकदमात के बारे में दूसरी कौमी वर्कशॉप से खिताब करते हुए कही। ईरान के कानूनी उमूर और बैन अलावामी उमूर के नायब वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी ने अमरीका पर समझौते की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद करते हुए ऐलान किया है कि ईरान ने अमरीका के साथ हाल ही में दस्तखत किए गए इस्लामाबाद मुफाहमतनामे के तहत अपने वादों और अहद को मुअत्तल कर दिया है। ईरान के मीडिया के मुताबिक जनाब गरीबाबादी ने कहा कि तरफेन मुजाकरात कर रहे थे, लेकिन अमरीका ने बकौल उनके जारहाना कार्रवाई करके मुफाहमतनामे के तहत अपनी जिम्मेदारियों की मुबैना खिलाफ वर्जी की है। अमरीका और ईरान ने आज भी एक दूसरे पर हमले किए। आबनाए हुरमुज के मामले पर लड़ाई में शिद्दत आ गई है। गुज़श्ता 2 दिन में खारे पानी को साफ करने के प्लांट पर ये दूसरा हमला है, जिससे कुवैत में तशवीश बहुत बढ़ गई है क्योंकि वो तकरीबन 90% पीने के पानी के लिए इसी तरह के प्लांट्स पर इन्हिसार करता है। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने कल जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड में कहीं कहीं इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। आइंदा 2 रोज के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरलम, माहे, उड़ीसा और मुल्क के शिमाल मशरक़ी हिस्सों में भी शदीद बारिश का इम्कान है। दिल्ली के लिए कल आमतौर पर मतला अब्र आलूद रहने की पेशगोई की गई है। भारतीय ओलंपिक्स एसोसिएशन IOA ने आज ऐलान किया है कि ग्लासगो में दौलत मुश्तरक खेलों की इफ्तिताही तकरीब में ओलंपिक में तमगा जीत चुकी मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहिन भारतीय परचमबरदान होंगी। इन खेलों की इफ्तिताही तकरीब इस माह की 23 तारीख को OVO हाइड्रो एरिना में होगी। एक प्रेस रिलीज में IOA की सदर PT उषा ने कहा कि यह एजाज भारतीय खेलों में उनके गरा कदर तावन को तस्लीम करता है और उन्होंने खेलों में पूरे भारतीय दस्ते को कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की। فیفا عالمی کپ میں آج رات میامی اسٹیڈیم میں تیسرے مقام کے لیے فرانس اور انگلینڈ کا مقابلہ ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت

0: मुताबिक देर रात 2:30 बजे से खेला जाएगा। स्पेन के खिलाफ सेमीफाइनल में शिकस्त के बाद आलमी कप में फ्रांस की खिताबी मुहिम खत्म हो गई है। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। 72वें कौमी फिल्म अवार्ड्स का ऐलान कर दिया गया है। फिल्म आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड दिया जाएगा। ब्रह्मा योगम के लिए ममूती और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को मुश्तरका तौर पर बेहतरीन अदाकार का अवार्ड दिए जाने का ऐलान किया गया है। तृणमूल कांग्रेस के जो 20 सरकार ने पार्लियामेंट नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए थे, उन्हें लोकसभा में अलहदा ग्रुप के तौर पर बैठने के लिए स्पीकर की मंजूरी मिल गई है। अहमदाबाद में आतिशबाजी का सामान तैयार करने वाली फैक्ट्री में जबरदस्त आग लगने से 5 अफराद की मौत हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस वाक़े पर दुख का इजहार किया है। अबनाए हुरमुज के मामले पर अमरीका और ईरान के दरमियान लड़ाई में तेजी आ गई है। अहम बुनियादी ढांचे और फौजी ठिकानों पर हमले किए गए हैं। ओलंपिक खेलों में तमगे जीतने वाली मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहीन ग्लासगो में होने वाले दौलत मुश्तरका खेलों की इफ्तिताही तकरीब में भारत की परचम बरदार खिलाड़ी होंगी। और फीफा वर्ल्ड कप में तीसरे मुकाम के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM2 103.5 MHz पर रात के 9:30 हुए हैं।
2: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
3: चिनार की छांव तले किताबों का एक खूबसूरत जहां आपका इंतजार कर रहा है। आइए तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल में, जहां मिलेंगी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के 200 से अधिक बुक स्टॉल्स, साथ ही क्रिएटिव वर्कशॉप्स, बच्चों के लिए लिटरेरी सेशंस, डिजिटल रीडिंग कॉर्नर और कल्चरल परफॉर्मेंसेस का लुत्फ उठाइए। 18 से 26 जुलाई SKICC श्रीनगर। चिनार बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद NCPUL एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर। टुगेदर वी रीड, टुगेदर वी लीड।
1: आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम पेशरफ्त।

0: लेवल पे भी हमारे पास जो लेवल ऑफ अवेयरनेस होने के बावजूद तब भी हम पूरी तरह से तैयार नहीं हैं, और जब छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते हैं तो उनका भी एक फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं हमारे यहाँ. जबकि हमें ये मालूम होना चाहिए कि जब हमारे यहाँ वी आर वल्नरेबल टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स, तो उसके हिसाब से जो लेवल प्रिपेयर्डनेस की होनी चाहिए वो भी बहुत हाई होनी चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके बावजूद कि गवर्नमेंट ने भी बहुत कोशिशें की, बहुत ऐसी इस तरह की पिछले 10-15 साल में हमने देखा कि बहुत सी कोशिशें की जा रही है गवर्नमेंट लेवल पे, इंस्टीट्यूशनल लेवल्स पे, कैरिंग कैपेसिटी के बेसिस पे लोगों को अवेयर किया जा रहा है, ट्रेन किया जा रहा है, स्कूल्स कॉलेजेस एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में लोगों को अवेयर किया जा रहा है, और मीडिया के थ्रू, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इसके थ्रू हर जगह ये अवेयरनेस फैलाई जा रही है और लोगों को ये अवेयर किया जा रहा है कि इनकेस इस तरह डिफरेंट टाइप के डिजास्टर होंगे तो किस तरह से कोप अप करना है, किस तरह से हमें एक्ट करना है, रेस्पॉन्स मैकेनिज्म क्या होना चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे और पब्लिक लेवल पे कैसा होना चाहिए. तो उस बारे में बहुत कोशिशें हो रही है 10-15 साल से, लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहूंगा कि जिस लेवल की होनी चाहिए उस वक्त कोशिशें तो है, लेकिन उस लेवल तक हम नहीं पहुंच पाए.
1: परवेज साहब, आप माहिर हैं इस चीज के, अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस के, और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप जो निभा रहे हैं इस वक्त एज डीन. बात होगी डिजास्टर मैनेजमेंट की, लेकिन ये जो हमारा इलाका है, ये जो रीजन है, ज्योग्राफिकली कितना वल्नरेबल है, ये बहुत
0: जी जी जी जम्मू एंड कश्मीर यूटी की मैं जहां तक बात में करूंगा कि हमने देखा, अगर हम पास को छोड़ के 2004 से ही ले लिया हम, तो नहीं पहले 2004 से ही हमारे यहाँ, जब 2004 में जब इंडियन ओशन सुनामी आया वो एक बड़ा ही एक माइलस्टोन था. माइलस्टोन इन द सेंस कि 2004 के इंडियन ओशन सुनामी ने हमारे नेशन को हिला के रख दिया, क्योंकि उसका इंपैक्ट बहुत पड़ा हमारे मुल्क पर, बड़ा उसका इंपैक्ट पड़ा. तो उस चीज ने मजबूर किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उस वक्त की हुकूमत को, कि 2005 का नेशनल डिजास्टर एक्ट इनेक्ट हुआ 2005 में. वो उसी में था कि जब 2004 का इंडियन ओशन सुनामी हुआ था. और उसके बाद आपको पता है कि 2004 में वाल्टेंगुनार में स्नो सुनामी आई.
1: बिल्कुल.
0: अच्छा, जो उसके वो भी एक इंसिडेंट था. और उसके बाद 2005 का जो हमारा अक्टूबर अर्थक्वेक है, जिसको कश्मीर अर्थक्वेक कहा जाता है. तो ये इंसिडेंट्स इस तरह से जिसने हमें मजबूर किया, या हमें इस तरह से ये किया कि हमें एक पॉलिसी रखनी चाहिए, हमें एक सिस्टम को बनाना चाहिए जो इस तरह के जब हमारे डिजास्टर्स हों. तो ये तो उस सिलसिले में आपको ये बताऊंगा कि जब वल्नरेबिलिटी की बात आती है, तो मैंने आपको पहले ही मैंने अर्ज किया कि चाहे आप किसी भी डिजास्टर की बात कीजिए, आप सुनामी के बगैर आप बात कीजिए, आप हाई विंड्स की बात कीजिए, आप लैंडस्लाइड्स की बात कीजिए, आप स्नो एवलांस की बात कीजिए, आप फ्लड्स की बात कीजिए, आप अर्थक्वेक की बात कीजिए, आपको मैं बताता चलूं कि आप जो नई क्लासिफिकेशन हुई है सिस्मिक जोन 6 में पूरी जेएनके यूटी को रखा गया है, विच इज द हाईएस्ट लेवल, मैक्सिमम लेवल जो है वो यूटी 6 को, पूरी जेएनके यूटी को लेवल 6 में हम रखें, नई क्लासिफिकेशन. पहले तो 5 तक ही थी, 4-5 के बीच में था, बट नाउ वी आर इन लेवल 6. तो उस तरह का जो ये ब्यूरो स्टैंडर्ड्स है, आप इस हिसाब से तो आपको ये जान के चले थे. तो आप हर साल आप देखते हैं कि हमारी सिचुएशन, अभी आपने देखा होगा कि पहलगाम में अभी कुछ दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ, फ्लैश फ्लड हुआ क्लाउड बर्स का, हालांकि उस पर अभी जो माहरीन है
1: 2-3 सालों से हम देख रहे हैं, इसकी क्या वजह है?
0: नहीं, मैं आपको बताऊंगा. देखिए, इसके जो जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, ये रेमिफिकेशन है उस चीज की, पहली बात. दूसरी बात, आप ये चीज करिए कि एक टेक्टोनिक प्लेट्स का जो सिस्टम है, ठीक है, ये एक इस तरह का मैकेनिज्म है, ये हम जिस जोन में है, जब टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होगी तो इस तरह के एक्शंस होंगे जब हम अर्थक्वेक की बात करेंगे. लेकिन उसके अलावा जब हम देखते हैं कि लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन, अच्छा, आपने पिछले 30 साल में 40 साल में देखो लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन पूरी वैली में, पूरी जेएनके में और स्पेशली इन द वैली हुई है. तो जब डिफॉरेस्टेशन होगी तो उसके अपने रेमिफिकेशंस हैं. भाई, आपका जब डिफॉरेस्टेशन होगा तो आपके जो सॉइल है वो वल्नरेबल हो जाएगी इरोजन को. जब इरोजन होगा तो वो इरोजन सॉइल इरोजन होगा, बारिश पड़ेगी, ये होगा तो वो जो सॉइल है, सेडमेंट है, वो पूरा आपकी वाटरवेज में चला जाएगा, रिवर्स में, स्ट्रीम्स में चला जाएगा. जब स्ट्रीम्स में चला जाएगा तो उससे आपकी एक तो आपका स्लोप खराब हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गई, आपने उसको किया, सॉइल बाइंडिंग कैपेसिटी कम कर दी, और उसके बाद आपने अपने स्ट्रीम्स को, रिवर्स को, जब वहां सेडमेंट डिपोजिशन हो गया तो जो वाटर कैरियिंग कैपेसिटी है उन रिवर्स की वो कम हो गई, तो

0: एक्चुअली उसका रिजल्ट होता है कि वी आर वल्नरेबल टू फ्लड्स, फ्रीक्वेंट फ्लड्स, आपने देखा होगा। तो ये बात आ रही है, अर्थक्वेक तो मैंने आपको बताया, लैंडस्लाइड्स मैंने बताया, जब डिफॉरेस्टेशन कर रही है आप स्लोप्स को जो नेचुरल कवर होता है उसके उसको डिवाइड करते हैं, तो जब उसको ये करते हैं तो पानी जब आता है तो वो जब अंदर ये हो जाता है तो उसके बाद वो नीचे से फिर सॉइल को ये करता है और सॉइल मूव करने लगती है, तो लैंडस्लाइडिंग भी होती है, मास मूवमेंट होती है। तो इस तरह की जो मैंने आपको बताया कि जो हमारा यूटी है ये हर तरह के ये इसके ना वल्नरेबल टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स हैं, तो इसलिए हमारी ये प्रायोरिटी है रहनी चाहिए कि हम लोग पहले ही अपने एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट हमारे पास होना चाहिए, उसके हिसाब से हमने वल्नरेबिलिटी, हालांकि कुछ स्टडीज हुई है ऐसा नहीं है। और हाँ हाँ मैं एक चीज ऐड करता रहूंगा कि अब एक और चीज है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो ग्लेशियल जो जो आप बात करते हैं क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग की, इसकी एक इमीडिएट रेमिफिकेशंस है कि अब हम वल्नरेबल है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड को भी, जिसको ग्लॉफ कहते हैं। और ये जो गुलाफ है ये बहुत जगह हुआ, चाहे साउथ अमेरिका में बहुत जगह इस तरह के हुए, नेपाल में पिछले साल हुआ 2025 में, टिल लेक है नेपाल का, वहां पे हुआ। इंडिया में भी बहुत से इस तरह के इंसिडेंट हुए, किश्तवाड़ में पिछले 2-3 साल पहले रिपोर्ट किया गया, हालांकि उसका इंपैक्ट नीचे नहीं हुआ इसलिए वो रिपोर्ट नहीं हुआ। लेकिन वी आर, जब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, तो वो डिप्रेशन ये हो रहे हैं, फिल हो रहे हैं पानी में, और जब इस तरह की सिचुएशन हो गई, चाहे वो सेडिमेंट का ये मोरेन्स का ब्रेक होना हो, अनस्टेबल होना हो, या बाकी जो इस तरह की ये होंगे जियोलॉजिकल ये होगी इंस्टेबिलिटी की वजह से, तो बहुत सी ऐसी है कि ग्लोफ जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड होगा, तो ये फ्लड जब ऑल ऑफ अ सडन जब ये पानी नीचे आ जाता है बिकॉज ऑफ मोरेन ये डिस्टेबलाइज हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो उसके बाद या आइस ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है, तो आइस की वजह से जब वो ब्रेक हो जाता है तो ये पानी एज ऑल ऑफ अ सडन डिस्चार्ज होता है, नीचे की जो सेटलमेंट्स होती है उसके डाउनस्ट्रीम वो बड़ी इफेक्ट होती है। तो पिछले सालों में हमने देखा कि अब हम वी आर वल्नरेबल टू ग्लोफ आल्सो, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ जेएनके ने, यूटी ऑफ जेएनके ने बाजाबता एक फोकस ग्रुप बनाया है ग्लोफ के लिए, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के लिए। तो उस फोकस ग्रुप का ये चीज है कि हम सारे एक इन्वेंट्री बनाएं ग्लेशियर्स के लेक्स की, और उसके बाद उनकी वल्नरेबिलिटी के हिसाब से उनको कैटेगराइज करके, ताकि गवर्नमेंट मिटिगेशन मेजर्स उठाए उस चीज़
1: से। एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है, वो ये प्रवीण साहब कि क्या एज सिटीजन्स हम इरेस्पॉन्सिबल है टुवर्ड्स अवर एनवायरमेंटल इश्यूज एंड ऑल दैट?
0: देखिए इरेस्पॉन्सिबल कहना तो ठीक बात तो, है मैं आपको बताऊंगा,
1: आप एक ओहदे पर बैठे हैं, हम भी देखते हैं कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में या डिपार्टमेंट्स में हम सेमिनार्स करते हैं या बाकी चीज उनका इनेकाद करते हैं या बाकी चीजें, लेकिन प्रैक्टिकली जो होना चाहिए इसके लिए?
0: जी मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि जिस हिसाब से एक एनवायरमेंटली फ्रेजाइल जोन में एरिया में हम रहते हैं, और उसके हिसाब से हमें ये पता है, अवेयरनेस लेवल ये भी है कि एनवायरमेंट के साथ जब हम खिलवाड़ करेंगे उसके नतीज क्या होंगे, कितने बुरे होंगे, चाहे वो फॉरेस्ट के साथ, चाहे वो सॉइल के साथ, चाहे वाटर के साथ, वाटर पोल्यूटेड है, हमारी जो सारी वाटर बॉडीज हैं वो पोल्यूटेड हैं अब, जबकि ये फ्रेश वाटर लेक्स थी, फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स थी, रिवर्स थे। लेकिन जिस हिसाब से हम कॉन्शियस हमें होना चाहिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बाद, ऐसा नहीं है। और इसमें मैं आपको बुलाऊं बिला तफर्क, चाहे पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़ हो, जिस हिसाब से देखिए हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कॉन्शियस सिटीजन, अगर मैं एक पढ़ा लिखा हूं और मैं अवेयर हूं तो मुझे ये सबसे पहले स्टार्ट करना है, आई नीड टू स्टार्ट फ्रॉम माई ओन फैमिली। जब मैं फैमिली में अवेयरनेस फैलाऊंगा, उनको इन चीज से अवेयर करूंगा, तो उसके बाद मैं अपनी कम्युनिटी में निकल सकता हूँ, फिर कम्युनिटी से अपनी सोसाइटी पे निकल सकता हूँ। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें एट डिफरेंट लेवल्स होने चाहिए, हम उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरी तरह से फुलफिल नहीं करते हैं, वरना जो हमारी लेवल ऑफ अवेयरनेस कॉन्शियसनेस होनी चाहिए वो बहुत हाई होनी चाहिए। क्योंकि यही बात अगर हम कंपेयर करते हैं अपने आप को डेवलप पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, डेवलप पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ चूंकि हमारा पॉपुलेशन साइज भी ठीक है, अच्छा खासा है, डेवलप पार्ट ऑफ वर्ल्ड में पॉपुलेशन साइज पे कंट्रोल है, उनकी एनवायरमेंट के साथ जो अवेयरनेस है उस पे उनके बारे में है, एंड दे आर कॉन्शियस, उनको पता है कि उनको अपने एनवायरमेंट के रिलेटेड उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनको क्या उनका रोल है, वो इस पर डिपेंडेंट नहीं होती सिर्फ गवर्नमेंट का रोल है, गवर्नमेंट को ही करना चाहिए, नहीं नहीं, जो वहां के सिटीजन है, पब्लिक है, दे आर ऑल्सो अवेयर, वो इक्वली अवेयर है और इक्वली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे मिसिंग
1: नहीं है।
0: या जो यहाँ पे
1: आपको लगता है कि ये जो फुकदान है थोड़ा सा जो हमें करना चाहिए वो नहीं हो रहा है, कि सरकारी सतह पर और गैर सरकारी सतह पर, या सपोज आप

0: आपके पास बहुत सारे रिसर्चर्स काम करते होंगे, दिन रात वो काम करते हैं, कि आपकी रिकमेंडेशंस क्या काम कर सकते हैं इसके बारे में कि
1: जी
0: आप,
1: जी
0: आप गवर्नमेंट को ये कहें कि हमने जो ये रिकमेंडेशन बनाई है, हमने कुछ तहकीक की है, इस पर आप अमल दरामद कीजिए।
1: जी जी, एक एक कुछ कुछ चीज़ें पिछले कुछ सालों में बड़ी खुश आयंद हुई हैं। वो खुश आयंद इस वजह से हुई है कि मतलब आप जो गवर्नमेंट है डिफरेंट लेवल्स पे, वो आप रिसर्चर्स को एकेडमिया को पॉलिसी मेकिंग में इंक्लूड कर रही है, उनको इन्वॉल्व कर रही है। पिछले कुछ सालों में हमने इस तरह का देखा कि हमारे यहाँ एक डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट RRR है, जो गवर्नमेंट का एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है। उन लोगों ने भी ये कहा कि उन्होंने कन्फाइंड अपने आप को इस पे नहीं रखा, बल्कि उन्होंने रिसर्चर्स को, एकेडमिशियंस को फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज अपनी जगह से और आउटसाइड J&K ऑल्सो भी उन्होंने इन्वॉल्व किया, ताकि जब हम सोल्यूशंस की बात करें, जब हम मिटिगेशन मेजर्स की बात करें, प्रिपेयरनेस की बात करें, तो रिसर्चर्स जिनका

0: वजह से हुई है कि मतलब आप जो गवर्नमेंट है डिफरेंट लेवल्स पे, वो आप रिसर्चर्स को एकेडमिया को पॉलिसी मेकिंग में इंक्लूड कर रही है, उनको इन्वॉल्व कर रही है। पिछले कुछ सालों में हमने इस तरह का देखा कि हमारे यहाँ एक डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है, RRRR है, जो गवर्नमेंट का एक डिजास्टर मैनेजमेंट का डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है। उन लोगों ने भी ये कहा कि उन्होंने कन्फाइंड अपने आप को इसमें नहीं रखा, बल्कि उन्होंने रिसर्चर्स को, एकेडमिशियंस को फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज अपनी जगह से और आउटसाइड J&K ऑल्सो भी उन्होंने इन्वॉल्व किया, ताकि जब हम सोल्यूशंस की बात करें, जब हम मिटिगेशन मेजर्स की बात करें, प्रिपेयरनेस की बात करें, तो रिसर्चर्स जिनका जिस पे रिसर्च है, इनका जो एकेडमिया है यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, रिसर्च इंस्टीट्यूट में, उनको भी इन पॉलिसी मेकिंग ग्रुप्स का पार्ट बनाया जाए। इसी रिसेंटली एक टास्क फोर्स बनाया गया है फॉर डिफरेंट डिजास्टर्स, डिजास्टर मैनेजमेंट RRRR डिपार्टमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ होम है हमारे यहाँ J&K यूटी में, तो उसके अंडर एक टास्क फोर्स बनाए फॉर डिफरेंट डिजास्टर्स। फॉर एग्जाम्पल फ्लड के लिए अलग टास्क फोर्स, ग्लॉफ के लिए अलग टास्क फोर्स, लैंडस्लाइड्स के लिए अलग टास्क फोर्स, अर्थक्वेक्स के लिए अलग टास्क फोर्स। तो उसमें इन्वॉल्व तो एक तो एकेडमी क्या एकेडमिया और रिसर्चर्स को यहां, एंड आउटसाइड स्टेट के भी जो नेशनल लेवल के रिसर्चर्स थे एकेडमी का, उनको भी इन्वॉल्व किया, उनको भी उनका मेंबर बना के उसके बाद उनकी एक सीरीज ऑफ मीटिंग्स हुई, रिकमेंडेशंस हुई, वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे ताकि वो इस तरह के मेजर्स को ये रिकमेंड कर सके जिनको गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करेगा एट डिफरेंट लेवल्स। यस, सो व्हाट जो पहले शायद कहीं पे, मैं नहीं बोलूंगा नहीं होते थे, आइसोलेटेड केसेस में होते थे, लेकिन अब पिछले कुछ सालों में एकेडमिया का, रिसर्चर्स को, पॉलिसी मेकर्स को, ब्यूरोक्रेट्स को, सबको एक टेबल पे लाके एक डिस्कशन होता है, डिबेट्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, और उसके बाद आइडियाज का जब आदान प्रदान होगा तब पॉलिसी मेकिंग की बात होती है और डॉक्यूमेंटेशन की बात होती है, जो पिछले साल में उसको उस एक्टिविटी को गवर्नमेंट लेवल पे एनकरेज किया जा रहा है।
1: राइट, अच्छा, डिजास्टर मैनेजमेंट में अर्ली वार्निंग सिग्नल्स होती हैं,
0: अर्ली वार्निंग सिस्टम्स।
1: हाँ, जी
0: जी, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स में आपको ये बताऊंगा सबसे इंपॉर्टेंट जो रिकमेंडेशंस होती हैं पब्लिक अवेयरनेस के बारे में, बाकी चीजों के बारे में, लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम जो कि डिजास्टर्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं आपको ये बताऊंगा अर्ली वार्निंग सिस्टम्स का कि ठीक है, आज हमारे पास सेंसर्स हैं, आज हमारे पास सैटेलाइट्स हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं, हमारे पास सेंसर्स हैं, हमारे पास ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस हैं, तो हम लोग जी इस तरह का एक सिस्टम इन प्लेस रख रहे हैं कि ताकि हम कोशिश करते हैं कि जितना अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हमारे एक्यूरेट हों, वैलिडेटेड हों और सोफिस्टिकेटेड हों, ताकि हम पहले से अपनी अपनी पब्लिक को, अपनी पॉपुलेशन को अवेयर कर सकें। लेकिन उस लेवल पर काम हो रहा है, लेकिन इस हद तक एट द नेशनल लेवल, एट द यूटी लेवल ऑल्सो काम हो रहा है, लेकिन मैं बताऊंगा कि अभी बहुत कामयाबी उस सिलसिले में नहीं हुई है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन को सोफिस्टिकेटेड बनाया जा रहा है, ठीक है, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को इन प्लेस रखा जा रहा है, उनके लिए कहां कहां पे रखना है, किस तरह के सिस्टम्स होने चाहिए, उनका वार्निंग टाइम कितना होना चाहिए, किस तरह के, तो इस तरह उस पर काम हो रहा है, और ये वन ऑफ द मेजर रिकमेंडेशंस है आजकल की जो गवर्नमेंट की भी है और जो नेशनल इंस्टीट्यूशंस की भी है जिनको इन्वॉल्व किया गया, कि अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को इन प्लेस रखा जाए ताकि डिफरेंट टाइप के डिजास्टर्स को प्रेडिक्ट किया जा सके या उससे पहले फोरवार्न किया जा सके, ताकि इफेक्टिव स्टेप्स उठाए जाए किन की तरफ से, एट गवर्नमेंट लेवल पे भी और पब्लिक लेवल पे भी। और ये अर्ली वार्निंग सिस्टम बहुत काम करते हैं, उसकी एक अच्छी सी मिसाल है उड़ीसा के जब साइक्लोन्स में ये आते थे, उनकी बड़ी एक मिसाल है कि भाई जब
1: डज इट हेल्प,
0: ये डज रियली हेल्प, और छोटी छोटी चीजें आपकी अर्ली वार्निंग सिस्टम हो सकती है, आपका रेडियो एक मीडियम हो सकता है। मैं आपको उड़ीसा की मिसाल दूं, जिसमें चाहता हूं एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूं। उड़ीसा में साइक्लोन आया तो वहां पे बहुत लोग की डेथ होगी, बड़ी वो ये इस तरह का हुआ, और जब फिर साइक्लोन 8-10 साल के बाद आए, तो जो उन्होंने एक्सपीरियंसेस उससे ये की थी, गेन की थी, उससे उन्होंने क्या किया, उन्होंने उड़ीसा के जो फिशरमैन कम्युनिटी है उनमें FM रेडियो का ये किया, अवेयरनेस किया। तो FM पे क्या होता था कि उनमें प्रोग्राम्स होते थे, बड़े इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स, गाने चलते थे, वो चलते थे, तो लोग फिशरमैन कम्युनिटी उस रेडियो के ये पे थे। तो ये जब हुआ कि जब उनका प्रेडिक्शन हुआ कि भाई साइक्लोन आने वाला था, उन्होंने इसी के थ्रू, बिकॉज जो पॉपुलेशन थी, दे वर ग्लूड टू द रेडियो सेट्स, तो अच्छा, तो उन्होंने उसी मीडियम को इस्तेमाल किया, उस पर उन्होंने उसको ये किया, ब्रॉडकास्ट किया कि सुनामी आने, ये साइक्लोन आने वाला है, लोग सेफ जोन की तरह भाग गए, और हुआ ये कि उसने बहुत हद तक डिस्ट्रक्शन को, लाइफ और इसकी डिस्ट्रक्शन को बहुत हद तक मिनिमलाइज कर दिया. सिंपल एक इंटरवेंशन था इन द फॉर्म ऑफ एन एफएम रेडियो. सो वी आर सेइंग दैट देयर

0: and the small interventions also and larger technological interventions also.
1: Right,
0: वही काम हो रहा है
1: जैसे इस वक्त AI का जमाना है.
0: जी जी जी.
1: तो कितना काम आ सकता है ये?
0: जी, AI का जो जमाना है, AI की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप बहुत सी चीजों को सिमुलेट कर सकते हैं AI में. कि आप लोग प्रिडिक्टिव मॉडलिंग कर सकते हैं कि मगर अगर इस तरह का होगा तो फिर क्या हो सकता है, फिर क्या हो सकता है. जब आप इस तरह की चीजें करेंगे तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, सो यू आर यूजिंग योर ब्रेन, यू आर यूजिंग योर एक्सपर्टाइज एंड यू आर ऑल्सो यूजिंग द टेक्नोलॉजिकल, ये उन सबका एक इंटीग्रेशन करके आप प्रिडिक्शन कर सकते हो, आप सिमुलेट सिचुएशन को कर सकते हो और उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हो. तो इसमें AI का बड़ा इंटरवेंशन है, AI का जमाना है. और मुझे आप बताइए कौन सा फील्ड आज है जिसमें AI की इंटरवेंशन नहीं है, और पर्टिकुलरली AI इन डिजास्टर मैनेजमेंट भी इस तरह का है. और माशाल्लाह मैं आपको ये कराऊं कि हमारा स्कूल जो है, मैं डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है, हम लोग एक डिजास्टर मैनेजमेंट RRR के साथ एक इस तरह का एक ट्रेनिंग टेस्टिंग प्रोग्राम भी कर रहे हैं जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिजास्टर मैनेजमेंट पे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे. तो हम चाहते हैं कि इस तरह की एक इनिशिएटिव्स दिए जाए जिससे कैपेसिटी बिल्डिंग हो और ट्रेनिंग कैंप्स हो, स्टूडेंट्स को अवेयर किया जाए और पब्लिक को अवेयर किया जाए, पॉलिसी मेकर्स को अवेयर किया जाए. जब हम अपने स्टूडेंट्स को अवेयर करते हैं तो हमारा ये होता है कि ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है. जब ये स्टूडेंट कोई चीज सीखता है तो ये अपने घर जाता है, अपनी फैमिली को अवेयर करता है. ये फैमिली जब निकलता है तो ये दैट इज वाई, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हमें पूरी कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना है.
1: right.
0: जैसे आज हम अपनी फैमिली से स्टार्ट करते हैं तो आज हमें अवेयरनेस मोहल्ला कमिटीज में, मस्जिद कमिटीज में, ठीक है, लोग आते हैं मस्जिद में, 5 मिनट आपने डिजास्टर मैनेजमेंट पे दे दिए, ठीक है, आपने मोहल्ला कमिटीज को इन्वॉल्व, आपने नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व किया, आपने स्कूल्स को, हायर सेकेंडरीज को, कॉलेज को, यूनिवर्सिटीज को, उनका एक रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और जो गवर्नमेंट का डेडिकेटेड डिपार्टमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट RRR, उसका तो है ही रोल. और ऐसा है पिछले 8-10 साल में हमने देखा उन्होंने खातिर ख्वाह काम किया है, वो लोग कर रहे हैं, दे आर डूइंग देयर बेस्ट पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन के लिए, यानी ये जोनेशन के लिए, चाहे वो लैंडस्लाइड जोनेशन है, चाहे अर्थक्वेक जोनेशन है, चाहे वो ग्लेशियर मैपिंग करवा रहे हैं, मतलब बहुत सारे फील्ड विजिट्स करा रहे हैं डिफरेंट ग्लेशियर्स.
1: मजीद कुछ करने की जरूरत है?
0: नहीं, मजीद तो देखिए
1: बेहतरी आ सकती है,
0: नहीं जरूर
1: ज्यादा बढ़ सकता है,
0: बेहतरी आ सकती है. देखिए जब भी किसी चीज के लिए आप कोई भी इन्वेंट्री बनाए, आप मिटिगेशन उठा रहे हैं, आप प्रिपेयर्डनेस लेवल की बात कर रहे हैं, आप इसकी, तो उनके लिए फंडिंग चाहिए होती है. तो फंडिंग की भी जरूरत है, चाहे वो एट द यूटी लेवल और एट द सेंट्रल लेवल. हालांकि एक नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड भी है, एक नेशनल फंड है, सीएसआर फंडिंग भी होती है, तो वो भी एक रोल है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडरस्टैंड करनी है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर, उनको अंडरस्टैंड कर, देवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स देयर कम्युनिटी. और तब ये जब मिलजुल के काम करेंगे तो तब बहुत सी चीजें हो सकती है. तो अवेयरनेस लेवल को और बढ़ाना, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स को और ये करना, चलिए ब्रॉडन करना उसका ये जो एम्बिट है. अच्छा, सोफिस्टिकेटेड इन जो पॉलिसी मेकर्स हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, पॉलिसी मेकर्स हो, रिसर्च हो, एकेडमी, उनको मोर इन्वॉल्व करना, जो रिसर्च हो रहा है उसको फिर पॉलिसी मेकिंग में इंकॉर्पोरेट कर, इंक्लूड करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो ठीक है, तो करने की जरूरत है, कर रहे हैं, और भी कुछ करने की जरूरत है जिस बारे में आई थिंक द गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस अबाउट इट. बट एट द सेम टाइम आई वुड एक्सपेक्ट द पब्लिक ऑल्सो, यस पब्लिक को भी जब इन्वॉल्व करेंगे वो लोग, दे वुड गो वन स्टेप फर्दर. द ओनली थिंग इज वी नीड टू इन्वॉल्व देम, वी नीड टू मेक देम कॉन्शियस अबाउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अबाउट देयर रोल्स.
1: पर सर, तो कैसा लग रहा है अभी आपको कि देयर शुड बी मोर, आई मीन, ए सॉर्ट ऑफ यू नो प्रोग्रेस ऑन द पार्ट ऑफ एजुकेशन इनिशिएटिव पर्टिकुलर बिकॉज यू बिलोंग टू यूनिवर्सिटी. आपको पता है, आपकी नजर है इन सभी चीजों पर, क्या लग रहा है आपको, कैसा होना चाहिए?
0: देखिए जहां तक मेरा ताल्लुक है, जहां तक हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का इस तरह के इश्यूज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है.
1: जियोलॉजी और ज्योग्राफी, हाँ, बड़े दो इंपॉर्टेंट पिलर्स बन रहे हैं.
0: जी देखिए, मैं जिस स्कूल को बिलोंग कर रहा हूँ जिसका मैं डीन हूँ, स्कूल ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, इसमें हमारे 4 डिपार्टमेंट्स हैं. जो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की बात करता हूँ, और चाहे ज्योग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी है, डिपार्टमेंट ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स है, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस है. ये ऐसे डिपार्टमेंट है जो जिसकी जहाँ आप किसी भी स्टडी को, चाहे इंटरडिसिप्लिनरी की बात करें, चाहे डिसिप्लिनरी की बात करें, हम लोग इंटीग्रेटेड तरीके पे इकट्ठे काम कर सकते हैं, एंड वी कैन कम अप विद

0: सॉल्यूशंस, ठीक है, क्योंकि इन सब्जेक्ट्स में बहुत ज्यादा ओवरलैप है, ठीक है। जैसे मैं डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करूं, ज्योग्राफी एक डिसिप्लिन है इस तरह का जहां पे उसका जो मैंडेट ही है, जहां पे आप सोशल एनवायरनमेंट और फिजिकल एनवायरनमेंट की इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो दोनों एस्पेक्ट्स को, क्योंकि आप फिजिकल एनवायरनमेंट को स्टडी कीजिए लेकिन उसके इंपैक्ट को सोशल सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसको नहीं स्टडी करेंगे तो इनकम्प्लीट है। सो ये हमें ये सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट एक एडवांटेज है कि हमें एक प्लेटफॉर्म देता है कि जहां पे हम फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट की इंटीग्रेशन की बात करें, जब हम किसी चीज को स्टडी करें तो दोनों एस्पेक्ट को स्टडी करें एंड देन वी कैन कम अप विद सॉल्यूशंस। जहां तक जियोलॉजी की बात है, उनका एक अपना इंपॉर्टेंट रोल है, जब हम अर्थक्वेक्स की बात करते हैं, लैंडस्लाइड्स की बात करते हैं, बाकी चीजों की इस तरह की जहां पे अर्थ के स्ट्रक्चर की बात आएगी तो वहां बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जियोइन्फॉर्मेटिक्स कहां, जहां लेटेस्ट, जहां पे आप उन जियोइन्फॉर्मेटिक्स उन टेक्निक्स की बात करें, चाहे वो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, चाहे वो रिमोट सेंसिंग है, चाहे वो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, जीपीएस है, तो ये जो सारे आज ये जो ये मॉडर्न टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, तो जियोइन्फॉर्मेटिक्स है। एनवायरमेंटल साइंसेज उनका भी एक अपना एम्बिट है जहां वो बात करते हैं पूरे एनवायरमेंटल साइंसेज की, जहां एनवायरमेंट एज सच जो हमारा फिजिकल एंड सोशल एनवायरमेंट है। तो ये जो इंटीग्रेशन है, ये जो स्कूल का ये है दैट वी आर ट्राइंग टू बेसिकली वर्क टुगेदर, रिसर्च के हमारे सब्जेक्ट्स भी बड़े ये कॉमन है, और उसके अलावा हम चाहते हैं कि जहां रिसर्च की बात आएगी वहां हम लोग अपने रिसोर्सेज को, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं चाहे वो मटीरियल रिसोर्सेज हैं, उनको पुल अप करें, और ताकि हम लोग बेटर आउटपुट दे सके, बेटर डिलीवरेबल दे सके, और जो हमारा रिसर्च है वो अपडेटेड हो और अप टू अ सर्टेन स्टैंडर्ड हो, जहां हम रियलिस्टिकली हम सॉल्यूशंस दें सोशल इश्यूज को। तो जहां तक आपने एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का, तो हमारा जो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है, इट हैज टेकन अ लीड रोल इन दैट, एंड फॉर दैट आई एम वेरी मच मतलब ना हम थैंकफुल टू द अथॉरिटीज इन द कश्मीर यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर नीलोफर खान द वाइस चांसलर, ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब, वो पहले से हमारे बड़े इंटरेस्टेड हैं इसमें, जहाँ पर इन्वायरमेंटल इशूज़ होते हैं, सोशल इशूज़ होते हैं, एंड हमें बड़ा सपोर्ट मिलता है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, प्रोफेसर नसीर इकबाल रजिस्ट्रार की तरफ से, या बाकी डीम रिसर्च की तरफ से, या इस से, तो वी गेट ऑल सपोर्ट, सो दैट हम इन इशूज़ को जो पर्टेनिंग टू सोसाइटी है, सोशल इशूज़ है, इन्वायरमेंटल इशूज़ है, तो वर्कशॉप्स हैं, ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, कॉन्फ्रेंसेज हैं, सेमिनार्स हैं, जहाँ पे नॉट ओनली स्टूडेंट्स को बल्कि रिसर्चर्स को बल्कि पब्लिक को भी इन्वॉल्व किया जाए। सो उस सिलसिले में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमने पिछले कुछ कई सालों में हमने यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने क्या किया, अंडर इट्स आउटरीच प्रोग्राम्स हम लोग लोकेलिटीज में जा रहे हैं, हमने बहुत से जैसे सोशल वर्क डिपार्टमेंट है उनको इन्वॉल्व किया है, डिजास्टर मैनेजमेंट तो है ही, ज्योग्राफी जियोलॉजी ये तो है ही, तो हम लोग पर्टिकुलरली ज्योग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ने क्या किया, उन्हें आउटरीच प्रोग्राम्स में वो जा रही हैं डिफरेंट लोकेलिटीज में, जो हमारे ये जैसे डल वाला एरिया है, या बाकी जो हमारे फ्लड प्रोन एरियाज हैं इस तरह, या ऊडी है हमारा जो अर्थक्वेक प्रोन एरिया है इस तरह, ताकि हम लोगों के साथ मिक्स हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करें, हम लोग उनके ऑन द ग्राउंड रियलिटीज को अंडरस्टैंड करें, और उसके हिसाब से हम अपनी जो रिसर्च है उसको आगे ले, या हमने DMRRR के साथ हमारे डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ने फील्ड विजिट्स की टू डिफरेंट इस तरह के लेक्स जिनको पॉसिबिलिटी थी कि वाल के ग्रोफ इवेंट्स हो सकते हैं, तो इस तरह के लेक्स हमने ये किए जी जी। तो इस तरह तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का कैपेसिटी बिल्डिंग में, ट्रेनिंग में, जहां पे स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया, जहां पे पब्लिक को इन्वॉल्व किया जाए, एनजीओज को, तो उसमें बड़ा रोल है, और माशाल्लाह यूनिवर्सिटीज कर रही हैं उसमें। डीएम डिजास्टर मैनेजमेंट RRR भी पिछले कई सालों से उन्होंने क्या किया, पिछले 2-3 साल से वो इन्वॉल्व कर रही हैं कैरिंग कैपेसिटी में, इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग में, ट्रेनिंग में, इनमें इन्वॉल्व कर रही है यूनिवर्सिटीज को, ऑल द यूनिवर्सिटीज विद इन J&K, चाहे वो कश्मीर यूनिवर्सिटी हो, चाहे इस्लामिक यूनिवर्सिटी हो, चाहे जम्मू यूनिवर्सिटी हो, तो इस तरह के इन्वॉल्व कर रहे हैं इनको, या NIT हो, तो इनको इन्वॉल्व कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो ये बात पहुंचे, ट्रेन करें, ताकि आपको पता है स्टूडेंट सबसे बड़ा ये चीज होता है कि भाई स्टूडेंट जाता है तो सबसे पहला काम अगर उसको अवेयर किया जाए, आप घर जाओगे तो सबसे पहले अपने फैमिली मेंबर्स को ट्रेन करो, मस्जिद में जाते हो तो मस्जिद में अपनी इनको ट्रेन करो, प्लेसेस ऑफ वर्शिप इरेस्पेक्टिव ऑफ दिस थिंग, वेदर इट इज जम्मू, एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, इट कैन आल्सो बी बेसिकली ना इन्वॉल्व, उसको भी एक प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है ताकि लोग तक ये मैसेज पहुंचाई जा सके।
1: थ्रू दिस प्रोग्राम क्या होगी,
0: देखिए हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि हमारी जो UT है ये डिजास्टर प्रोन एरिया है, डिजास्टर वल्नरेबल एरिया, हमें ये कोशिश करनी है, हमें सिर्फ ये नहीं कि गवर्नमेंट को भी अवेयर होना चाहिए, गवर्नमेंट को भी फर्दर स्टेप्स उठाने चाहिए, अच्छा गवर्नमेंट को भी डिफरेंट लेवल्स पे अपना एक प्रोएक्टिव रोल रखना चाहिए, बेटर कोऑर्डिनेशन होनी

0: चाहिए डिपार्टमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, उसकी भी जरूरत, वो बहुत अहम है। और उसके साथ साथ जो पब्लिक है उसको भी अवेयर होना चाहिए कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अपने लेवल पे, छोटी सी लेवल पे वो क्या क्या कर सकते हैं, चाहे इंडिविजुअल लेवल पे, चाहे कलेक्टिव लेवल पे, और किस तरह से वो जो डिजास्टर के जो इम्पैक्ट्स होते हैं उनको मिनिमाइज कर सके, तो उसमें वो हमें अंडरस्टैंड।
1: और साहब आपका बेहद शुक्रिया, एक अहम मौजू पर आपने बात की, और हमें उम्मीद है इस प्रोग्राम की वसादत से जो भी ये प्रोग्राम सुनेंगे हमारे सामीन, तो उन तक ये बात पहुंची होगी कि कितना हमें कॉन्शियस होना चाहिए अपने एनवायरनमेंट के तहत और क्या रोल होना चाहिए हमारा। तो इसी के साथ आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होंगे, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।

0: अभी आप समाप्त कर रहे थे प्रोग्राम पेशरफ्त। इस प्रोग्राम के पेशकार हैं वसीम फारूक। यह आकाशवाणी श्रीनगर है।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
0: ईशा आकाशवाणी श्रीनगर, मीडियम वेव 78.8 मीटर ते FM2 73.5 में घर्षण पेट रात संज 10 बजे समीन पेश छु फरमाइशी कशरन बतन हिंद प्रोग्राम तुहज फरमाइश। प्रोग्राम करम पेश रशीद निजामी।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा कर दी गई है। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को
1: अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
2: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, इट विल मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है। इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
0: ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई। राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नबीदास और रूपाश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर को और वेकोम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा कांडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गातात्र रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई।
3: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी वस्त्राल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग से बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय को भी मंजूरी दे दी। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय DRI ने देश में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए। इसके अंतर्गत विदेश से तस्करी कर लाया गया 15 किलोग्राम सोना और 20 किलोग्राम चांदी जब्त की गई, जिसकी कुल कीमत लगभग 22 करोड़ रुपए है। साथ ही 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा भी जब्त की गई। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन अभियानों में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर परिणाम पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार CBSE ने इस वर्ष से 10वीं कक्षा के लिए 2 बोर्ड परीक्षाएं शुरू की थी। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पवित्र अड़प्पा बीजे अनुष्ठान आज पुरी के श्री गुंडीचा मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न हो रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच देर रात 2:30 बजे

0: Bulletin.
1: ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। शब के 11:10 हुए हैं। आज की नशरियात बर्खास्त करने से पहले एक नज़र डालते हैं कल हमारे यहाँ से नशर होने वाले चंद प्रोग्रामों पर। रात 9:30 पर हिंदी मुबाहिसा पेश होगा, संसद के समक्ष मुद्दे। शब 10:00 फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम पेश होगा, आपकी फरमाइश। प्रोग्राम पेश करेंगे जावेद अंद्राबी। सुबह का ही प्रोग्राम नशर होगा सुबह 6:35 पर। लाइव मॉर्निंग शो पैम सुबह आप सुनते हैं सुबह 7:10 पर। सुबह 8:15 पर सन तारीख प्रोग्राम में डॉक्टर मुमताज़ यत्तू और सतीश विमल के दरमियान गुफ्तगु होगी, मौजू है कासिम बाग हाईगाम सोपोर। स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम खामोशी कुदरत की जुबान है ब्रॉडकास्ट होगा सुबह 8:45 पर। आज की सुर्खियां पेश की जाएंगी सुबह 9:00। जेके बैंक डायरी, ये स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम आप सुनते हैं सुबह 9:45 पर। एक और स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम रेडियो साथी सुबह 10:00 पेश होगा। प्रोग्राम हुनहार आप सुनेंगे सुबह 10:30 पर। समीन कल मारूफ कुलोकार अली मोहम्मद शेख की बरसी है, इस मौके पर सुबह 11:00 हमारी आर्काइव से लिया गया प्रोग्राम आबशार में इन्हीं के साथ एक इंटरव्यू पेश होगा। उर्दू गजलें आप सुनेंगे 12:10 पर और चंद कश्मीरी गजलें दिन में 2:15 पर पेश की जाएंगी। कश्मीरी गजलें आप दिन में 12:40 पर भी सुनेंगे। मगरबी मौसीकी का हफ्तेवार प्रोग्राम संडे रिक्वेस्ट शो ब्रॉडकास्ट होगा दिन में 1:10 पर। दिन में 2:30 पर हमारी शोबे खबर का तैयार करदा प्रोग्राम नई मंजिलें पेश होगा। पहाड़ी प्रोग्राम 4:00, पंजाबी प्रोग्राम 4:30 पर और गुजर प्रोग्राम शाम 5:00 पेश होता है। शाम 6:05 पर प्रोग्राम पेश होगा गर्मी बान हिंद खतरा। हालात हाजरा का प्रोग्राम शहरबीन शाम 7:00 और वादी की आवाज़ प्रोग्राम रात 8:00 ब्रॉडकास्ट होता है। सामीन ये थी तफसील कल हमारे यहाँ से नशर होने वाले चंद प्रोग्रामों की। मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन की आवाज़ है। शब के 11:12:40 हुए हैं। हमारी आज की नशरियात अब यहीं पर बर्खास्त होती है। कल सुबह 6:28 पर मामूल की नशरियात लेकर हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। शब खैर। जय हिंद।

0: उसको हम कहते हैं होल्डिंग शेयर्स इन स्टॉक एंड ट्रेड। तो अगर ऐसा होता है तो उसमें अलग से एक खाता खोला जाता है जिसमें ब्रोकरेज और स्टैम्प ड्यूटी दिखाई जाती है, बाकी ये आपके शेयर्स की प्राइस का हिस्सा ही बनता है। अगर आप इसको आयकर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं, क्योंकि आयकर की डेट चल रही है, मैं गेस कर रहा हूं कि शायद नाथ साहब वो पूछना चाह रहे हो, तो इसको आप अपनी परचेज प्राइस में से ऐड करके या सेल में से घटा के आप अपना नेट कैपिटल गेन निकाल सकते हैं।
1: दिल्ली से हमारे साथ राजीव जुड़ रहे हैं। राजीव जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: नमस्कार मार्केट मंत्रा जी, ये जैसे मैंने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में लगभग 50% आईटी सेक्टर में लगा रखा है, तो इस महीने रुकना चाहिए कि सेल कर दूं सर? कुछ हल्का फुल्का प्रॉफिट है।
0: राजीव जी का बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आईटी सेक्टर निरंतर चर्चा में प्राची और निश्चित बना हुआ है। आप देख ही रहे हैं, कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी एआई से खतरा, कभी लेऑफ्स का खतरा, कभी अमेरिका में मंदी का खतरा, कभी दुनिया में मंदी का खतरा, बहुत रोलर कोस्टर राइड आईटी सेक्टर की आ रही है। तो राजीव जी, मैं सलाह दूंगा, आपका जो विचार है अच्छा है। अगर आप अभी मुनाफे में है तो बुरा विचार नहीं है कि आप अपना प्रॉफिट बुक कर लें, और प्रॉफिट बुक करके और इसको नए सिरे से आप कुछ और सेक्टर्स का भी चयन कर सकते हैं। आईटी सेक्टर में तो लगा ही सकते हैं, पर मैंने अभी कुछ सेक्टर्स का नाम लिया, एफएमसीजी है, डिफेंस है, रिन्यूएबल एनर्जी है, ऑटोमोबाइल्स जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फोकस्ड है उन पे लगा सकते हैं। तो आप इसको बड़ा हिस्सा एक ही सेक्टर में तो वैसे भी नहीं लगाना चाहिए राजीव, ये भी मैं आपको सलाह देना चाहूंगा। तो आपने काफी बड़ा हिस्सा एक ही सेक्टर में लगा रखा, और अगर आपका थोड़ा बहुत प्रॉफिट है और ऐसे माहौल में प्रॉफिट है, तो मुझे लग रहा है बुरा आइडिया नहीं होगा आप प्रॉफिट उस पर बुक करके, और नए सिरे से मार्केट में जब जब करेक्शन आए स्टैगर्ड फॉर्म में, जिसको हम एसआईपी कहते हैं, एसआईपी मतलब सब्र इन्वेस्टमेंट प्लान, उस तरीके से इसको लगाएं।
3: नेक्स्ट कॉलर इज अमित झा फ्रॉम दिल्ली। अमित,
4: नमस्कार सर।
3: नमस्कार
4: सभी को। नमस्कार सर, कोहली सर, प्रश्न मेरा मिलता जुलता ये सारे से पूछ लिया, लेकिन थोड़ा इसको मैं क्लियर करता हूँ सर
0: जी,
4: कि जैसे आपने कहा कि सेक्टर की कंपनी आपको देखना चाहिए, उनके फंडामेंटल क्या है, उनके ऑर्डर्स बुक क्या है, उनके पोर्टफोलियो सॉरी कैश फ्लो क्या है, जो भी है अच्छा होती है। तो सर मैंने तो अभी रिसेंटली 2 सालों में देखा है कि एक आईटी की आप चर्चा कर ही रहे हो, आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी सारे कुछ ठीक थे, फंडामेंटल भी ठीक थे, मैनेजमेंट भी ठीक था, बैंकिंग सेक्टर की लीडर कंपनी, नाम नहीं लूंगा जैसे आप कार्यक्रम नहीं लेना होता, सेक्टर की बैंक प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, टॉप लीडर कंपनी सर, और अचानक से उसमें ऐसी कोई न्यूज आ जाती है और स्टॉक एकदम से गिरने लगता है सर, और 30-40% टूट जाती है, तो अब उस दौरान हम कौन सा फंडामेंटल देखें? धन्यवाद सर।
0: बहुत अमित ने किया है निश्चित प्राची, क्योंकि ये अक्सर निवेशकों को ये रहता है कि हमने सब फंडामेंटल्स चेक किए, सब कुछ अच्छा था, ऑर्डर बुक अच्छी थी, बॉटम लाइंस अच्छी थी, टॉप लाइंस। अब देखिए, न्यूज पर तो अमित किसी का कंट्रोल नहीं है,
1: बिल्कुल।
0: अगर कोई ऐसी खबर कंपनी से कोई ऐसी खबर निकल के आती है उनके बारे में

0: कोई आक्षेप हो जाता है, कोई उनके मैनेजमेंट से संबंधित कई बार कोई खामी निकल आती है इस पर, तो देखिए किसी तो देखिए शेयर मार्केट में जो निवेश होता है अमित, उसमें जोखिम तो भरा होता है, ये बात आपको दिमाग में रखनी पड़ी। यही जोखिम होते हैं कि आपने सब कुछ देखा फिर भी 30-40% पर अगर कोई खबर बहुत बुरी नहीं थी अमित, तो वो रिकवर भी कर जाता है। मैं आपको ये आश्वासन दिलाना चाहूंगा, बहुत ही बुरी खबर आ गई, क्योंकि हम अब देखिए स्पेसिफिक्स तो डिस्कस करते नहीं है, या तो मुझे कंपनी का हम नाम लेते होते तो हम देखते क्या खबर आई है, क्यों करेक्शन आई, तो ये सब हम नहीं करते। तो आपको मैं जनरल तौर पे बता देता हूं कि अगर कोई छोटी मोटी बात है तो शेयर मार्केट में एक अच्छी बात यह है कि वो भुलाती भी बहुत जल्दी है, वो शॉर्ट मेमोरी होती है, भुला के आगे चल पड़ते हैं। देखिए ना पिछले सालों में कितनी घटनाएं घटी, आज आपको याद भी नहीं होंगी। तो इसलिए अगर कोई बड़ी चीज नहीं है तो आप घबराएं नहीं, पैनिक ना करें, वो रिकवर कर जाएगा। और ये जोखिम तो आपको साथ में हमेशा ही रहेगा, क्योंकि खबरों पे हम इस समय एक खबर के प्लेटफॉर्म पे हैं, आकाशवाणी पर हैं, यहां से खबरों की ज्यादा चर्चा होती है। तो हमसे अच्छा मुझे लगता है हमारे जो माननीय एंकर, इनसे अच्छा कौन बता सकता है कि खबर कब क्या आ जाए, इसको कोई भी एंटिसिपेट नहीं कर सकता अमित।
1: And moving on to the U.S. markets, major U.S. indices ended lower yesterday and posted weekly losses dragged by technology shares. The Nasdaq Composite Index shed 1.4%, S&P 500 dipped 1%, and the Dow Jones Industrial Average slipped around 0.8%. For the week, the Nasdaq slid 2.9%, the S&P 500 declined by 1.6%, while the Dow fell 0.9%.
2: And Kolkata se hamare saath Animesh jud rahe hain. Animesh ji, karyakram mein aapka abhinandan. कृपया अपना सवाल।
3: गुड इवनिंग मार्केट मंत्र।
2: गुड इवनिंग,
3: दिस अनिमेश भट्टाचार्य फ्रॉम कोलकाता।
0: यस अनिमेश
3: सर, आई एम सुपर एनुएटेड मैन, शुड आई गो इन फॉर एनी शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड फॉर पेंशन स्कीम, वुड इट बी रिस्क फ्री और आई शुड फॉलो द जनरल रूल एज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट? थैंक यू सर।
0: Animesh, I think the best way for you should be that since you're retired, and you know, generally at the age of retirement, we do not recommend being very adventurous with your investments, you know. So you should not be going very aggressive. So investing directly in stock markets, unless you have complete knowledge and you are very, very research based, or you are under guidance of a SEBI registered finance professional, then maybe yes. But otherwise, if you use your own judgments and you've got limited time at hand, limited aptitude at hand, then I would suggest you take up the mutual fund route. And incidentally, on Sundays, Akashwani and this very show, Market Mantra, a mutual fund expert comes which guides you on, you know, what kind of investments and what's with the duration of investment.
2: Bilkul.
0: So direct market depends on how much access you have to the things I mentioned. But mutual funds, yes, you can try, because there you can exit anytime. And you can keep a watch on how the fund has been performing.
1: Right. And ICICI Bank today reported its financial results for the first quarter of the current financial year. The bank's standalone net profit rose around 16% to 14,804.5 crore rupees on an annual basis. The bank's net interest income for the quarter grew by 12.7% to 24,384 crore rupees. The ICICI Bank's net NPA ratio fell by 6 basis points to 0.35% on an annual basis.
2: एक्सिस बैंक ने आज चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के अपने वित्तीय परिणाम साझा किए हैं। बैंक का शुद्ध लाभ वार्षिक आधार पर लगभग 23% बढ़कर 7,114 करोड़ रुपए हो गया है। इस तिमाही के लिए बैंक की शुद्ध ब्याज आय 8% से बढ़कर 14,646 करोड़ रुपए हो गई है। एक्सिस बैंक का कुल नॉन परफॉर्मिंग एसेट अनुपात वार्षिक आधार पर 6 आधार अंक लुढ़ककर 0.39% रह गया है। और दिल्ली से हमारे साथ केशव जुड़ रहे हैं। केशव जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए। केशव जी, आप हमें सुन पा रहे हैं?
4: हेलो, नमस्कार जी।
2: नमस्कार, कृपया अपना सवाल पूछिए।
4: सरद जी को नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, जैसे अभी जो विश्व में तेल की प्रॉब्लम चल रही है, तो हम हिंदुस्तान में टू व्हीलर अगर बैटरी वाला लेने जाते हैं तो टू व्हीलर मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो इसका कितना प्रभाव हो रहा है? और सुनने में ये भी आया कि चाइना की तरफ से जो बैटरियां बनती थी तो बैटरियां उन्होंने कंट्रोल कर दी है और पाबंदी लगा दी है, और आने वाले टाइम में क्या ये बैटरी वाली गाड़ियों में भी क्या प्रॉब्लम आने के चांसेज है? इसके लिए आप क्या अपनी राय देना चाहेंगे? धन्यवाद।
0: नहीं केशव, बैटरी में आगे इतनी प्रॉब्लम होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि बहुत सारी भारत में भी अगर हम टू व्हीलर्स की बात करें तो छोटी छोटी कंपनीज भी अब टू व्हीलर्स बना रही हैं। मैं हम लोग इस समय दिल्ली NCR में बैठे हैं, नोएडा में मेरी जानकारी में बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स अब टू व्हीलर्स के खुल रहे हैं, तो ये लोग लिथियम

0: बैटरीज हम लोग वैसे तो हम चाइना से भी मंगाते हैं, पर अब भारत में भी इस पे बहुत काम चल रहा है। मुझे लगता है भविष्य का जो ट्रांसपोर्ट स्ट्रक्चर होने वाला है वो बैटरी ओरिएंटेड होने वाला है। और जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल और क्रूड को लेके अभी चिंताएं हैं दुनिया में, जो परिस्थिति है, नहीं मुझे नहीं लगता है केशव के आने, बल्कि आने वाले समय में अभी जो दिक्कतें हैं वो उल्टा रिजॉल्व हो जाएंगी, वो उनका निस्तारण हो जाएगा। और आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आप जो बैटरी के स्कूटर या कार लेना चाहते हैं आप ले, अब तो सरकार भी उसको बढ़ावा दे रही है। आप अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली सरकार तो उस पर इंसेंटिव भी दे रही है, टू व्हीलर्स पे भी है, कारों पर भी। आप पुरानी कार लेकर आते हैं उसको आप डिस्कार्ड करते हैं तो उस पर भी इंसेंटिव है। तो ये आपको जो आ रही है वो टेम्परेरी होगी, तो मुझे लग रहा है आगे आपको ये नहीं आएगी, ऐसा मुझे महसूस होता है।
1: Right, and our next caller is Gopal from Mumbai. Gopal. Gopal, can you hear us? All right. In the meanwhile, HDFC Bank has well today reported its financial results for Q1 FY27. The bank's standalone net profit rose 5% to around 19,060 crore rupees on an annual basis. The bank's net interest income for the quarter grew by 6.7% to 33,530 crore rupees. HDFC Bank's net non-performing asset ratio fell by 6 basis points to 0.41% on an annual basis.
2: और संजीव जुड़ रहे हैं हमारे साथ दिल्ली से। संजीव जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: नमस्कार सभी जनों को, मेरे पूछते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे हम 1 लाख रुपए का शेयर लेते हैं और उसे 1,20,000 में बेचते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट पे ही टैक्स लगेगा या फिर 1 लाख पे लगेगा पूरे 1.25 लाख पे?
0: संजीव, अगर आप मात्र 1 लाख का खरीदते हैं और 1,20,000 का बेच देते हैं तो आपको मैं बता दूं कि 1,25,000 तक की इनकम टैक्स में इक्विटी शेयर्स बेचने पर एक एग्जेम्पशन है, एक विशेष छूट दी हुई है। तो अगर आप इसको एक उदाहरण के तौर पर पूछ रहे हैं तो मैं ये बता दूं कि टैक्स तो खाली 20,000 पर लगेगा, और अगर आपने शॉर्ट टर्म बेचा है, लॉन्ग टर्म बेचा है तो 12.5% लगेगा, आपने शॉर्ट टर्म बेचा है तो उस पर 20% लगेगा। परंतु अगर खाली एक ही ट्रांजैक्शन आपका है, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, तो 1,25,000 तक, जब तक आपका ये पूरा मुनाफा, ये सेल नहीं, पूरा मुनाफा आपका 1,25,000 तक का इसमें से माफ होता है। तो अगर आपकी खाली ट्रांजैक्शन है तो आपके लिए खुशखबरी है, आपके 20,000 पे जीरो टैक्स लगेगा। देखिए, मैंने एक कदम और आगे बढ़ा के आपको बता दिया जी।
1: एंड कोटक महिंद्रा बैंक्स स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट रोज अराउंड 26% ऑन एन एनुअल बेसिस टू 4,123 crore rupees इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट फिस्कल। द बैंक्स नेट इंटरेस्ट इनकम for the quarter grew by 9% to 7,928 crore rupees. Kotak Mahindra Bank's net NPA ratio fell by 6 basis points to 0.27% on an annual basis.
2: रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कल मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही का परिणाम जारी किया है। कंपनी की आय सालाना आधार पर 25% से अधिक बढ़कर करीब 3,11,850 करोड़ रुपया हो गई है। हर तिमाही के नतीजों के आधार पर ये आय 4.3% बढ़ी है। कंपनी का शुद्ध लाभ वार्षिक आधार पर 22.4% से घटकर 20,946 करोड़ रुपया रह गया है। और गोपाल मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोपाल जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, अपना सवाल
4: जी। नमस्कार मंदर टीम को।
2: नमस्कार,
4: मेरे दो सवाल हैं जी। ये जो आरबीआई ने इंटरेस्ट ये रेट नहीं बढ़ाई, क्या उसकी मजबूरी थी क्या? जबकि महंगाई तो कमर तोड़ गई है, इन्फ्लेशन कहाँ पहुंच गई है, उसकी मजबूरी थी? पहला सवाल ये है नहीं बढ़ाने का इंटरेस्ट। दूसरा सवाल ये है, फ्राइडे को आप देखिए इंडेक्स चली इतनी 1000 पॉइंट बीएसई और 275 एंड एनएससी, एडवांस डिक्लाइन देखेंगे तो 3000 डिक्लाइन था, 1000 एडवांस। पिछले 2 साल से इक्विटी मार्केट की बहुत हालत खराब है, कई इक्विटीज तो वेंटिलेटर पे पहुंच गए हैं, तो ये इसके लिए जिम्मेदार कौन है? एलसीबी जिम्मेदार है, बीएसई एनएससी जिम्मेदार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिम्मेदार है या प्रमोटर जिम्मेदार है? हालत
0: गोपाल जी, आपका पहला सवाल आरबीआई रिपो रेट और इन्फ्लेशन से संबंधित है। अभी इन्फ्लेशन देखिए, आरबीआई का जो टॉलरेंस बैंड है वो 2% से 6% का होता है, तो अभी जो सीपीआई के नंबर्स आए वो 4.38 के आए। अगर लगातार महंगाई, सीपीआई जिसको हम कहते हैं, वो लगातार ऊपर बनी रहती है तो फिर आरबीआई कहीं इसको हम हॉकिश स्टैंस कहते हैं, आरबीआई अपना हॉकिश स्टैंस लेगा। पर अभी देखिए जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है गोपाल जी, आपको ध्यान रखना होगा कि वो जीडीपी की रफ्तार को लगाम देता है। तो आरबीआई जब तक नहीं बढ़ाता जब तक उसको पूरी तरह से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को यकीन नहीं हो जाता कि अब

0: आई को वाकई रोकना है। तो अगर ये लगातार आगे बढ़ता रहा तो आरबीआई को हो सकता है आरबीआई इस पर आगने वाली एमपीसीज में कॉल ले। दूसरा आपने पूछा एडवांस डिक्लाइन, ये दो साल से हुआ हुआ है ना, एनएससी जिम्मेवार है ना बीएससी जिम्मेवार है ना भारत सरकार जिम्मेवार है ना सेबी जिम्मेवार है ना कंपनी जिम्मेवार है। ये परिस्थितियां इस प्रकार की हैं। मार्केट देखिए, मार्केट डिमांड और सप्लाई पर चलता है गोपाल जी, आप भी खरीदते होंगे बेचते होंगे, लोग खरीदते बेचते हैं। अगर बीएससी एनएससी या भारत सरकार जिम्मेवार होने लग जाए तो फिर तो मार्केट को मार्केट नहीं कहेंगे, फिर तो उसको एक रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म कहेंगे। तो मार्केट को मार्केट फोर्सेस पर छोड़ दिया जाता है। जैसे जैसे कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं, जो कंपनीज अच्छा परफॉर्म करती हैं गोपाल जी, आपने देखा होगा उनके बहुत अच्छे, आप देखिए अभी जो आपने एडवांस डिक्लाइन रेशियो मुझे बताई उसमें बैंकिंग के आप देखिए क्या रिटर्न उस दिन क्या उछला है। तो मुझे लगता है मार्केट में सेक्टर रोटेशन होती रहती है, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बदलती रहती हैं, डिमांड सप्लाई बढ़ती रहती है, कंपनीज के रिजल्ट्स आते रहते हैं। मैं अगर मार्केट के उठने गिरने के कारण बताऊं तो मुझे पूरा का पूरा मार्केट मंत्र का आधा घंटा सिर्फ पॉइंट्स पढ़ने में लग जाएगा जी।
1: आगे बढ़ते हैं और मुंबई से हमारे साथ रत्नाकर जुड़ रहे हैं। रत्नाकर जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: हेलो, गुड इवनिंग
1: जी।
2: मेरा सवाल है कि अमेरिका और ईरान का वॉर तो अभी कुछ अनिश्चितता से भरा हुआ है, कभी हॉर्मुज खुली होती है कभी नहीं होती है। तो ऐसे हालत में जो ऑयल कंपनीज है
0: जी,
2: इंडिया में जो है उसका जो ऑयल कंपनीज के शेयर लेना कितना अच्छा रहेगा, वो लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, और आईटी सेक्टर में उसका क्या फर्क पड़ सकता है।
0: देखिए, ऑयल कंपनीज के शेयर्स अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कुछ दिन के लिए शायद दूर रहने की सलाह दूं, क्योंकि लगातार उतार चढ़ाव क्रूड की प्राइसेस में आप देख ही रहे हैं बना हुआ है। पिछले कई ऊपर गया, फिर उसके बाद 71-72 डॉलर आया, फिर 85-86 डॉलर चल गया। अभी बारबल मंदेप जो सऊदी अरेबिया के पास है उसको कुछ बंद होने की खबरें आ रही हैं, हो सकता है अगर बंद हो जाए तो क्रूड और ऊपर जाए। तो मैं सलाह दूंगा, क्योंकि आप मुझे बहुत सीनियर प्रश्नकर्ता हैं, आप बहुत पुराने वेटरन हैं, तो आपके लिए मुझे लग रहा है ऑयल कंपनी से आप दूर रह सकते हैं। आईटी कंपनीज भी काफी उतार चढ़ाव, अभी हम थोड़ी देर पहले बात ही कर रहे थे कि आईटी कंपनीज में, पर आईटी कंपनीज में भी आप सिलेक्टेड कंपनीज में जिनकी वैल्यूएशन अच्छी है, जिनका एआई थोड़ा आपको रिसर्च करना पड़ेगा, जिनके एआई एप्लीकेशंस और एआई टूल्स जिस पे काम कर रहे हैं, जिसकी एआई रिसर्च अच्छी है, उन पर आप सिलेक्टिवली आप उसको चूज कर सकते हैं। थोड़ा सा आईटी सेक्टर ने काफी उतार चढ़ाव दिखाया है, अभी हम थोड़ी देर पहले उसकी काफी डिटेल में रत्नाकर जी चर्चा कर चुके हैं।
3: नेक्स्ट कॉलर इज आरपी उपाध्याय फ्रॉम दिल्ली।
4: नमस्कार कोल साहब।
0: नमस्कार उपाध्याय जी।
4: कोल साहब, एक एडवाइस लेनी थी कि मैं 78 इयर्स सीनियर सिटीजन हूँ, तो अब तक मैं इनकम टैक्स रिटर्न भरता था
0: जी,
4: इस साल 12 लाख के उससे मेरे पे टैक्स नहीं लग रहा, तो मुझे भरना चाहिए या नहीं।
0: अच्छा, देखिए उपाध्याय जी, उपाध्याय जी ने शायद अपना रेडियो सेट ऑन किया हुआ था। अगर 12 लाख की वजह से आपका इनकम एग्जेम्ट हो रहा है, इसको पुराने एक्ट में 87A कहते थे, शायद उपाध्याय जी को वो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, अगर उसकी वजह से हो रहा है तो फिर आपको भरना पड़ेगा। अगर आप बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से नीचे हैं, जैसे अब नए रिजीम में 4 लाख है, पुराने रिजीम में 2.5 लाख है, जिस व्यक्ति की बेसिक एग्जेम्पशन से नीचे की इनकम है उसको भरना जरूरी नहीं है, परंतु अगर इस 87A के रिबेट की वजह से आपकी इनकम कम होती है तो फिर आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहिए। बहुत हम प्रणाम करते हैं आपको, 78 साल के हैं प्राची और निशित, और देखिए अभी भी वो कितने लॉ अवॉइडिंग है, उनको पूरी इस बात की चिंता है कि मेरी भले ही मेरा टैक्स नहीं है पर मुझे रिटर्न भरना चाहिए। मुझे लग रहा है बहुत सारे युवाओं को उपाध्याय जी से सीखना चाहिए।
3: राइट।
1: और दिल्ली से हमारे साथ मुकेश जुड़ रहे हैं। मुकेश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
5: गुड इवनिंग सर, मेरा सवाल है जो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर्स हैं और ग्रीन एनर्जी के जो सेक्टर्स हैं
0: जी,
5: उनमें जैसा कि मिडिल ईस्ट में जो वॉर की जो कंडीशन रेगुलर बन रही है जिसकी वजह से पावर के क्राइसिस हो रहे हैं
0: जी,
5: तो उस चीज को देखते हुए अभी इसमें जो इस रेट पे इन्वेस्टमेंट करा जाए तो मतलब एक क्वार्टर रुकने में मतलब क्या प्रॉफिटेबल होंगे वो। और दूसरा है सर, मेरा जो बैंकिंग सेक्टर्स के जो टॉप लीडर्स बैंक हैं उनमें क्या मतलब अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।
0: देखिए, पहले मैं आपके मुकेश जी बाद वाले सवाल का लेता हूं कि अभी हम बात ही कर रहे थे कि बैंकिंग के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, अभी हमारे माननीय एंकर्स ने कुछ बैंकों के रिजल्ट्स भी पढ़े, बहुत ही उत्साहजनक रिजल्ट्स आए हैं, तो मुझे लग रहा है बैंकिंग सेक्टर भारत का बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो आप सिलेक्टिव बेसिस पे चाहे सरकारी बैंक हो चाहे निजी क्षेत्र के बैंक हो, आप उनको लंबे वक्त के लिए रख सकते हैं। आपका इनका पहला सवाल था कि रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी के शेयर्स के लिए क्या एक क्वार्टर वेट करना चाहिए। मुझे लगता है मुकेश के अगर अच्छी कंपनी आपको मिल रही है ग्रीन एनर्जी में तो उसमें

0: जितनी जल्दी आप उस बस में सवार हो जाएंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि लंबे वक्त के लिए यही फ्यूचर है, जैसा आप बात कर रहे हैं अभी जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है, अदरवाइज भी फॉसिल फ्यूल से हटके दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना चाहती है। तो मुझे लग रहा है कि आपको, अगर आपके पास फंड्स हैं और आप पूरी रिसर्च कर रहे हैं, तो आप इसको जल्दी भी ले लेंगे, परंतु कंपनी का चयन जो है वो बहुत ही चिंतन करके होना चाहिए जी।
1: बिल्कुल, दिल्ली से हमारे साथ संतोष जुड़ रहे हैं। संतोष जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: हेलो
1: जी, अपना सवाल पूछिए।
2: हाँ नमस्कार तोली जी।
0: नमस्कार संतोष जी।
2: हाँ मैं आपका फैन हूँ, मैं दिल्ली में आपकी वीडियो भी देखता हूँ।
0: प्लेजर सर।
2: मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे अभी गोल्ड में पैसा लगाना चाहिए या नहीं, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा ये है कि मार्केट में इस साल में कैसा रहेगा, दिसंबर तक मार्केट कैसा रहेगा निफ्टी?
0: चलिए संतोष जी, गोल्ड की पहले बात कर लेते हैं। गोल्ड में मुझे लग रहा है इस समय गोल्ड $4,000 के आसपास है, भारतीय रुपए में बात करें तो लगभग 1,40,000-1,45,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के बीच में घूम रहा है। जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, मैं ये निशित और प्राची को भी जानकारी उनके लिए भी शायद सबके लिए काम की है, तो कि HSBC है, मॉर्गन स्टैनली है, JP, जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जो इसको ट्रैक करती हैं, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है, उन सबका कहना यह है कि वो सोना लंबे वक्त के लिए बहुत ही लाभदायक रह सकता है, परंतु शॉर्ट टर्म में, क्योंकि ये जो क्राइसिस चल रही है, डॉलर इंडेक्स है, बॉन्ड यील्ड्स है, इनकी वजह से उतार चढ़ाव जो आपको लगातार देख, हो सकता है यहां से और नीचे भी जाए, तो इसलिए लोगों को सलाह, ये शायद मैं होता तो ये करता कि मैं थोड़ा थोड़ा करके जब जब करेक्शन आती तो लेती। बाकी निवेश की सलाह तो जैसे हम शुरू में हमारे माननीय एंकर पढ़ते हैं कि आपको किसी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल से पूछना चाहिए, हम लोग एक एनालिसिस करते हैं। तो मार्केट आपने पूछा कैसी रहेगी, मार्केट इज एनीबडीज गेस। युद्ध पे नजर रखते हैं, देखिए सारी नजर गड़ा के रखिए वेस्ट एशिया पे, वहां से जो खबरें आती हैं उसके आधार पर मार्केट ऐसे नाच रही है जैसे सपेरे के आगे जो है बीन बजाता है तो सांप नाचता है, इस तरीके से नाच रही है जी।
3: राइट, एंड इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 अंडर मिशन Agaman has successfully reached orbit after completing its final burn and injecting payloads into a 450-kilometer orbit. The liftoff took place at 12:05 p.m. from the Satish Dhawan Space Center at Sriharikota in Andhra Pradesh. The milestone makes India the third country in the world to achieve private orbital launch capability. Sharaji, how do you see this? This is a really remarkable, you know, an achievement.
0: Well, this is indeed a big leap for the Indian space tech industry, because private startups, we've been talking for a very long time. And I think a private rocket being launched in India for the first time, I think this is a huge achievement, I would say. And this is very close to our Prime Minister's heart as well, because he wanted these space startups to come, which has so far been the domain of the government. A big, very, very laudable effort.
3: Right. And moving on to oil, the global crude oil prices rose around 16% this week. The surge was driven by an escalation in fighting between the U.S. and Iran as both sides traded retaliatory strikes. During the week at the Intercontinental Exchange, Brent crude September futures surged 15.9% to settle at $88.10 per barrel. West Texas Intermediate crude August futures jumped 15.5% to end at $82.49 per barrel. And meanwhile, we are joined in by Satish from Delhi. Satish, jaldi sawal puchhe.
4: Sir, my question is, in this new tax regime, after 12 lakhs threshold limit, this housing loan interest and housing loan installment is not deductible.
0: Satish ji, both are not deductible because new tax regime has been made in a manner where deductions have been done away with. So the Section 24 deduction, which used to be there for interest, and under Section 80C for principal repayment, unfortunately, in the new regime, they are both not eligible. But new regime otherwise is very attractive, which I'm sure you must be ending up with lesser tax because of new regime. I would suggest you should try calculating with both the regimes, and whichever is beneficial, you can choose that.
1: शरद जी, कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे तमाम श्रोताओं के तमाम सवालों के तमाम जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच प्राची, थैंक यू सो मच निशित,
3: थैंक यू सो वेरी मच शरद जी। एंड बिफोर वी क्लोज, हियर इज अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस वंस अगेन। द बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस रजिस्टर मॉडेस्ट वीकली गेन्स, US मार्केट्स रैप अप वीक ऑन अ नेगेटिव नोट, and global crude oil prices jump around 16% this week amid geopolitical concerns. And that's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here Yes, goodbye.
5: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च

ग्यारह बजकर 41 मिनट हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ जुड़े हुए आप, स्वागत है आप सबका एक बार फिर प्रोग्राम गीत मेरे मन मीत में। आपके साथ मैं विकास।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

प्रोग्राम का ये आखिरी गीत, और इस आखिरी गीत के साथ मुझे यानी विकास को दीजिए इजाजत, लेकिन इस वादे के साथ कि आप रखेंगे अपना ख्याल, उनका ख्याल, जो रखते हैं आपका ख्याल। नमस्कार।

0: 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की कल घोषणा कर दी गई। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
1: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, इट विल मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है, इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
0: ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई। राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचान नबीदास और रूपाश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। अभय जोधपुरकर और वेकोम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा काडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गात्राद रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई।
2: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी वसराल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। संसद के मानसून सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों के संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग से बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसद के विलय को भी मंजूरी दे दी। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय DRI ने देशभर में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए हैं। इसके अंतर्गत विदेश से तस्करी कर लाया गया 15 किलोग्राम सोना और 20 किलोग्राम चांदी जब्त की गई है, जिसकी कुल कीमत लगभग 22 करोड़ रुपए है। साथ ही 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा भी जब्त की गई है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन अभियानों में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर परिणाम पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार CBSE ने इस वर्ष से 10वीं कक्षा के लिए 2 बोर्ड परीक्षाएं शुरू की थी। जाने माने उद्योगपति रविकांत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री को अपनी पुस्तक लीडिंग फ्रॉम द बैक टू अचीव इम्पॉसिबल की एक प्रति भी भेंट की। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय निपुणिका शाहिद।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर और कार्यक्रम है पानी पर लिखी कहानी। इसमें जो कहानी हम आपको सुनवाने जा रहे हैं इसका नाम है पहचान तो थी पहचाना नहीं और इसे लिखा है रश्मि रविजा ने। तो आइए सुनते हैं कहानी।

सुपरमार्केट के दरवाजे से ढेरों सामान से भरी ट्रॉली लेकर अंजू बाहर आ गई। जरा सा उसका ध्यान बटा और पता चला सामान सही ट्रॉली लिए गिर गई वो। अब वो क्या करे, बेटी के स्कूल से आने का समय हो रहा था और रिक्शा नजर नहीं आ रहा था। घर उसका ज्यादा दूर नहीं था पर सामान बहुत ज्यादा खरीद लिया।

शख नदारद थे। इक्का दुक्का कार जैसे मुंह चढ़ाती हुई सर से निकल जाती और वो बेबस ही देखती रह जाती। अब रिक्शे के इंतजार में कब तक खड़ी रहेगी वो? घर का दरवाजा बंद देखकर उसकी बेटी रूही परेशान हो जाएगी। ये सोचकर अंजू ने जल्दी जल्दी ट्रॉली से सामान का थैला भरना शुरू कर दिया और भारी थैला उठाए जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए चली जा रही थी। माथे से पसीना बहने लगा, पर इतनी मोहलत नहीं थी कि सामान नीचे रखकर रुमाल से चेहरा भी पोंछ ले।

0: हांफते हुए बढ़ी चली जा रही थी कि सिल्वर कलर की एक लंबी सी कार बिल्कुल उसके पास से गुजरी। वो थोड़ा चौंक कर किनारे खड़ी हो गई, पर कार उससे थोड़ा सा आगे जाकर रुक गई और कार की खिड़की से खूबसूरत सा चेहरा झांकने लगा। तुरंत ही उसे अंजू नाम की एक पुकार सुनाई दी। ये कैसा संयोग है, जरूर कोई पीछे से और महिला आ रही होगी, उसका भी नाम अंजू ही तो हो सकता है। वो असमंजस में इधर उधर देखती रही और आगे बढ़ती रही। कार के पास पहुंची ही थी कि वो खूबसूरत चेहरा कार से उतरकर बिल्कुल उसके सामने खड़ा हो गया और फिर से उत्साह भरी वही आवाज आई।
1: अरे अरे अंजू, तुम अंजू ही हो ना? पहचान रही हो मुझे?
0: आप सॉरी,
1: मैं नमिता, मुझे कैसे भूल गई?
0: नमिता, मैं तो पहचान ही नहीं पा रही। तुम तो बिल्कुल, मतलब तुम तो बिल्कुल वैसी ही हो।
1: कितने सालों के बाद हम मिल रहे हैं, और देखो और देखो, मैंने तुम्हें झट से पहचान लिया, और मुझे क्यों लग रहा है कि तुम मुझे भूल गई।
0: अरे इतनी बढ़िया कार से तुम उतरी, मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि इस सिल्वर कार मेरे लिए रुकी है, तो मैं थोड़ा हैरान सी हो गई सच कहूँ तो।
1: अच्छा ये बताओ, कितने सालों से हो इस शहर में?
0: बहुत सालों से, जानती हो मैं तो शादी होकर सीधा यहीं आ गई थी। और तुम?
1: अरे मैं भी लगभग तब से ही यहाँ हूँ।
0: और आज मिल रहे हैं दोनों, देखो।
1: बताओ आज मिल रहे हैं?
0: नमिता और अंजू एक ही स्कूल में पढ़ती थी, पक्की सहेलियां थी, साथ बैठना, लंच करना, एक दूसरे के घर जाना, घंटों गप्पे मारना, फिल्में देखना, शरारते करना, सब कुछ साथ साथ में होता था। दोनों के पिता का ट्रांसफर हो गया और दोनों सहेलियां अलग अलग शहर में चली गईं और अलग अलग कॉलेज में पढ़ने लगी। कुछ समय बाद पत्रों का आना जाना भी खत्म हो गया और दोनों सहेलियां बिछड़ सी गईं। अब इतनी सारी बातें थी कि कहां से शुरू करें और कहां पे खत्म। तुमने ड्राइविंग कब से शुरू कर दी भाई?
1: बस सीख ली। अब यूं कह सकते हैं कि समय अनुसार सारे काम अपने आप आ जाते हैं, है ना?
0: अरे वाह, क्या बात है। और कहां रहती हो, तुम्हारे पति क्या करते हैं?
1: मेरे हस्बैंड वैसे तो व्यापार करते हैं, और ज्यादातर पता है अंजू विदेश दौरे पर रहते हैं, यहाँ कम
0: वो तो
1: ही रहते
0: तुम्हारे
1: हैं।
0: कपड़ों से दिख रहा है। और बच्चे?
1: बच्चे, बस समझ लो कि बच्चे बड़े बड़े हो गए और अपनी अपनी दुनिया में।
0: अरे अच्छा है, मुझे देखो मेरे बच्चे। ओ बच्चों के नाम पे याद आया, नमिता रूही आने वाली होगी स्कूल बस से। ओहो नमिता, वो परेशान हो रही होगी, मुझे अब चलना होगा। आना ना एक दिन, मैं तुम्हें एड्रेस बताऊंगी।
1: अरे तो तुम जा कहाँ रही हो अंजू? आओ ना मेरे साथ कार में बैठो ना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी वहां तक। चलो ना, इसी बहाने रूही से मुलाकात भी हो जाएगी।
0: पर घर पास में ही है नमिता, मैं चली जाऊंगी।
1: ओहो इतना फॉर्मल कब से हो गई अंजू? याद है मेरे टिफिन से भी मेरे गोभी के पराठे सारे तुम चट कर जाती थी और मुझे कुछ नहीं मिलता था।
0: और एक भी टुकड़ा नहीं छोड़ती थी।
1: हाँ याद आ गया ना।
0: और तुम भी तो घर चलकर कहती थी कि घर चलकर खाना, चाची ने और बनाए होंगे, है ना, याद है?
1: हाँ बिल्कुल, कैसे भूल सकते हैं उन प्यारी प्यारी बातों को, उन

0: प्यारी प्यारी यादों को। चलो चलो अब कोई बात नहीं, आओ बैठो गाड़ी में बैठो, चलो चलते हैं।
1: नमिता ये बाएं ले लो, वो सामने है हमारे घर की बिल्डिंग।
0: अच्छा वो वाला। चलो बस ये आखिरी टर्न है और ये आ गया तेरा घर।
1: वो देखो रूही खड़ी हुई है। ऐसा करती हूँ मैं उसको लेकर आती हूँ और चलो।
0: हाँ हाँ बिल्कुल। अरे वाह बहुत प्यारी लग रही है।
1: रूही गेट पर होंठ पिसूरे आंखों में बड़े बड़े मोती लिए खड़ी थी। अंजू को कार से उतर कर देख के वो हैरान रह गई। ये आंटी कौन है, उसने पूछा। जब उसने पलट कर देखा तो नमिता उसके भारी भारी थैले उठाए लिए चली आ रही थी। उसने भागकर हाथों से थैला ले लिया और सोचने लगी अब नमिता को घर चलने के लिए कहना होगा, पर घर तो सारा बिखरा हुआ है, सुबह से वक्त ही नहीं मिलता और अक्सर वो बेटे को बस स्टॉप पर छोड़कर आने के बाद ही घर संभालती है और आज तो वो सुपरमार्केट चली गई थी। सारी चीजें बिखरी हुई पड़ी हैं। नमिता तो बहुत सलीके वाली लग रही है, क्या सोचेगी। अच्छा हो वो कह दे अभी वो जल्दी में है, फिर कभी आएगी। अंजू फिर बहुत जिद करेगी कि उसे जरूर आना होगा और एक दिन सब कुछ व्यवस्थित करके ही बुलाएगी उसे। हाँ पर अभी तो रस्म निभानी ही होगी, ये सोचकर अंजू बोली, नमिता चलो ना घर चलो, एक कप चाय तो पीकर जाओ।
0: हाँ हाँ जरूर, अब इतने सालों बाद मिले हैं तो फिर कैसे जा सकती हूँ ऐसे, और वो तुम्हारे हाथ की यमी वाली चाय, चलो चलते हैं।
1: नमिता ये रहा मेरा छोटा सा घर, माफ करना घर बहुत बिखरा हुआ है, और ये मत सोचना कि हमेशा ऐसा ही रहता है।
0: आप तुम मुझे सफाई मत दे अंजू, मैं तुम्हें शुरू से जानती हूँ, बहुत कामचोर थी तुम,
1: अरे नहीं भाई।
0: और आज भी बिल्कुल वैसी ही हो। हाँ नॉवल पढ़ती होगी बैठ के।
1: अरे नहीं नहीं ये देखो यहाँ पर टॉवल और ये सब बच्चों ने कपड़े बिखेरे हुए हैं, जल्दी जल्दी मैं समेट लेती हूँ। नमिता तुम बैठो ना यहाँ पर।
0: अरे ठीक है ना अंजू, परेशान क्यों हो रही हो, मैं कोई गेस्ट थोड़ी ना हूँ यहाँ
1: वो
0: पर।
1: तो है।
0: भाई बच्चों वाला घर है तो बिखरा अच्छा ही लगता है। आओ बेटा आओ रूही, मैं तुम्हारी टाई खोल दूँ। अंजू पहले इसे खाना दे देते हैं और फिर बाद में घर संभालती रहना, है ना, इसे भूख लगी होगी ना।
1: अंजू अब भी यही सोच रही है कि खाना भी तो इतना सादा सा बनाया है, बच्चों की पसंद वाला दाल चावल और भिंडी। खाने का समय हो रहा है, नमिता को खाने के लिए तो पूछना पड़ेगा। ओहो वो किसी संडे को क्यों नहीं मिली, घर भी सजा संवरा रहता है और किचन भी भरा पूरा। नमिता के आधुनिक पहनावे और महंगी कार को देखकर अंजू को यकीन हो गया था कि वो बहुत ही अमीर है। अब ऐसा सादा खाना तो शायद ही उसे पसंद आए। अंजू के पति की इनकम तो अच्छी थी और बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे। इस महंगे शहर में उसका अपना दो कमरों का घर था, उसे कोई शिकायत नहीं थी, पर दो बच्चों की देखभाल और घर बाहर संभालते वो थोड़ा खींच जाती थी। रूही को खाना देकर नमिता से खाने के लिए पूछ ही लिया और नमिता ने झट से हाँ कर दी। मैं ऐसा करती हूँ नमिता कुछ तुम्हारे लिए स्पेशल सा बना लेती हूँ।
0: अरे इतनी अच्छी इतनी टेस्टी सब्जी है और क्या बनाना चाहती हूँ, कॉम्प्लीमेंट दूँ क्या, कुछ और मत बनाओ, दाल चावल सब्जी यही तो मेरे लिए सबसे अच्छा कंप्लीट मील है, पता है तुम्हें।
1: ठीक है ये लो, साथ में दही पापड़ अचार और सलाद भी रख दिया है, ठीक है।
0: हाँ बिल्कुल अचार, आहा यम्मी।
1: सच बताना नमिता तुम यूं ही तारीफ कर रही हो या वाकई तुम्हें ये सादा सा खाना अच्छा लग रहा है।
0: नहीं सच में बहुत टेस्टी है ये खाना, और घर का बना खाना कितना अच्छा होता है, कितना स्वादिष्ट होता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात पता है क्या है अंजू, आज हम साथ साथ खा रहे हैं।
1: वो तो है। नमिता ने ऐसे चटकारे लेकर खाए जैसे जाने कितना स्वाद हो। अंजू को लगा वो उसका संकोच मिटाने के लिए इतनी तारीफ किए जा रही है। डोंगे के लिए हाथ बढ़ाते सलाद लेते नमिता के हाथों पर नजर पड़ी अंजू की, और अंजू ने अपनी उंगलियों की तरफ देखकर उन्हें समेट लिया। नमिता के कोमल हाथ बहुत सुंदर लग रहे थे, लंबे नाखून शेप में कटे थे और हल्के रंग की नेल पॉलिश लगी थी। अंजू तो कभी नेल पॉलिश लगा ही नहीं पाती, कभी लगा भी लिया तो उसी समय रूही या रोशन को कुछ ना कुछ चाहिए होता है,

या कुछ गिरा देते हैं या फिर चोट लगा लेते हैं। सबके सोने के बाद कभी नेल पॉलिश लगाने की कोशिश भी करती है तो इतनी थकी हुई होती है कि हाथों में नेल पॉलिश की शीशी लिए हुए ही सो जाती है और फिर होश भी नहीं रहता। अभी भी नाखूनों पर आधे उजड़े नेल पॉलिश बड़े भद्दे से लग रहे हैं। याद ही नहीं रहता कब उसने ध्यान से अपना चेहरा आईने में देखा हो। हमेशा भागम भाग लगी रहती है। अंजू सोच रही थी, दोनों की उम्र एक है पर कितनी अलग लग रही है नमिता।

नमिता उसके मन में उठते इन गुब्बारों से निरपेक्ष पुरानी बातें याद करने में लगी थी। वो स्कूल से लौटते हुए लंबा रास्ता चुनना कि घर जल्दी ना आए, डेस्क पर सर झुकाकर कागज में लिपटे कच्चे टिकोरे नमक के साथ खाना, वो किताबों के बीच रखकर बाल पॉकेट बुक्स पढ़ना, कॉरिडोर में टीचर्स के चाल की नकल करना और कभी कभी पकड़े जाने पर एक्टिंग करना कि चोट लगी है। नमिता की बातों में वो भी वर्तमान को भूल गई, स्कूल के दिनों में पहुंच गई। खाने के बाद भी सोफे पर जमी दोनों सहेलियां स्कूल मोहल्ले की बातें याद करके देर तक हंसती रहीं। रूही आराम से मौके का फायदा उठाकर टीवी देखती रही। शाम होने को आई तो कि रोशन के आने का वक्त हो गया है। नमिता साथ ही बस स्टॉप तक आई और रोशन को गोद में उठाकर बहुत प्यार किया, फिर आने का वायदा कर उससे आने का वायदा लेकर चली गई। नमिता के जाते ही अंशु बहुत अनमनी हो गई। दोनों सहेलियां एक साथ ही पढ़ती थी, घर का बैकग्राउंड भी एक सा था, पर आज दोनों की जिंदगी कितनी अलग है। नमिता यूं बिंदास, जहां मन होता है घूमती है। भाई

बच्चे हॉस्टल में हैं और पति विदेश में है। पैसे हैं, गाड़ी है, जिधर मन हो चल दो, कोई जिम्मेवारी नहीं है, कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है। रोकते टोकते तो उसके पति अवनीश भी नहीं है, पर वो क्या करे, दोनों बच्चों का स्कूल, उनके होमवर्क, उनकी ड्राइंग क्लास, डांस क्लास, कराटे क्लास, फिर शॉपिंग, खाना बनाना, घर संभालना, देखरेख करना, मेहमान नवाजी, इन सब के बीच वो चक्कर घिन्नी से घूमती रहती है।

नई चप्पलें डब्बे में ही बंद रह जाती हैं और वो एक ही चप्पल को घसीटती रहती है। मजाक में नमिता ने भी कह दिया, जरूर नॉवल पढ़ती होगी। कितना शौक था उसे फिल्में देखने का, नॉवल पढ़ने का, पर अब ये सब किए हुए तो जैसे एक युग बीता, समय ही नहीं मिलता, बस बच्चों की कोर्स बुक ही पढ़ती रह जाती है।

अंजू के पति अवनीश ऑफिस से आए तो भी अंजू अपनी सोच में ही गुम थी। पति ने भी पूछा अंजू से, क्या तबीयत ठीक नहीं है? उसने टाल दिया, सब ठीक है। पर सबके सो जाने के बाद भी अंजू की आंखों में नींद कहाँ। बार बार नमिता का खिला खिला चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम जाता, अपनी बुझी सी सूरत भी दिखाई देती और अंजू का मन और बुझ जाता। क्या हो गई है जिंदगी उसकी, सारा दिन काम काम और बच्चों में सर खपाना, सुकून के दो पल भी नहीं मिलते उसको। एक काम निपटाती भी नहीं है कि दूसरे काम का ख्याल दस्तक देने लगता है। पूरे दिन बस भागम भाग भागम भाग। बच्चों को भी हरदम डांटती रहती है। 10 साल और 8 साल के दोनों बच्चे शरारतें भी तो कितना करती है, वो सब समझती है। यही तो उम्र है उनकी शरारतें करने की। पर अंजू करे भी तो क्या, वो थक जाती है। आज नमिता ने गोद में बिठाकर कितना प्यार किया दोनों को, और कितना खुश दिख रहे थे दोनों बच्चे, बार बार जिक्र कर रहे थे आंटी ने इतना प्यार किया। अंजू को याद नहीं पड़ता उसने बच्चों को गोद में बिठाकर कब पुचकारा था। कुछ दिनों बाद नमिता अवनीश से मिलने आई, इस बार हल्के गुलाबी रंग के सलवार कुर्ते में और भी नाजुक लग रही थी, पर व्यवहार बहुत ही सहज था। अवनीश भी मिलकर बहुत खुश हुए। देर तक बातें चलती रहीं, फिर बोली, कल मैं अंजू को अपने साथ ले जाऊंगी, दरअसल वरुण टूर पर गए हैं, थोड़ा वक्त अंजू मेरे साथ रहेगी, आपको बुरा तो नहीं लगेगा जब ये

0: तो अवनीश हंस पड़े और उन्होंने इजाजत दे दी और बोला कि बच्चों की भी चिंता न करें, और दोनों सहेलियां आराम से समय बिताएं। अगले दिन ठीक 3 बजे नमिता गाड़ी लेकर आ गई।
1: अंजू अंजू आ जाओ, नीचे आ जाओ जल्दी से, मैं आ गई, देखो घड़ी मिलाओ जल्दी से, 3 बज गए हैं, तैयार होना बिल्कुल।
0: चलो नमिता, मैं आ गई हूँ, चले। नमिता के घर के बाहर ही दरवाजे के दोनों तरफ 2 प्लांट सजे थे। एक एक पत्ता ऐसे चमक रहा था जैसे अभी अभी धुले हों। बाहर से ही अंदाजा हो गया था कि घर का अंदर का रख रखाव कैसा होगा। घर के अंदर सब कुछ व्यवस्थित, सफेद रंग का सोफा, बीच में कलात्मक सी कांच की मेज और मेज पर सजे एक बाउल में रंग बिरंगे पत्थर, हर कोने में गमले में सुंदर प्लांट और प्लांट के नीचे मूर्तियां, सुंदर साफ चमकती दीवारें और उन पर लगी पेंटिंग्स पर गिरती हल्की सी रोशनी। अंजू को लगा कि वो किसी और ही दुनिया में पहुंच गई। अंजू को नमिता ने बताया कि जब वरुण पहली बार इस घर को दिखाने लेकर आए थे तो ये घर उसको भी महल जैसा लगा था।

0: अंजू को बैठने के लिए कहकर नमिता शेल्फ में से एक फोटो उठा लाई। ये देखो, ये तो बड़ी प्यारी फोटो है, कौन है ये?
1: ये मेरे दोनों बेटे पराग और परिमल।
0: अरे वाह, कितने प्यारे बच्चे, एक दूसरे के गले में बाहें डालकर देखो कैमरे की तरफ ही देख रहे हैं ना। फोटो दिखाती नमिता इतने प्यार से तस्वीरों पर हाथ फेर रही थी मानो वो तस्वीरें नहीं बच्चों का मुंह हो। अंजू के भीतर कुछ जोर का दरक गया। बहुत मिस करती है नमिता अपने बच्चों को। उसकी आंखों की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई अंजू की। भरी हुई आंखें थी। नमिता भी हाथों में तस्वीर थामे बच्चों के चेहरों को एकटक देखते हुए कहीं खो सी गई। उसे उबारने के लिए अंजू ने ही जोर से कहा, अरे पानी तो पिला।
1: देखो मैं भी कितनी भुलक्कड़ हो गई हूँ, आके बातें करने लगी और पानी पूछना भी तुम्हें भूल गई, वो भी तुम्हें मांगना पड़ा। मैं आज भी वैसी ही हूँ, है ना? अभी लेकर आई, अभी लेकर आई। याद है अंजू, तू संकोच कर रही थी घर कितना बिखरा हुआ है, और यहाँ देख घर बिखेरने वाला कोई नहीं। पता है, जान बूझ कर कभी कभी चीजों को इधर उधर बिखेर देते हैं कि हाँ बाद में कभी समेट लूंगी इन्हें, क्या बताऊं। चलो छोड़ो।
0: पर एक बात बताओ,
1: हाँ?
0: बच्चों को हॉस्टल क्यों भेज दिया?
1: बस यूं समझ लो, वरुण का मन था बच्चे इंडिपेंडेंट बने, बड़े कैंपस वाले स्कूल में पढ़े और जहाँ सब कुछ हो, घुड़सवारी हो, तैराकी हो,

0: सब कुछ सीख सकें, पहाड़ों के बीच खुली जगह में स्कूल हो।
1: अच्छा।
0: वैसे अंजू मैं शिकायत तो नहीं कर रही, बच्चों का भविष्य बन जाएगा, उन्हें अच्छी शिक्षा मिल रही है, पर पता नहीं क्यों सोचती हूँ इस अकेलेपन का क्या करूं।
1: नमिता,
0: छोड़ो अंजू, मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गई, चल बता क्या खाएगी तू। उस दिन तेरे यहाँ जमाने के बाद दाल चावल सब्जी खाई और साथ में दही, क्या स्वाद था।
1: लेकिन ये बता, तू करती क्या है सारे दिन? मेरा मतलब है कि समय कैसे काटती है? भाई अगर ऐसी बात है तो तू कोई जॉब क्यों नहीं कर लेती नमिता? मेरा मतलब है कि मुझे तो बहुत चिंता हो रही है तुम्हारी।
0: तूने नौकरी की बात की है इसलिए बता दे रही हूँ। कभी किसी जरूरतमंद का हक मारूं ऐसा कभी सोचा ही नहीं। और जहां तक परिवार की बात है, नौकरी की जरूरत कहाँ है ना? जैसा मिला है बस ठीक है, समझौता कर लिया है अपनी जिंदगी से, बस यूं समझ लो अंजू। और नौकरी इसलिए भी नहीं कर सकती, जब बच्चे छुट्टियों में घर आते हैं तो ऐसा लगता है मानो पूरा समय उन्हीं के साथ बिता लूं, ये समय बस यहीं रुक जाए और उनके साथ ये समय प्यार से बीत जाए, बस यूं समझ लो उनकी छुट्टियों का इंतजार रहता है मुझे।
1: पर उसके अलावा क्या करती हो नमिता?
0: खाली वक्त में,
1: हाँ।
0: खाली समय में अनाथालय चली जाती हूँ या फिर ओल्ड एज होम चली जाती हूँ,
1: ओ
0: बस ऐसे ही बच्चों के बीच और बुजुर्गों के साथ समय बीत जाता है, अच्छा लगता
1: अच्छा।
0: है वहां जाकर, तनहाई दूर हो जाती है, बस यूं समझ लो।
1: ओ नमिता।
0: सच कहूं तो अकेले घर काट खाने को दौड़ता है, कम से कम यहां कुछ आवाजें तो सुन लेती हूं।
1: अच्छा।
0: चलो छोड़ो, हटाओ,
1: अरे
0: कहां मैं क्या लेके बैठ जाती हूँ, बातों ही बातों में कहां से कहां चली जाती हूँ।
1: पर नमिता, कभी तू किसी से कुछ शेयर भी तो कर सकती है, कुछ दोस्त सहेलियां।
0: चल छोड़ हटा अंजू, कहाँ सोच में डूब गई। कहने को तो बहुत सारे दोस्त हैं पर वो कहाँ समझेंगे मेरे दर्द को। तू तो बचपन की सहेली है ना,
1: हाँ
0: जानती है ना मुझे, बस इसीलिए तुमसे कहने को जी चाह रहा था। अच्छा चल बता क्या बनाओ तेरे लिए। चल किचन में चलते हैं, दोनों कुछ अच्छा सा बनाते हैं, प्याज।

0: नमिता को किचन में काम करते देखकर लग नहीं रहा था कि उसे आदत है काम करने की।
1: अरे याद है नमिता तुझे? हाँ, पहले हम कितना चटकारे लेकर पकोड़े खाते थे और जरा सी मिर्च पड़ जाए तो बिल्कुल जल जाता था मुंह, पर फिर भी खाना नहीं छोड़ते थे। और फिर भागकर, याद है वो कितना रंगीन सा शरबत पीते थे?
2: सच में वो बातें तो यूं समझ लो बस यादों में रह गई। चलो छोड़ो।
1: और अब तो हम सोच भी नहीं सकते कि उस ठेले से हम कैसे खा सकते थे, और हमें कुछ होता भी तो नहीं था नमिता, याद है?
2: और आज के बच्चों को देखो कितना ख्याल रखा जाए फिर भी आए दिन बीमार हो जाते हैं। चल मेरी हेल्प कर किचन में, आ दोनों सहेलियां गप्पे मारेंगे।
1: तुझे किचन में काम करके देखकर मुझे लग रहा है अब तुझे काम की आदत बिल्कुल भी नहीं रही। हाँ, ऐसा कर, तू यहाँ बैठ, मैं तलती हूँ पकोड़े और तू उधर चाय बना, अदरक इलायची मत भूलना।
2: हाँ वो स्वादिष्ट वाली चाय।
1: सच बताऊं, एक अरसे बाद इतनी निश्चिंत होकर मैं चाय पी रही हूँ। घर पर नमिता कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है, और सच बताऊं मेरी चाय ठंडी हो जाती है।
2: करेंगे और तुझे हमेशा ऐसे ही गर्मा गर्म इलायची और अदरक वाली चाय पिलाऊंगी।
1: प्लेट से पकोड़े खत्म होते रहे पर बातों की गगरी छलकी जा रही थी, फिर भी वैसी ही भरी हुई थी। नमिता अपने बच्चों की बातें, उनकी शरारतें, उनकी कामयाबी के बारे में बता रही थी। उसे ये बताते हुए जैसे वो बच्चों के पास ही पहुंच गई हो। नमिता का चेहरा ममता के उजास से दीप्त हो रहा था। अचानक नमिता ने घड़ी पर नजर डाली और भूली,
2: अरे मैं भूल गई, बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे।
1: बच्चे
2: ओ
1: बेटों को फोन करना है नमिता।
2: अरे नहीं, बताया था ना तुम्हें, वो स्ट्रीट चिल्ड्रन के साथ काम कर रही हूँ, अनाथालय
1: अच्छा।
2: जालती हूँ, बस वही वो बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे।
1: अच्छा, आज संडे वाले दिन?
2: आज संडे है ना, रोज की
1: हाँ
2: तरह सड़कों पे यूं जाम नहीं होता, बस
1: हाँ
2: आराम से गाड़ी निकल जाती
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा
2: है।
1: ये ट्रैफिक सिग्नल पर सामान बेचने वाले बच्चों के बारे में कह रही हो क्या?
2: हाँ बस उन्हीं के साथ थोड़ा टाइम बिता लेती हूँ।
1: इनकी जिंदगी भी बहुत अजीब होती होगी, है ना?
2: हाँ
1: मैं भी
2: अरे मुझे
1: सोच।
2: बहुत सारा सामान भी उनके लिए लेना है। एक मिनट रुको, बस मैं अभी आई।
1: डाइनिंग टेबल पर एक सुंदर से बास्केट में जो फल रखे थे, नमिता ने वो भी थैले में डाल दिए। कई सारी चीजें डालती रही वो थैले में। अंजू चुपचाप सब देखती रही। रास्ते में नमिता ने बताया वो उन बच्चों को कहानी सुनाती है, साफ सुथरे रहने का तरीका बताती है। अंजू सोच रही थी, जिन चीजों को सब लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, वो छोटी छोटी चीजें इन बच्चों को बतानी पड़ती हैं। आखिर सड़क पर पलने वाले ये बच्चे कौन सी जिंदगी जीते हैं? मेन रोड से एक संकरी से रास्ते पर गाड़ी उतार ली नमिता ने। पास में ही एक पेड़ था, उसके नीचे चबूतरा सा बना हुआ था। किसी समय में वो साफ सुथरा तो रहा होगा, पर इस समय जगह जगह से प्लास्टर उखड़ आए थे और बीच बीच में घास भी उगाई थी। नमिता की गाड़ी खड़ी करते ही पता नहीं कहां से बच्चों का एक हुजूम आ गया और घेर लिया नमिता को। दीदी कहाँ थी आप? हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। 12 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक के उम्र के बच्चे थे। कपड़े बदरंग, शायद धूप में घूमने से अपना रंग खो चुके थे। कहीं कहीं से फटे पर साफ थे।

0: कानों तक की फ्रॉक पहने लड़की या निकर पहने लड़के थे। छोटे बच्चों में से ज्यादा के बाल उलझे हुए थे। अंजू को उनके बिल्कुल पास जाने में हिचक सी हो रही थी, पर नमिता ने एक छोटी सी बच्ची का हाथ पकड़ा हुआ था और सारे बच्चे एक साथ नमिता का अटेंशन चाह रहे थे, उसको घेर कर बैठे हुए थे। नमिता के जादू के पिटारे से चीजें निकलनी शुरू हो गई थी। उसने सबसे पहले चॉकलेट बांटे, फिर कंघी निकालकर उलझे बाल संवारे, लड़कियों के बालों में क्लिप लगा दिए और छोटा सा शीशा उन्हें पकड़ा दिया। नेल कटर से नाखून काटे, कोई चोट दिखाने लगा तो उसकी चोट पर मलहम भी लगाया और उसने बोतल से रखे पानी से उनके हाथ भी धो दिए। इसके बाद नमिता ने उन्हें कहानियां सुनानी शुरू कर दी, कृष्ण की, बाल लीलाओं की कहानी। बच्चे हंसते और सवाल भी पूछते। सबसे छोटी बच्ची को नमिता ने अपने पास बैठाया था। कहानी सुनाने के दौरान उस लड़की ने नमिता की गोद में अपना सर रख दिया और बेख्याली में नमिता उसके सर पर हाथ फेरने लगी। अंजू ने आंखें फेर ली। नमिता को इस तरह बच्चों पर प्यार लुटाते देख उसका मन भीग गया। पता चल रहा था कितना मिस करती है वो अपने बेटों को, और उन्हें प्यार करने को तरसता मन इन बच्चों पर बिन बादल बरसात की तरह स्नेह बरसा रहा था। अंजू को ये देखकर बहुत सुकून मिला। अंजू हमेशा सोचा करती थी, जब बच्चे कॉलेज में चले जाएंगे, व्यस्त हो जाएंगे, उसके पास ढेर सारा वक्त होगा और वो क्या करेगी। अब समाधान उसके सामने था, वो भी ऐसे ही बच्चों को पढ़ाया करेगी। समाज ने इतना कुछ दिया है उसे, वो कुछ अंश तो लौटा सके। उधर नमिता अंजू की उपस्थिति भूल चुकी थी। अंजू को भी एकदम से अपने बच्चे याद आ गए। सारा दिन उनकी शैतानियों पर खींचती रहती है, पढ़ने के लिए डांटती है और कभी कभार सामान जगह पर रखने के लिए और शरारते करने के लिए तो बहुत ही ज्यादा डांटती है। जाने कब से उन्हें यूं पास बिठाकर कभी दुलराया नहीं। उसका मन हुआ कैसे भी उड़कर अभी बच्चों के पास चली जाए और उन्हें खूब प्यार करे। ऐसा करो नमिता, तुम यही रुको इन बच्चों के साथ।
1: हाँ जो सच, अब तो मेरी बस यही यही छोटी सी प्यारी सी दुनिया है। यहाँ आकर इतनी खुशी मिलती है, ऐसा लगता है मानो बस पूरी जिंदगी ही मिल गई हो मुझे। इन्हीं में अपनी खुशी तलाशती रहती हूँ।
0: अंजू ने बच्चों के सर पर प्यार से हाथ फेरा। इस बार उसे कोई झिझक नहीं हुई। अभी ऑटो में ही बैठी थी कि घर से फोन आ गया। अवनीश बोले, कहाँ हो तुम? एक संडे की ही शाम को तो साथ बिताने को मिलती है और तुम्हारा कुछ पता ही नहीं। जानती हो बच्चे कितनी कितनी बार पूछ रहे हैं, मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है। मुस्कुराहट सी आ गई अंजू के चेहरे पर। कभी दूसरा दिन होता तो खींच जाती। मैं जो अकेले शाम बिताती हूँ, ऑफिस से लौटने का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। एक दिन शाम अकेले बच्चों के साथ बितानी पड़ी तो बुरा लग गया। फिर उसने महसूस किया वो सब उसे मिस कर रहे हैं। बोली, बस आ ही तो रही हूँ, पहुंच रही हूँ बच्चों के पास, तुम सबके पास।

ये थी कहानी पहचान तो थी पहचाना नहीं, जिसे लिखा था रश्मि रविजा ने। और अब रश्मि कुकरेती को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की कल घोषणा की गई। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
1: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, विल मेक नो डिफरेंस।

0: some dhanda hai. It has nothing to do with drama of azadi. But it has everything to do with money. Agar America Pakistan ko arbon rupaye deta hai Bin Laden ko pakadne ke liye, to Pakistan usse dhoondne ka natak karega. Pakadwayega nahi. Taki uski funding chalti rahe. Same situation Valley mein.
1: ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई। राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नमिदास और रूपाश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर और वैकोम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा काडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई।
2: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी वसराल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग से बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय को भी मंजूरी दी। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। मणिपुर में 6 नगा नागरिकों की हत्या के मामले में सुरक्षा बलों ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। खुफिया जानकारी के आधार पर लगातार चलाए गए अभियान के बाद ये गिरफ्तारियां की गई। संदिग्धों से अभी पूछताछ की जा रही है जिससे मामले से जुड़ी परिस्थितियों का पता लगाया जा सके। पुलिस ने कहा कि जांच आगे बढ़ रही है और इसमें शामिल अन्य लोगों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने की कोशिश जारी है। अधिकारियों ने पीड़ितों को न्याय दिलाने और इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने संकल्प को दोहराया है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की चेतावनी को देखते हुए एहतियात के तौर पर श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से पहलगाम और बालतल दोनों रस्तों पर रोक दी गई है। एक अधिकारी ने बताया कि मौसम विभाग द्वारा अगले कुछ दिनों में खराब मौसम की भविष्यवाणी के बाद तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। अब तक श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान 3,70,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए हैं। इस वर्ष की यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी और 57 दिनों के बाद 28 अगस्त को समाप्त होगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच देर रात 2:30 बजे अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अर्जेंटीना और स्पेन आज रात न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में विश्व कप के फाइनल मुकाबले में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय महवश फातिमा। हिंदी फिल्म आर्टिकल 370 हैज वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन द 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड्स। Announcing the awards yesterday in New Delhi, Chairman of Jury Feature Film Jayaraj said, Mammootty and Kartik Aaryan have won the National Film Awards in Best Actor category for the

क्यों मेरी तरह रातों को रहता है परेशान, क्यों मेरी तरह रातों को रहता है परेशान। ऐ चांद बता किससे तेरी आंख लड़ी है, ऐ चांद बता किससे तेरी आंख लड़ी है। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और गीत सुहाने में आज जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है जहरीला इंसान, आवाज है किशोर कुमार की।

रात उतर आई थी धीरे धीरे, मानो प्राचीन इतिहास का एक और पृष्ठ खोल दिया हो। चांद, चांद आज किसी विजेता की भांति नहीं, एक विनम्र साधक की तरह नभ के मध्य विराजमान था। उसके उजले मुख पर युगों की यात्राओं का धैर्य था और अनगिन ऋतुओं की स्मृति। मैंने अपने मन से पूछा, तुझे इस चांद में ऐसा क्या दिखाई देता है? मन ने कहा, मुझे इसका प्रकाश नहीं, इसका संयम आकर्षित करता है। यह कभी सूर्य बनने का आग्रह नहीं करता, फिर भी असंख्य पथों का सहचर बन जाता है। रात मुस्कुराई। उसने चांद के चारों ओर नील विस्तार का ऐसा मंडल रचा जिसमें किसी को छोटा सिद्ध करने की कोई चेष्टा नहीं थी। वहां केवल संतुलन था और उसी संतुलन में सृष्टि का सौंदर्य निहित था। मन फिर भटकने लगा, कभी बीते वर्षों की तरह और कभी आने वाले दिनों की तरह। चांद से देखता रहा जैसे कोई अनुभवी ऋषि अधीर शिष्य की गति समझ रहा हो। तभी एक शीतल किरण धरती तक उतरी। उसने कोई उपदेश नहीं दिया, केवल इतना बताया जिसे स्वयं से मिलने का साहस मिल जाए। उसे संसार से शिकायत कम रह जाती है। मैंने देखा, रात किसी रिक्तता का नाम नहीं थी, वह तो विचारों की विशाल नदी थी जिसमें मन अपनी असंख्य आकृतियां देखता, टूटता, सवरता और अंततः अपने ही तट पर लौट जाता। अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म का नाम है तीन देवियां।

रात्रि ने जब दिशाओं के द्वार बंद किए, तब आकाश के मध्य एक उजला वृत्त धीरे धीरे खिल उठा। चांद किसी राज सिंहासन पर नहीं था, वह तो मानो अनंत की गोद में बैठा पृथ्वी का हाल पूछने आया अतिथि था। मेरा मन उसकी ओर बार बार देखता, फिर स्वयं में लौट आता। उसे लगा दूरी केवल कदमों की नहीं होती, कभी कभी विचार भी मनुष्य को अपने ही भीतर बहुत दूर तक ले जाते हैं। चांद ने कुछ कहा नहीं, फिर भी उसकी उजली आभा मन के बिखरे हुए कोनों तक पहुंच गई। तभी अनुभव हुआ, जिसे हम खोज कहते हैं वह बाहर से अधिक भीतर की यात्रा है। रात्रि समाप्त हुई, किंतु मन में एक प्रश्न जीवित रहा। यदि आकाश इतना विस्तृत होकर अपने सभी रहस्यों को संजो सकता है, तो मनुष्य के हृदय क्षमा और करुणा के लिए क्यों संकीर्ण हो जाता है? और इसी प्रश्न के साथ एक नई सुबह जन्मी। अगला गीत, फिल्म का नाम है गाइड, आवाज है लता मंगेशकर की।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है जॉनी मेरा नाम, आवाज है किशोर कुमार और उषा खन्ना की।

एक राह रुक गई तो और जुड़ गई, एक राह रुक गई तो और जुड़ गई, मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई। एक राह रुक गई तो और जुड़ गई, मैं मुड़ा तो साथ

एक राह रुक गई तो और जुड़ गई, एक राह रुक गई तो और जुड़ गई, मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई। एक राह रुक गई तो और जुड़ गई, मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई। हवा के परों पे मेरा आशियाना, मुसाफिर हूं मैं यारों, न घर है ना ठिकाना। मुझे चलते जाना है, मुझे चलते जाना है। कितनी सुंदर पंक्ति है और कितनी गहरी बात है। बस इस गहरी बात में छुपे हुए छोटे से संदेश को हम कभी नहीं समझ पाते और हम बड़े प्रश्नों में, बड़े सवालों के हल ढूंढने में रह जाते हैं। आप सुन रहे हैं गीत सुहाने और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है जब जब फूल खिले, आवाज है सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की।

और वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। बहत्तरवीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की कल घोषणा कर दी गई। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
1: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, विल मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है। इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
0: ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई। राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नमीदास और रूपाश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार

0: प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर और वेकोम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा काडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। संसद के मानसून अधिवेशन से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मानसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग से बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना UBT सांसदों के विलय को भी मंजूरी दे दी। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय DRI ने देश में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए हैं। इसके अंतर्गत विदेश से तस्करी कर लाया गया 15 किलोग्राम सोना और 20 किलोग्राम चांदी जब्त की गई, जिसकी कुल कीमत लगभग 22 करोड़ रुपए है। साथ ही 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा भी जब्त की गई। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन अभियानों में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर परिणाम पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार CBSE ने इस वर्ष से 10वीं कक्षा के लिए 2 बोर्ड परीक्षाएं शुरू की थी। मुख्य बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक आयोजित की गई थी और उसके बाद दूसरी बोर्ड परीक्षा इस वर्ष 15 मई से 21 मई तक हुई। CBSE ने बताया कि इस वर्ष की मुख्य और दूसरी बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों को मिलाकर कुल 96.78% छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हुए हैं। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की चेतावनी को देखते हुए एहतियात के तौर पर श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों पर रोक दी गई है। एक अधिकारी ने बताया कि मौसम विभाग द्वारा अगले कुछ दिनों में खराब मौसम की भविष्यवाणी के बाद तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। मौसम अनुकूल होने और रास्ते को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद श्री अमरनाथ जी यात्रा फिर से शुरू कर दी जाएगी। अब तक इस यात्रा के दौरान 370,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए हैं। इस वर्ष की यात्रा 3 जुलाई से शुरू हुई थी और 57 दिनों के बाद 28 अगस्त को समाप्त होगी। खेल खबरों में फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच रात 2:30 बजे से अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अर्जेंटीना और स्पेन न्यूयॉर्क के न्यूजर्सी स्टेडियम में विश्व कप के फाइनल मुकाबले में आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय महवश फातिमा। Hindi film Article 370 has won the Best Film Award in the 72nd National Film Awards. Announcing the awards yesterday in New Delhi, Chairman of Jury Feature Film Jay Raj said, Mammootty and Kartik Aaryan have won the National Film Awards in Best Actor category for their movies Brahm Yugam and Chandu Champion. He said Yami Gautam will be given the Best Actress Award for her performance in the film Article 370. Chairman of Jury Non-Feature Film Asim Kumar Sinha said, Bhangar, directed by Sumira Roy, has bagged the Best Non-Featuring Film Award. Best Short Film is Humsafar in Marathi. He said, Best Direction Award will be given to Anand L. Rai for Statue of Unity, Ekta Ka Prateek. Best Film Critic Award will be given to Sanjeev Srivastav. Award for Best Writing on Cinema will be given to K. Pradeep Kumar Shetty for his Kannada book, Nani Ruvude Nemagagi Nadi Ruvude Nanagagi Kannada Cinemada Thatvamattu Rajakiya. The government has convened an all-party meeting today.

जयति। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। रात सुरमई सुनेंगे, फिल्म का नाम है सिर्फ तुम, आवाज है कुमार शानू और अलका याग्निक की।

ये वक्त क्या है, ये क्या है आखिर जो मुसलसल गुजर रहा है। ये वक्त क्या है, ये क्या है आखिर कि जो मुसलसल गुजर रहा है। ये जब न गुजरा था तब कहाँ था, कहीं तो होगा, गुजर गया है तो अब कहाँ है, कहीं तो होगा। कहाँ से आया, किधर गया है, ये कब से कब तक का सिलसिला है। अगला गीत फिल्म का नाम है फिर कब मिलोगी, आवाज है मुकेश और लता की।

आज दिन ने कई बार मुझसे अपने होने का हिसाब मांगा। घड़ी ने भी अपनी सुइयों से मेरी उलझनों को नापा, पर मैंने हर प्रश्न को धीरे से किनारे रख दिया, क्योंकि आज मैंने एक ही काम किया, सिर्फ तुम्हें याद किया। सिर्फ तुम्हें याद किया, ना कोई अधूरी सूची थी, ना कोई लक्ष्य का दबाव, ना ही दुनिया के तर्कों का शोर। बस तुम्हारी याद मेरे भीतर ऐसे उतरी जैसे किसी पुराने गीत की धुन बिना आवाज के भी मन में गूंजती रहती है। मैंने रसोई में उबलती चाय के साथ तुम्हारा नाम मिलाया और ये देखा कैसे एक साधारण स्वाद अचानक गहराई में बदल जाता है। मैंने किताब खोली पर अक्षरों के बीच तुम्हारा ही चेहरा उभर आया, जैसे हर शब्द तुम तक पहुंचने का कोई बहाना ढूंढ रहा हो। आंगन में आई धूप आज कुछ अलग थी, उसमें एक परिचित स्पर्श था, जैसे तुमने दूर रहकर भी मेरे दिन को थाम लिया हो। तुमने दूर रहकर भी मेरे दिन को थाम लिया हो। अगला गीत हेमलता की आवाज में, फिल्म का नाम है आंखियों के झरोखों से।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है बॉर्डर, आवाज है सोनू निगम और अलका याग्निक की।

आप सुन रहे हैं रात सुरमई, और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है लेकिन, आवाज है लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

और वक्त आ चला है कि फिर मिलने के वादे के साथ आपसे विदा लिया जाए। पर चलते थोड़ी देर बाद यानी 3 बजे आप सुनेंगे एफएम गोल्ड पर हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। उसके बाद भारती होंगी आपके साथ। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की कल घोषणा कर दी गई। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
1: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, इट विल मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है, इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
0: ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई। राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नमिदास को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। वहीं अभय जोधपुरकर और विकोम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा कड़ू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गात्रात

रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। संसद के मानसून अधिवेशन से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। राजनीतिक दलों के संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मानसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग से बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना UBT सांसदों के विलय को भी मंजूरी दे दी है। इन 6 सांसदों के लिए विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना के सांसदों की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय DRI ने देश में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए हैं। इसके अंतर्गत विदेश से तस्करी कर लाए गए 15 किलोग्राम सोना और 20 किलोग्राम चांदी जब्त किया गया है, जिसकी कुल कीमत लगभग 22 करोड़ रुपए है। साथ ही 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा भी जब्त की गई है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन अभियानों में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपने नतीजे DigiLocker परिणाम पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार CBSE ने इस वर्ष से 10वीं कक्षा के लिए 2 बोर्ड परीक्षाएं शुरू की थी। मुख्य बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक आयोजित की गई। उसके बाद दूसरी बोर्ड परीक्षा इस वर्ष 15 मई से 21 मई तक हुई। CBSE ने बताया कि इस वर्ष की मुख्य और दूसरी बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों को मिलाकर कुल 96.78% छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हुए हैं। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की चेतावनी को देखते हुए एहतियात के तौर पर श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों पर रोक दी गई है। एक अधिकारी ने बताया कि मौसम विभाग की अगले कुछ दिनों में खराब मौसम की चेतावनी के बाद तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद श्री अमरनाथ जी यात्रा एक बार फिर से शुरू की जाएगी। इस वर्ष यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी और 57 दिनों के बाद 28 अगस्त को समाप्त होगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस और इंग्लैंड के बीच मुकाबला जारी है। वहीं अर्जेंटीना और स्पेन के बीच आज रात न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में विश्व कप के फाइनल में दोनों टीमें आमने सामने होंगी। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का। मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती और आप सबका स्वागत करती हूं और प्यार भरा मेरा नमस्कार। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की एक बहुत ही प्यारी से गीत के साथ।

अभी आपने गीत सुना फिल्म आप आए बाहर आई से। दिलबर का साथ जिंदगी की सबसे खूबसूरत सौगात है। सच्चा प्यार हर धड़कन को मुस्कुराने की वजह दे जाता है।

ये क्या हो गया तुम्हें हा? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और प्रोग्राम चल रहा है हम राही। जब प्रेम सच्चा होता है तो प्यार और विश्वास मिलकर हर कहानी को यादगार बना देते हैं।

प्यार में डूबा दिल हर पल अपने प्यार की खुशियों की दुआ करता है और सच्चा प्यार दिल को मासूम और जीवन को सुहाना बना देता है।

दिल की दीवानगी तभी सुंदर लगती है जब उसमें सम्मान और अपनापन हो। प्यार का एहसास हर पल को खास बना देता है।

रिश्ते तब और गहरे हो जाते हैं जब दोनों अपने दिल की बात प्यार से कहें। प्रेम का सबसे सुंदर संगीत आपसी समझ और विश्वास है।

और समय कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले बस यही कहूंगी कि आप कहीं मत जाइए। जी हाँ, 4:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर कार्यक्रम अरुणिमा। तब तक के लिए मैं आपसे ले रही हूँ अनुमति, और कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। तो जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की कल घोषणा की गई। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा। ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई।
1: राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नमिदास और रूपश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर और वैकुम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा काडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। कल की 2898 एडी को भरपूर मनोरंजन वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। कैप्टन मिलर को राष्ट्रीय और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। श्रीकांत को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, मारन को सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म, लहरी को सर्वश्रेष्ठ उड़िया फिल्म, मिथ्या को सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म, सुनीता को सर्वश्रेष्ठ मणिपुरी फिल्म और ढोली को सर्वश्रेष्ठ गढ़वाली फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हैं। ये दुर्घटना रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राज्यों संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग से बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला

ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय को भी मंजूरी दे दी। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने ओएमआर शीट की जांच के संबंध में छात्रों और अभिभावकों के लिए एक सख्त परामर्श जारी किया है। एजेंसी ने कहा कि हाल ही में समीक्षा के लिए जमा की गई कई ओएमआर शीट नकली या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से बनाई पाई गई, जिसके कारण सभी शिकायतों की बारीकी से निगरानी की जा रही है। एनटीए ने कहा कि वह हर शिकायत की गंभीरता से जांच कर रही है। हालांकि उसने चेतावनी दी कि नकली या एआई से बनी ओएमआर शीट जमा करने पर शिकायत करने वालों को गंभीर कानूनी नतीजों का सामना करना पड़ सकता है। एजेंसी ने कहा कि छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे जांच के लिए केवल असली ओएमआर ही जमा करें। भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा है कि सरकार का इथेनॉल मिश्रित कार्यक्रम E20 भारत की सबसे बड़ी जननीतिक सफलताओं में से एक है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों की आय बढ़ी है और देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है। E20 से विदेश से आयात किए जाने वाले कच्चे तेल पर निर्भरता भी कम हुई है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की चेतावनी को देखते हुए एहतियात के तौर पर श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों पर रोक दी गई है। मौसम विभाग की अगले कुछ दिनों में खराब मौसम की चेतावनी के बाद तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ मैच में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से हो रहा है। इस समय ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने फ्रांस पर 4-3 से बढ़त बना रखी है। वहीं अर्जेंटीना और स्पेन आज रात न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में विश्व कप के फाइनल में आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। आज फाइनल में सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो गया है प्रोग्राम अरुणिमा का। मैं हूँ आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती, और शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की इस प्यारे से गीत के साथ। गीत है फिल्म अनुराग से लता मंगेशकर की आवाज़ में।

और इस गीत के संगीतकार एसटी बर्मन। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म आनंद से मन्ना दे की आवाज में, गीतकार योगेश, संगीतकार सलील चौधरी।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. कार्यक्रम है अरुणिमा और कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म किसी से ना कहना से आशा भोसले की आवाज में, गीतकार योगेश, संगीतकार बप्पी लहरी.

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: तो पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए।
1: ए दोस्त, ए दोस्त,

पढ़कर उसका साथ दिया, गिरते को यहाँ किसने थामा, किसने उसको हार दिया। ए दोस्त, ए दोस्त, ए दोस्त।

अभी आपने गीत सुना फिल्म सच्चाई से मोहम्मद रफी और मन्ना डे की आवाज में, संगीतकार शंकर जयकिशन। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रोग्राम है अरुणिमा।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म बसेरा से लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार गुलजार, संगीतकार आरटी बर्मन।

अभी आपने गीत सुना फिल्म सदमा से सुरेश वाडकर की आवाज में गीतकार गुलजार। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म लावा से लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार आरटी बर्मन।

और समय कह रहा है कि आप आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले बस यही कहूंगी कि आप कहीं मत जाइएगा। जी हाँ, आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। 5:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर कार्यक्रम भोर सुहानी। तब तक के लिए मैं आपसे ले रही हूँ अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। संसद के मानसून अधिवेशन से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मानसून सत्र कल से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग से बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय को भी मंजूरी दी। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। एजेंसी ने कहा है कि ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली ओएमआर ही जमा करें। फर्जी एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। एनटीए के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई ओएमआर शीट फर्जी पाई गई है, इसीलिए अब हर शिकायत और हर ओएमआर शीट की सावधानी से जांच की जा रही है। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा परिणाम को चुनौती देने के लिए फर्जी दस्तावेज या एआई से तैयार की गई ओएमआर शीट का इस्तेमाल करना गलत है। ऐसे मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। विद्यार्थी अपने नतीजे डिजी लॉकर, परिणाम पोर्टल, रिजल्ट्स है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार सीबीएसई ने इस वर्ष से 10वीं कक्षा के लिए 2 बोर्ड परीक्षाएं शुरू की थी। मुख्य बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक आयोजित की गई थी और उसके बाद दूसरी बोर्ड परीक्षा इस साल 15 मई से 21 मई तक हुई। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। फिल्म आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
1: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, विल मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
0: ब्रह्म युगम के लिए ममूटी लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।

0: राजस्व आसूचना निदेशालय डीआरआई ने देश भर में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए हैं। इसके तहत विदेश से तस्करी कर लाया गया 15 किलोग्राम सोना और 20 किलोग्राम चांदी जब्त की गई है, जिसकी कुल कीमत लगभग 22 करोड़ रुपए है। साथ ही 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की भारतीय मुद्रा भी जब्त की गई है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन अभियानों में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा है कि सरकार का इथेनॉल मिश्रित कार्यक्रम E20 भारत की सबसे बड़ी जननेतिक सफलताओं में से एक है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों की आय बढ़ी है और देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है। E20 से विदेशों से आयात किए जाने वाले कच्चे तेल पर निर्भरता भी कम हुई है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के बीच एहतियाती तौर पर श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। फाइनल में आज रात 12:30 बजे न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। महिला सिंगल सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यूफी को पहले गेम में हराया। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय महबश फात। The government has convened an all-party meeting today ahead of the coming monsoon session of the parliament. During the meeting, the government will seek cooperation from all political parties to ensure the smooth functioning of both houses of parliament. The monsoon session will commence from tomorrow and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislation are scheduled to be taken up for discussion and passage. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has declared the results of the Class 10th Second Board Examination 2026. Students can access their results through DigiLocker Results Portal. In line with the recommendations of the National Education Policy, CBSE had introduced 2 board examinations for Class 10th from this year. The main board examination was conducted from 17th February to 11th March, followed by the second board examination from 15th May to 21st May this year. CBSE said that overall pass percentage after combining the results of the main and second board examinations of this year was 96.78%. In a stern warning amid rising concerns over manipulated documents, the National Testing Agency NTA has issued a strong advisory to students and parents regarding the submission of OMR sheets for scrutiny. The agency revealed that many OMR sheets recently submitted for review have turned out to be fake or artificially generated, prompting closer monitoring of all complaints. The NTA stated that it is actively scrutinizing every complaint received. However, it cautioned that submitting counterfeit or AI-generated OMR sheets could lead to serious legal consequences for the complainants. In a social media post, the agency said, "Students and parents are advised to submit only original OMRs for scrutiny. Any fake AI-generated OMR may invite legal action against the complainant." In Jammu and Kashmir, Shri Amarnath Ji Yatra will remain suspended from both the Pahalgam and Baltal routes from today as a precautionary measure in view of the adverse weather forecast. An official said the decision was taken following the India Meteorological Department's forecast of inclement weather over the next few days to ensure the safety and well-being of the pilgrims. The official said no onward movement of yatris will be allowed from the Baltal and Nunwan Chandanwari base camps until further orders. The yatra will resume after the routes are declared safe following a comprehensive assessment of the weather conditions, the official added. The BJP has described the